मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1947 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 सवेरे के 5:56 और 28 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: न्यूज 24/7 सुबह के 6 बजने को हैं, ये सुनते हैं समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत

0: करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, राम नाम ही सबसे बड़ा है। इस संसार में अगर हम राम का नाम जप के चलेंगे तो सब कुछ राम को सौंप देंगे। राम नाम के सहारे ही अपने जीवन रूपी नैया हम पार लगा सकते हैं।

कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में अभी आपने सुना ये भजन। श्रोताओं, हनुमान जैसा भक्त आज तक इस संसार में नहीं हुआ है। सारे संसार के प्राणी जिसके भक्त हैं वो श्री राम के भक्त हैं और राम को अपने हृदय में रखते हैं।

सुरेश वाडेकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये भजन। हम अज्ञानी मनुष्य तुम ज्ञानी हो, हम मैले तुम उजले हो, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूरख तुम सर्वज्ञानी हो, हम पापी तुम पार लगाने वाले हो, हे माधव सर्व कला के ज्ञाता, हमें अपनी शरण में लेकर हमारा जीवन सफल कर दो।

मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना ये शब्द। अल्लाह की नेमत जिस बंदे पर हो जाए उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। उस परवरदिगार की एक झलक देखते ही बीमार ठीक हो जाता है। मेरे मौला का हाथ जिसके भी सिर पर हो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है, और उसके दामन में खुशियां ही खुशियां होती हैं।

अजीज नजा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये नात। अंजनी के पुत्र कहे जाने वाले श्री हनुमान जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आप श्री राम के प्रिय हो, उनके हृदय में रहते हो और आपके हृदय में श्री राम की मूरत बसती है। हे महावीर हनुमान गोसाई, हमें भी अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पार लगाओ।

अनुराधा पौड़वाल और साथियों की गाई अभी हनुमान आरती आपने सुनी और इसी के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन और वाणी जयराम। संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं डिगा सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र,

जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और वाणी जयराम। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: महाप्रभु वल्लभाचार्य का कथन प्रमाण है, न जगत स्वप्नवत और न जीवन मात्र एक स्वप्न है, स्वप्नवत है मैं और मेरे द्वारा रचित गोरख धंधा जिसे हम संसार कहते हैं। हम तीन भ्रमों के मध्य जीवन नैया को चलाते रहते हैं, देश काल और पृथक तत्व के भ्रम हमें भ्रमित करते रहते हैं। दूर पास, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, आगे पीछे की बातें हम देश के भ्रमवेश करते रहते हैं, क्योंकि देश अथवा दिशा अनंत है। इसी प्रकार देर सवेर, कल परसों आदि की अवधारणा काल के भ्रम की द्योतिका है, क्योंकि काल अनादि और अनंत है। अहंकार यानी मैं एक पृथक सत्ता हूँ, यह आत्मगत अथवा पृथक तत्व का भ्रम है जो इन तीन भ्रमों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन एक वास्तविकता है, वो भ्रमों के आवरणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और दूरस्थ अथवा मिथ्या प्रतीत होता है। वास्तविकता की अनुभूति के लिए भ्रम निवृत्ति की स्थिति अनिवार्य है। क्या मनुष्य परमात्मा या प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है? मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी है जो अपना सिर ऊंचा और सीधा रख सकता है।

0: सकता है। बड़े से बड़े जीवों को, शेर, चीता जैसे खूंखार जानवरों को वश में कर लेता है। मात्र एक इंच के अंकुश द्वारा हाथी जैसे विशालकाय जीव को वश में रखने वाले महावत की सामर्थ्य किसे आश्चर्यचकित नहीं कर देगी। भ्रमों का निवारण करके वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, चट्टानों और अवशेषों के रूप में प्रकृति के विकास की कहानी अंकित है, इसको पढ़ने की सामर्थ्य प्राप्त है। वे कह सकते हैं कि विकास की शत सहस्र वर्षों की प्रक्रिया के उपरांत प्रस्तुत रूप में मानव शरीर का निर्माण संभव हुआ है। उसका एक एक अंग विकास की जिन सीढ़ियों से होकर गुजरा है, इसका पूरा ब्यौरा विकास की कहानी के पृष्ठों पर अंकित है। मनुष्य ही ये परिकल्पना कर सकता है कि जीवन की मूलभूत एकता प्रकृति का एक तथ्य है। विश्व बंधुत्व एक सिद्धांत न होकर जीवन का व्यावहारिक तथ्य है जो जीवन की मूलभूत एकता को स्वीकार करता है। मनुष्यत्व का विकास करना मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। मनुष्य का परम धर्म है जिसे हम मानव धर्म कहते हैं। इसी को लक्ष्य करके कहा जाता है, दानव होना मनुष्य की पराजय है, देवत्व की प्राप्ति उसका चमत्कार है और मानव होना उसकी विजय है। चेतना विकास के अध्येताओं ने ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर जन्म लेता है। उसके जीवन का वरदान ये है कि वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्राप्त प्राणी है। उसके जीवन का अभिशाप ये है कि वो आत्म सदृश अन्य किसी को नहीं पाता है। उसकी व्यक्तिता पग पग पर संघर्ष और टकराव को उसकी नियति बना देती है। मानव स्वतंत्र इच्छानुसार आचरण करता रहे और व्यक्तिता रूपी कांटों की नोकों को दूर करके टकराव या संघर्ष से बचता रहे, ये उसके पुरुषार्थ की सफलता है। ऐसे समर्थ मनुष्य ही मानव और अवतारी पुरुष कहे जाते हैं। मानव जीवन यथार्थ की भूमि पर स्थित है। स्वप्न उसके आदर्श होते हैं जिनसे वो प्रगति और विकास की प्रेरणा प्राप्त करता है। स्वप्न मानव जीवन के यथार्थ को रचना धर्मित की रसायन द्वारा पर्यवेष्टित कर देते हैं। मानव की महत्ता इसमें नहीं है कि उसने क्या उपलब्ध किया है, बल्कि इसमें है कि वो क्या उपलब्ध करने की आकांक्षा करता है। वो आधुनिक मनोविश्लेषकों द्वारा निरूपित स्वप्न नहीं है जिसे वे असंबद्ध अनुभव की छाया मात्र कहते हैं।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कौशल कुमार से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: यह नीरवता एकाकीपन, यह अनदेखा अनजानापन, रीति अंधियारी रातों में कुछ याद नहीं कब था सोया, है एक निरंतर क्रम दुनिया की आँखों से बच बच रोया, जितना दुलराया सहराया उतनी ही पहनी हुई चुभन, यह नीरवता एकाकीपन। तेरा सब न्याय विधान उचित अंतर्यामी घट घटवासी, चाहे मुझको माँ वस दे दे घर घर कर दे पूर्णमासी, जग के पल की सुख की खातिर ले ले मेरा सारा जीवन, यह अनदेखा अनजानापन। रहने भी दो यदि अवसर की मुझको कोई पहचान नहीं, घर आए देवों से भी मांगे मैंने वरदान नहीं, हो जाय याचना मुखी कभी हे देव न मेरा आराधन, यह अनदेखा अनजानापन। यह कर्मशील विश्वासों की अकलंक पराजय का लेखा है, मायावी अवलंब बनी कोई अनजगी भाल रेखा, चुपचाप चितेरा क्या जाने कर दे कब कोई परिवर्तन, यह अनदेखा अनजानापन, यह नीरवता एकाकीपन। दुनिया की ठोकर खा खा कर जो दर्द

0: रात दिन रोए हैं, वे सहज सुलभ अधिकार लिए मेरी कुटिया में सोए हैं। अपनी तो यही कमाई है, जग कहले निर्बल या निर्धन, यह अनदेखा अनजानापन, यह नीरवता एकाकीपन। भरसक आचरण सहेजे हैं, बांटे अपंग उपदेश नहीं, लह लह अनुभूति उगाई हैं, बेचे बंजर संदेश नहीं। मैं चुप रहने का अपराधी, यह गीत उसी का विज्ञापन, यह अनदेखा अनजानापन, यह नीरवता एकाकीपन। अगली रचना है, कई बार हमारे शुभ चिंतकों को यह अनुभव होता है कि हमारे परिश्रम अथवा क्षमता का न्यायोचित प्रतिदान हमें नहीं मिल पाया। उनकी इस भावना सम्मान में यह गीत प्रस्तुत है। जग कहता मुझको श्रम का प्रतिदान न मिल पाया, मैं कहता मुझको पूरा आस्वाद मिल गया है। जब जब भी झलकी माथे पर बूंद पसीने की, तब तब भरी उमंग अंग में उड़ उड़ जीने की। हो थकान से चूर चूर जब नींद समाधि लगी, जागा तो अनुकंपा भरा प्रसाद मिल गया है। मैं कहता मुझको पूरा आस्वाद मिल गया है। कभी किसी ने इस तप की गरिमा को पहचाना, किया तनिक दिया उचित सम्मान, परोसा स्नेह सिक्त खाना, किया तनिक सम्मान और दी थोड़ी शाबाशी, सारे जीवन का स्वर्णिम आह्लाद मिल गया है। मैं कहता मुझको पूरा आस्वाद मिल गया है। यों तो सारा जीवन है इतिहास शोक दुख का, किंतु साथ वरदान मिला संतोष जनित सुख का। कोई भी उपचार कभी अनिवार्य न कहीं लगा, अनाहूत सब अनायास अविवाद मिल गया है। मैं कहता मुझको पूरा आस्वाद मिल गया है। बचपन की सब किलकारी चिंताओं ने खाई, दायित्वों ने चूस चूस फेंकी सब तरुणाई। निकट बुढ़ापे का पथ क्या दुर्गम रह पाएगा, पग पग पर जब मुझको ध्रुव प्रहलाद मिल गया है। मैं कहता मुझको सारा आस्वाद मिल गया है। रहा जहां भी अब तक वह तो कारागार लगा, चाहे जहां रहूं अब सारा मुक्त विहार लगा। हुआ अवतरण प्रणयन पावन रम्य ऋचाओं का, गिरि प्रांतर वन सुरसरी तट प्रासाद मिल गया है। मैं कहता मुझको पूरा आस्वाद मिल गया है। कितने चित्र विचित्र जगत में जीवन के लेखे, सूर्य चंद्र तक राहु केतु से ग्रस्त त्रस्त देखे। किसका दर्प अखंडित कह दो कोई यहाँ रहा, शिरोधार्य जो नियत नीत अवसाद मिल गया है। मैं कहता मुझको पूरा आस्वाद मिल गया है। हीरे मोती कभी कभी कंकर पत्थर ढेले, कभी बसंत बयार कभी घन ताप शीत झेले। ज्वालामुखी कभी रिमझिम सी मदिर फुहार, कभी सभी एक जैसे जब अनहद नाद मिल गया है। मैं कहता मुझको पूरा आस्वाद मिल गया है। अगली रचना जो सामयिकता के ऊपर आधारित है, झेले भोगे हैं अतीत ने कुटिल छेद दिया छल, हमें बचाना है इन सब से आने वाला कल। जो जो उजली चमकीली तस्वीरें दिखलाई, अभी सिद्ध करनी है उनकी शुचिता सच्चाई। जन जन तो दे चुका समूचा विश्वासी संबल, हमें बचाना है इन सबसे आने वाला कल। जो कुछ कहा उसे करके दिखलाना ही होगा, जो खोया है उसको फिर से पाना ही होगा। और रहनी है सत्संकल्पों की दृढ़ता अडिग अतल, रहनी है सत्संकल्पों की दृढ़ता अडिग अटल, हमें बचाना है इन सबसे आने वाला कल। तनिक नहीं विचलित होना अपवाद विवादों से, दूर न होना धरा तली जन मन संवादों से। काट फेंकने चाटुकार जहरीले जन जंगल, हमें बचाना है इन सबसे आने वाला कल। अंतिम है, अपराधी तत्वों का प्रत्यर्पण होने वाला, खुलने लगा विदेशों में किस किस का धन काला। और डरा डरा आतंक भ्रष्टता के दिल रहे दहल, झेले भोगे हैं अतीत ने कुटिल छेद या छल, हमें बचाना है इन सबसे आने वाला कल। हमें बचाना है इन सबसे आने वाला कल।
1: काव्यधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कौशल कुमार से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है

0: की सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में लीजिए सुनिए पूर्व प्रसारित जानकारी। विषय है स्वयं द्वारा उपचार या सेल्फ मेडिकेशन कितना घातक।
2: आजकल ये काफ़ी प्रथा शुरू हुई है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं चिकित्सक बनकर ये अपने यहाँ दवाइयों के पूरी जानकारी न होते हुए दवाइयाँ लेने शुरू कर देते हैं, अपना उपचार खुद करते हैं। इसका आजकल के समय में दुष्परिणाम स्वाभाविक है क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं और जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं इसमें ये लोग ये नहीं जान करके इसका क्या दुष्परिणाम होगा, जैसे किसी पड़ोसी ने ली है तो वो उसकी सलाह पे खुद ले लेते हैं, तो उस वजह से इसका हर एक शरीर में एक अलग असर करता है। इसीलिए चिकित्सक की ज़रूरत होती है कि किस तरह से वो बताए कि आपके शरीर को किस दवाइयों की ज़रूरत है। लोग कुछ अपनी लापरवाही की वजह से भी ये चीज़ें शुरू कर देते हैं। कुछ ये भी होता है कि इनमें कौन डॉक्टर के पास जाए, वहाँ पे फीस देनी पड़ती है, ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं जो सोचते हैं कि अरे जैसे कई पड़ोसियों में होता है कि भाई मुझे भी ऐसा हुआ था तो मैंने ये दवाई ले ली थी तो आप भी ये ले लीजिए ठीक हो जाएंगे। पर ये नहीं पता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि दर्द की गोली है। अब कितने तरह की दर्द की गोलियां हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसा होता कि किसी एक से दूसरे को फर्क होता तो एक ही गोली बनती दर्द की। इतनी दवाइयां इसीलिए है क्योंकि एक ये हर एक दवाइयों के अलग दुष्परिणाम और परिणाम होते हैं जो कि एक चिकित्सक जो क्वालिफाइड चिकित्सक है वही बता सकता है। आप खुद दवाइयां लेने शुरू करो या किसी जो अनक्वालिफाइड हैं उनसे आप लेना शुरू करो तो एक ही बात होती है। अब फार्मासिस्ट हैं, उनका एक यही है काम के वो दवाइयां देना उनको और दवाइयां देखना। पर इसी तरह अगर वो दवाइयां देने लग जाएं, मैंने अपने एरिया में भी ये बहुत देखा है कि कई लोग तो उनको डॉक्टर साहब करके भी बुलाते हैं और वो दवाइयां बोल देते हैं, हाँ भाई मुझे खांसी है ऐसा है और आप ये दे दीजिए। तो फिर वही बात आती है कि आप अपने शरीर को दाव में रख के आप उनसे अपना शरीर का इलाज करा रहे हैं जिसको इतना ज्ञान नहीं है आपके शरीर, उनको सिर्फ दवाइयों का ज्ञान है। आप जो दवाई कहेंगे वो दवाई दे देंगे, पर आप इस तरह से रिस्क पे आप उन्हें कहते हैं कि मेरे को ये तकलीफ है और मुझे दवा दीजिए। देखिए

0: ये स्वाभाविक है। मैं विदेश में भी गया हूँ तो वहाँ पे तो दवाइयाँ कोई देने का सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक आपका चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्शन ना हो, उसकी कागज ना हो, वो देख के वही दवाई देते हैं, वरना वो कहते हैं हमारे पास दवा नहीं है। पर यहाँ ऐसा है कि पहले तो वही गैरकानूनी है कि वो दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं ऐसे करके। आप ये देखिए, ये तो एक चीज है। दूसरी, आम जनता कितना अपने ध्यान रखती है अपने शरीर का, कि वो एक रिस्क पे लेके आप एक फार्मेसिस्ट से दवा ले रहे हैं तो फार्मेसिस्ट तो देगा कोई ना कोई, उसकी दवा बिक रही है, पर ये देखना कि वो दवा सचमुच वही उनके शरीर के लिए है कि नहीं। जरूरत अब खांसी की दवा है, वो कोई भी खांसी की दवा दे देगा, हो सकता है वो दे दे जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, तो वो आपको सबसे पहले दे देगा। कोई महंगी देगा उसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा है, उसने ये चीज़ों पर देखना है। एक डॉक्टर ने ये चीज़ नहीं, डॉक्टर ने देखना आपके शरीर को किस दवा की आवश्यकता है, वो उस हिसाब से देगा। तो ये वही चीज़ें होती हैं कि आप अपने रिस्क पे ये चीज़ें करवाते हैं। जैसे वायरल है, वायरल का एक चक्र होता है जो कि एक हफ्ते का होता है। अगर आप कुछ भी सिर्फ दर्द की और बुखार की दवा लें तो भी एक हफ्ते के बाद आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। पर एंटीबायोटिक देते हैं कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। अब यही आप 3-4 दवाइयाँ डॉक्टर लिख दें या फार्मेसिस्ट लिख दें और आप ले रहे हो तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है शरीर में। तो इस तरह से तो वही बात आती है कि आदमी को इन चीज़ों से बचना चाहिए, चीज़ों से, और एक क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाके ही अपना उपचार करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों पे सोचें कि हमारा शरीर तकलीफ में है और उसका ऐसा इलाज होना चाहिए कि हमें सुकून मिले, हमें आराम मिले उस चीज़ का, तो अगर आप एक क्वालिफाइड और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, एक अच्छे बड़े संस्था में जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो इलाज होगा वो उस पैमाने पे होगा। टेस्ट भी उस तरह से ही लिखे जाएंगे जो आपके शरीर को जरूरत है या किसी डायग्नोसिस पे पहुंचने की जरूरत है। हाँ, जरूर ऐसे भी हैं जो, और वो चैलेंज हैं आजकल के समाज में, कि कुछ डॉक्टर होते हैं जो अपना लाभ के लिए कुछ टेस्ट लिखवा देते हैं जो जरूरी भी नहीं होते हैं। इस तरह भी चलता है, पर फिर भी वही मैं कहता हूँ कि हमें ये चीज नहीं सोच के, हमें अपने शरीर का ध्यान रखते हुए आप एक अच्छे संस्था में एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका उपचार दूसरे जो अनक्वालिफाइड से तो बेहतर ही होगा। और टेस्ट जो डॉक्टर लिखते हैं, जरूर कुछ ऐसे हैं, पर ज्यादातर डॉक्टर जो हैं बीमारी डायग्नोस करने के लिए ही टेस्ट लिखते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी, स्वयं द्वारा उपचार या सेल्फ मेडिकेशन कितना घातक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है कृषि से संबंधित स्वरोजगार।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है कृषि से संबंधित स्वरोजगार। तो भैया देखिए, खेती बाड़ी एक ऐसा व्यवसाय है जिसके साथ साथ हम और भी व्यवसाय कर सकते हैं ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके, क्योंकि केवल पारंपरिक खेती करके हम अपना गुजारा नहीं कर सकते और उसी हिसाब से जो बाजार की मांग होती है, महंगाई की मांग है, उससे हमारी पारंपरिक खेती से हमारे जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती। तो खेती के साथ साथ हमें और भी व्यवसाय करने चाहिए और आधुनिक व्यवसाय बहुत सारे हैं खेती के साथ साथ। यदि हम छोटे व्यवसाय की बात करें तो मधुमक्खी पालन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और मधुमक्खी पालन करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ, थोड़ी जानकारी और हल्का प्रशिक्षण आप अवश्य ले लें और ये कारोबार आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है भैया, अपने खेतों में आप पॉली हाउस लगा सकते हैं। तो पॉली हाउस लगाने के लिए आप थोड़े से क्षेत्र से शुरुआत कर सकते हैं। आप 1 बीघा में पॉली हाउस लगाकर अपना काम चला सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं। और पॉली हाउस की ये विशेषता होती है कि इसमें बिन मौसम की सब्जी हमारे किसान भाई उगाते हैं, और बिन मौसमी सब्जी के दाम आसमान छूते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि बेमौसमी सब्जी महंगी बिकती है। तो इससे भी हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप पॉली हाउस में मशरूम भी उगा सकते हैं, और मशरूम उगाने के लिए कोई खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत कृषि विज्ञान केंद्र पर आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने जिले के उप कृषि निदेशक से आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और स्वरोजगार होता है कि भाई जो किसान भाई थोड़ी जमीन रखने वाले हैं, यानी के जो सीमांत किसान हैं या जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, तो वो भाई मुर्गी फार्म अपने खेत में खोल सकते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्म खोलकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और ब्रायलर जो आजकल एक मुर्गियों की नस्ल है जो मीट के लिए या मांस के लिए जिसका पालन करते हैं, तो

0: मुर्गियां हमें रख कर अच्छी आमदनी मिल सकती है, और इसके लिए हमारे किसान भाई पूरब और पश्चिम को जो लंबा मुर्गी बाड़ा है वो बना सकते हैं और अपनी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि 40 से 45 दिन के जो चूजे होते हैं तो वो पूरी मुर्गियां बनकर हमें जल्दी आमदनी दे देती हैं। और हमारे किसान भाई मुर्गी पालन में ये ध्यान रखें कि भाई पर्याप्त हवा की व्यवस्था हो, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, और हमारी मुर्गियों का जो बैठने का स्थान है वो गर्मियों में थोड़ा सा ठंडा हो, या भाई आसपास मुर्गी फार्म के ऊपर पेड़ हो जिससे ठंडी छाया रहे, और सर्दियों में हीटर वगैरह का इंतजाम भी हमारे किसान भाई इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है भाई, कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जो मत्स्य पालन करके अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं, तो वो अपने खेतों में तालाबों की खुदाई करवा कर कच्चे तालाब बनवा सकते हैं। कच्चे तालाबों में ज्यादा लागत नहीं आती और पानी का इंतजाम करना चाहिए, तो पानी का इंतजाम होने के बाद हमारे किसान भाई नए तालाब खोद कर उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं, और अच्छी नस्ल के जो मछली के बच्चे होते हैं जिनको हम अंगुलिकाएं कहते हैं, तो भैया अच्छी नस्ल के बच्चे प्लंकटोन खाकर अच्छी विकास करते हैं, और रोहू कतला इस प्रकार की जो अच्छी नस्लें हैं तो वो प्रजातियां आप मछली की पाल सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मछली का रेट बहुत ऊंचा होता है बाजार में और पौष्टिकता की दृष्टि से भी मछली का पोषण मान ऊंचा होता है। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई फूलों की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, और जिसके पास थोड़ी जमीन होती है फूलों के साथ साथ वो दूसरे बागवानी का कार्य कर सकते हैं। आप सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं, यदि आपकी जमीन शहर के पास है तो आप सब्जी का उत्पादन करिए और अपने नजदीक के शहर में इस सब्जी की सप्लाई करिए, तो बहुत ही अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, और इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी रेड़ी या बुग्गी में आप सब्जी लाद कर समय पर अपने फलों की सब्जियों की तुड़ाई करके अपने नजदीक के आप शहर में इसकी सप्लाई कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खेती से संबंधित स्वरोजगार हमारे किसान भाई अपनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। किसान भाइयों, कल एक नए अंक के साथ आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: खेती की बात तो एक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे, जानकारी विषय था कृषि से संबंधित स्वरोजगार। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। पत्र और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात्रि 10:30 पर। परिचर्चा कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे, और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनिएगा सोनाली जल्लोटा की गाई गजलें। छाया गीत शाम 6:55 पर। शाम 6:45 पर सुनेगा 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष भेंट वार्ता, उज्जवल चौधरी और मंतशा से शोभित शर्मा की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनेगा बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा जल संरक्षण। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर क्रम होगा बुझो तो जाने कुछ खास है आज, दिल से दिल तक लव स्टोरी रहस्य सीरीज, और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। ये शाम 5:00 सुनिएगा कार्यक्रम रिश्ता ये खास है, आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:00। एक ही कलाकार कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर सुनेगा पृथ्वीराज कपूर पर फिल्माए गए कुछ गीत।

0: धारा कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे भारत सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीत। महिला जगत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर क्रम होगा आधी आबादी से, साथ ही सुनिएगा परिचर्चा, डिजिटल युग में बच्चों की छुट्टियां, मोबाइल या मैदान। प्रतिभागी होंगे शालिनी चौधरी, अनीता रावत, शशिकला राजपूत। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा चर्चा, बच्चों की परवरिश और रचनात्मकता में माँ की भूमिका। ये थे हमारे आज के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:18 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: डरूंगा केवल भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
4: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार

0: आरओ के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाए। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक

0: गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने छह मंदिरों की स्थापना हुई थी जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉ एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉ राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर

मीडियम 14.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जल संरक्षण क्यों है जरूरी। हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है, लेकिन तेजी से घटते जल स्रोत चिंता का विषय बन चुके हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी का जीवन जल ही है। शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जिसे जल की आवश्यकता ना हो। जल हमें समुद्र, नदियों, तालाबों, झीलों, वर्षा एवं भूजल के माध्यम से प्राप्त होता है। गर्म हवाओं के चलने से समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों का जल वाष्पित होकर ठंडे स्थानों की ओर चलता है, जहां पर न्यून तापमान के कारण संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जबकि पहाड़ों पर और भी कम तापमान होने के कारण जल बर्फ के रूप में जम जाता है, जो कि गर्मी के दिनों में पिघल कर नदियों में चला जाता है। श्रोताओं, मानव अपने स्वास्थ्य सुविधा, दिखावे और विलासिता को दिखाने के लिए अमूल्य जल की बर्बादी करने से नहीं चूकता। पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। यदि हम अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है।

है, बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प करने की और उस पर गंभीरता से अमल करने की, क्योंकि जल है तो हमारा भविष्य है। इसीलिए यदि हम पानी की बचत करते हैं तो यह भी जल संग्रह का ही एक रूप है। एक अध्ययन से पता चलता है कि मानव यदि अपनी आदतों को बदल ले तो 80% से अधिक पानी की बचत हो सकती है। यदि मानव तमाम नहीं कुछ ही आदतें बदल ले तो भी 15% जल की बचत संभव है। बूंद बूंद की बचत से एक बड़ी बचत हो सकती है। इस प्रकार पानी की बचत ही जल संरक्षण है। जल संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा उसे प्रदूषित होने से बचाना है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता। अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। पूरी दुनिया में 350 मिलियन क्यूबिक मील पानी है। इसमें से 97% भाग समुद्र से घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक अधिकांश नदियों में जलभाव की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। भारत के 4500 बड़े बांधों में 220 अरब घन मीटर जल के संरक्षण की क्षमता है। देश के 11 मिलियन ऐसे कुएं हैं जिनकी संरचना पानी के पुनर्भरण के अनुकूल है। यदि मानसून अच्छा रहता है तो इसमें से 25 से 30 मिलियन पानी का पुनर्भरण हो सकता है। श्रोताओं, जल ही जीवन है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि सच्चाई है। यदि हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जल संरक्षण में अपना योगदान दे। जल संरक्षण कीजिए, जल जीवन का सार। जल संरक्षण कीजिए, जल जीवन का सार। जल न रहे यदि जगत में, जीवन है बेकार।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और आइए अब बात करते हैं आज की यानी 26 मई को घटी कुछ घटनाओं की। 26 मई को वैसे तो देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं घटी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। 26 मई सन 2007 को भारत और जर्मनी के मध्य रक्षा समझौता संपन्न हुआ। 26 मई 2008 को भारतीय स्टेट बैंक ने फसल ऋण बीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया। और 26 मई 2008 को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज व खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के संबंध में अधिसूचना जारी की। 26 मई 2008 को ही मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु फिनिक्स यान मंगल ग्रह पर उतरा। और 26 मई 2010 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीएस चौहान और न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने शादी किए बगैर एक साथ रहने वाले प्रेमी युगलों की संतानों को भी अपने मां बाप की ओर से अर्जित संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार स्वीकार किया। न्यायालय ने साथ ही उन्हें परंपरागत पैतृक संपत्ति पर उनके अधिकार को स्वीकार किया। और 26 मई को 1908 में आज ही की तारीख को ब्रिटिश इंजीनियरों ने ईरान के मस्जिद सुलेमान शहर में 1100 फीट नीचे पेट्रोलियम खोज निकाला था। आज जिस पेट्रोल और तेल के लिए दुनिया में युद्ध, कूटनीति और वैश्विक रणनीतियां तय होती हैं, उसकी नींव इसी खोज ने रखी थी। और 26 मई 1999 को आज ही के दिन इसरो के कमर्शियल लॉन्चिंग की शुरुआत की थी। इसरो ने प्रक्षेपण यान PSLV-C2 के जरिए भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में एक एक सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में छोड़े थे। इसके बाद ही भारत किफायती सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र के रूप में उभरा। और आइए अब आपको बताते हैं 26 मई को किन महान लोगों ने जन्म लिया। 26 मई 1946 को भारत की उन महिलाओं में से एक जो बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थी, अरुणा राय का जन्म हुआ। 26 मई 1983 को बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले सुशील कुमार पहलवान का भी जन्म हुआ। और 26 मई 1906 को जन्म हुआ भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किक्कर बैज का। और कृषि वैज्ञानिक वीपी पाल का जन्म 1906 में आज ही की तारीख को पंजाब के मुकंदपुर में हुआ था। बचपन में स्कूल से ही पौधों में उनकी रुचि जगी। 1929 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने गेहूं पर शोध किया और 1937 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से वो जुड़े। उस समय रस्ट नामक बीमारी के चलते हजारों एकड़ गेहूं की फसलें नष्ट हो रही थी। 1954 में इस बीमारी से लड़ने में सक्षम NP-809 गेहूं विकसित कर आपने प्रसिद्धि प्राप्त की। वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक भी रहे। 1959 में पद्मश्री और 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और 14 सितंबर 1989 को आपने इस संसार को अलविदा कह दिया। और आइए अब बात करते हैं 16 मई को हुए निधन की, यानी किन महान लोगों ने इस संसार को अलविदा कह दिया। 26 मई 1986 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा इस संसार को अलविदा कह

0: 9
1: और हमारा ईमेल आईडी है
0: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए अब चर्चा करते हैं, नजरअंदाज ना करें हीट स्ट्रोक। श्रोताओं, इस समय गर्मी अपने चरम पर है और गर्मी के इस मौसम में हीट स्ट्रोक के मामलों में तेजी आ जाती है। हीट स्ट्रोक को आम भाषा में लू लगना भी कहा जाता है। दुनिया भर में मौसम में आए बदलाव और तेजी से बढ़ते तापमान के बीच हीट स्ट्रोक के केस हर देश में देखे जाते हैं। अत्यधिक गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और इससे जुड़ी अन्य परेशानियां सेहत संबंधी खतरा पैदा कर रही हैं। अच्छा, जानते हैं हीट स्ट्रोक क्या है। हीट स्ट्रोक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर अत्यधिक तापमान और गर्मी का शिकार होता है। इसे हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है। ये शरीर को गर्मी लगने का चरम स्तर है जिसका शरीर पर कई तरह से असर पड़ता है। हीट स्ट्रोक तब होता है जब किसी व्यक्ति का शरीर बहुत ज्यादा तापमान के संपर्क में आता है। ज्यादा तापमान में आते ही शरीर का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसके चलते शरीर के कई अंगों पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही शरीर के कई अंगों में ब्लड सर्कुलेशन पर भी बुरा असर पड़ता है जिससे खून का बहाव कम होता है और ज्यादा गंभीर स्थिति में शरीर के अंगों को भयंकर नुकसान और मरीज की मौत तक हो सकती है। हीट स्ट्रोक के सामान्य लक्षण की श्रोताओं अगर हम बात करें तो इसमें शरीर का तापमान ज्यादा हो जाता है। सामान्य तौर पर स्थिति में व्यक्ति का हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा जाता है। चक्कर आने लगते हैं, गला सूखना, थूक निकलने में कठिनाई होना, त्वचा का लाल और गर्म होना, बेहोशी की स्थिति, शरीर में हल्का हल्का दर्द होना और हीट स्ट्रोक में जरूरत से ज्यादा पसीना आना, नज़र धुंधली हो जाना, भ्रम या कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होना, बात करने में दिक्कत महसूस करना, मतली या उल्टी महसूस करना, दिल की धड़कन तेज होना, सांसों का तेज चलना, सांसों में उथलापन, शरीर में ऐंठन महसूस होना, दौरा पड़ना और कोमा की जैसी स्थिति बन जाती है। श्रोताओं, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए धूप और अत्यधिक गर्मी में जाने से हमें बचना है। हल्के सूती और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। लगातार खुद को हाइड्रेट रखना है। घर से बाहर निकलते वक्त सिर पर कपड़ा, आंखों पर चश्मा लगाकर निकलना है। सनस्क्रीन लगाकर ही आपको बाहर निकलना चाहिए। हीट स्ट्रोक होने पर प्राथमिक उपचार के रूप में सबसे पहले मरीज को ठंडी जगह पर ले जाकर लिटा देना चाहिए। उसके शरीर के अतिरिक्त कपड़े उतार कर बर्फीले पानी से भीगे कपड़े से उसकी त्वचा को ठंडा करना चाहिए। साथ ही लू लगने पर तुरंत इलाज लें और प्रयास करें कि आप जब तक डॉक्टर के पास न जाएं घरेलू उपाय अपनाएं और डॉक्टर से परामर्श लें। और इसी के साथ साथ आपको सुनवाते हैं एक ऐसा ही गीत।

जी, इसका महीना भी चल रहा है और बात भी हमने हीट स्ट्रोक की करी, यानी कि गर्मी की करी, तो आपको ये गीत तो सुनाना बनता ही था। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको अवगत कराते हैं अखबारों की चंद सुर्खियों से। शुरुआत कर रहे हैं अमर उजाला के साथ, तो अमर उजाला लिखता है, महंगाई का चौका, पेट्रोल ने लगाया शतक, वित्त मंत्री ने दिए संकेत और बढ़ेंगी कीमतें। ईरान युद्ध और हुर्मुज़ के संकट से पैदा हुए ईंधन संकट के चलते पेट्रोल डीजल ने महंगाई का चौका मार दिया है। आम जनता को महंगाई की चौथी किस्त का झटका देते हुए पेट्रोल अब देश भर में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। डीजल भी 100 रुपए के पास पहुंच गया है। सोमवार को पेट्रोल के दाम 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। इसी के साथ अमर उजाला लिखता है, बिना बनी रहेगी प्रधानी सरकार ने 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अब विकास कार्य नहीं रुकेंगे। पंचायत चुनाव में देरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही 6 माह तक प्रशासक बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। पंचायती राज वित्त मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया। रुक करें दैनिक जागरण की ओर, तो दैनिक जागरण लिखता है, नौपता सबसे गर्म दिन रहा सोमवार, तापमान पहुंचा 41.4 डिग्री सेल्सियस, मौसम विभाग का अनुमान अभी और बढ़ेगा पारा। नौपता के पहले दिन ही सूरज ने मानो आग सी बरसाई। नौपता का पहला दिन सोमवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि इस सप्ताह बरसात होने की उम्मीद बनी हुई है। दैनिक जागरण की एक और सुर्खी है, बिजली कटौती को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी। धामपुर आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन ने सोमवार को पदाधिकारियों के साथ विद्युत वितरण खंड कार्यालय में एसआई सतीश कुमार सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बकरीद के त्योहार से पहले भी चल रही विद्युत समस्या को लेकर नाराजगी जताई। लो वोल्टेज समस्या से जूझ रहे किसान धरने पर बैठे। चांदपुर लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे रूपपुर के ग्रामीण ट्रांसफार्म की क्षमता वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। ग्रामीणों ने समाधान होने तक धरना जारी रखने की बात कही। और रुख करते हैं हिंदुस्तान की ओर, तो हिंदुस्तान लिखता है, कमांडो ने किया माउंट एवरेस्ट फतेह। ये खबर बागपत से है। बागपत के सकल पुट्टी गांव निवासी एनएसजी कमांडो सोनू ने माउंट एवरेस्ट पर 8848.86 मीटर की चढ़ाई पर तिरंगा फहराकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। सोनू की इस उपलब्धि से परिवार और गांव में हर्ष का माहौल है। एक और सुर्खी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान लिखता है, सड़क किनारे नालों की सिल्ट देखकर डीएम हुई नाराज। एसडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने गंगा दशहरा एवं ईद उल अजहा पर्व के अवसर पर नगरपालिका परिषद बिजनौर क्षेत्र में साफ सफाई, जल निकासी, पेयजल एवं शांति व्यवस्था के संबंध में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण ने नगरपालिका के सफाई कार्यों की पोल खोल दी। नालों की

0: सील्ट सड़क किनारे पड़ी होने पर डीएम एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए सील्ट का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। एडीएम को निरीक्षण के कूड़े के ढेर भी मिले। और आइए आपको सुनवाते हैं ये विज्ञापन।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: स्वागत एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और श्रोताओं, आइए अब चर्चा करते हैं इंडोर गेम्स के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटी है जरूरी इस विषय पर। श्रोताओं, आजकल के बच्चों की अक्सर घर के अंदर ज्यादा समय बिताने या यूं कहें कि बाहर कम जाने के लिए आलोचना की जाती है। दरअसल फुटबॉल और पेड़ पर चढ़ने जैसे खेलों की जगह कंसोल और वीडियो गेम ने ले ली है, जिससे कुछ माता पिता काफी निराश हैं। यह समझना आसान है कि बाहर खेलने के फायदे भी हैं और घर के अंदर खेलने के भी, लेकिन क्या बाहर खेलना घर के अंदर खेलने से बेहतर है या घर के अंदर खेलना बाहर खेलने से बेहतर है? आइए इस विषय पर करते हैं हम चर्चा। घर के अंदर खेलने में वीडियो गेम से लेकर कला और शिल्प तक, साथ ही बोर्ड गेम्स, पहेलियां और इंडोर खेल के मैदान जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। शोध से पता चला है कि घर के अंदर खेलने का एक लाभ यह है कि यह रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, शिल्प और कहानी सुनने से बच्चों को आविष्कारशील बनने की प्रेरणा मिलती है और साथ ही जस्ट डांस जैसे खेल शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। खेल के मैदानों में खेलना, समुद्र तट पर रेत के महल बनाना, पार्क में दौड़ना और परिवार के साथ सैर पर जाना, ये सभी भारी खेल के उदाहरण हैं। भारी खेल का मुख्य लाभ यह है कि इससे बच्चों को अनुभव से सीखने को मिलता है, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं और अपनी कल्पना का उपयोग कर पाते हैं। बाहर खेलने से बच्चों को सामाजिक मेलजोल बढ़ाने, ढेर सारे दोस्त बनाने और परिणाम स्वरूप अधिक खुश रहने का अवसर भी मिलता है। तो क्या बाहर खेलना घर के अंदर खेलने से बेहतर है? नहीं, बाहर खेलने के भी कई फायदे हैं, जैसे घर के अंदर खेलने के भी कई फायदे हैं। बेहतर सवाल यह है कि घर के अंदर और बाहर खेलना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों के विकास के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह खेलने से बच्चों को घर के अंदर खेलने के साथ साथ बाहर खेलने के भी फायदे मिलते हैं, यानी उन्हें पर्याप्त शारीरिक गतिविधि के साथ साथ रचनात्मकता और मानसिक उत्तेजना भी मिलती है। तो आप अपने बच्चों को दोनों खेल खिलाएं, घर के बाहर और घर के अंदर भी, यानी इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और चलते चलते आइए अब आपको सुनवा देते हैं खेलों से ही मिलता जुलता एक ये गीत।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न होता है। ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार।

0: के साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ

0: टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2023 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नाव को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान, धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है।

0: जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ते ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली टुडे। President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshi Mitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the U.S., Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
4: President Draupadi Murmu will visit Namgyal

0: to the Union Ministry of Education, NTA, and others on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, "Time to Stop Slipping on Oil," the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left US in state of anxiety, writes Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal-hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद, पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उजरा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते के हालात व वाकयात, नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुल अक्वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के ऐन मुताबिक ये उज़राए खारजा पिछले साल यकुम जुलाई को वाशिंगटन डीसी में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उज़राए खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहाँ आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: क्वाड के वज़राए खारजा की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है कि जब आलमी सतह पर गैर यकीनी के हालात हैं और मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदर नशीं होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए

0: जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरा आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासी के हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मिना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में अबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिसाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीव की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और HS प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म धनवान से। संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में भी आपने सुना फिल्म छाया से ये गीत। इस गीत को संगीत दिया था सलील चौधरी ने और गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले लीजिए सुनिए ये विज्ञापन।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: क्या चुप रहूं
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है
2: कह

दीवार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में इस गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म धरती से ये गीत। इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण और हसरत जयपुरी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उमराव जान से, स्वर है आशा भोसले का। गीत खय्याम का है और गीत के बोल लिखे हैं शहरयार ने।

अभी आपने सुना फिल्म उमराव जान का ये गीत, और श्रोताओं लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म निकाह से। आवाजें हैं सलमा आगा और महेंद्र कपूर की, संगीत रवि का है और गीत लिखा है हसन कमाल ने।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
1: जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत से हाथरस में हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास से किया गया, जहां पर्यवेक्षक और प्रांगणकों ने जिलाधिकारी अतुल बस के आवास का सूचीकरण करते हुए मकान संख्या अंकित की। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में मकान सूचीकरण जनगणना कार्य के लिए 3607 प्रांगणक और 472 पर्यवेक्षक तैनात किए गए। यह अभियान 22 मई से 20 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के सभी मकानों और परिवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा। जिले में पुलिस लाइन ऑडिटोरियल में जिले की प्रभारी मंत्री और महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए। इस मौके पर BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नाटक कृष्ण लीला पर आधारित मनमोहक नृत्य व छात्र छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक पर प्रस्तुति दी। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त 225 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई और शुभकामनाओं के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास भवन सभागार में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता एवं सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय की उपस्थिति में गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गौवंश संरक्षण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जनपद में सिंचाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त खंडों के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल बस ने संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में नहरों नालों एवं नदियों की वर्तमान स्थिति, उनकी सफाई मरम्मत, जल प्रवाह अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की स्थिति तथा नगर क्षेत्रों में नहरों नदियों में गिरने वाली दूषित जल की समस्या पर गहनता से विचार करने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्त आवश्यक कार्यों व टेंडर प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल बस ने उद्यमियों की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग बंधु समिति केवल औपचारिक मंच नहीं बल्कि उद्यमियों और प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद एवं समाधान का सशक्त माध्यम है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वर्ष ने EVM BVPAT वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। EVM BVPAT वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों ने CCTV कैमरे, सशस्त्र बलों की तैनाती, अग्निशमन उपकरणों आदि व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति, पूर्ण या अपूर्ण कार्यों को अनारंभ परियोजना की बिंदुवार समीक्षा की। विश्व हिंदू परिषद जनपद हाथरस द्वारा तालाब चौराहे स्थित कार्यक्रम स्थल पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अतुल वर्ष, पुलिस अधीक्षक चंजीव नाथ सिन्हा, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा, भीषण गर्मी के दृष्टिगत पशु पंछियों एवं गौवंशों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना एक पूर्ण एवं मानवीय कार्य है। जल संरक्षण एवं जीव जंतुओं की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जा रही पानी की टंकियां नान समाज में सेवा संवेदनशीलता एवं माननीय मूल्यों को का संदेश देंगी।
0: हाथरस जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को रिस्टोर कर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में आंधी तूफान के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं वहां मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विद्युत विभाग पूरी तरह तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील महाराजगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश डॉ. मनोज कुमार पांडे ने बीते 24 मई को NTPC उजाहर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जी ने जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ उपलब्ध कराया जाए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता एवं शिकायत की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। जनपद में बढ़ रहे तापमान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी सरनीत कौर बोका द्वारा जनहित में हीट वेव लू से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की गई। जिलाधिकारी ने आम जन से सतर्कता बरतने तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक तापमान रहने पर हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर एवं खतरनाक साबित हो सकती है। विशेष रूप से वृद्धजन, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को सिर एवं शरीर को गीले कपड़े से ढककर रखने तथा समय समय पर छायादार स्थान पर विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में दोपहर 12 से 3 तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की विशेष अपील की गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकर ने बताया कि भारत जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद रायबरेली में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सर्वेक्षण करते हुए सूचीकरण और गणना का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य को गंभीरता एवं 100% सफलता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मकान गणना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, आवासीय स्थिति, संसाधनों एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, सरकारी नीतियों तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के निर्माण में किया जाता है। ऐसे में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद में नियुक्त प्रगणक और सुपरवाइजरों ने आज से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर मकानों का सत्यापन, सूचीकरण एवं गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान टीम द्वारा प्रत्येक मकान की स्थिति, उपयोग, संरचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक विवरण संकलित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान कोई भी मकान छूटने न पाए, प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि
3: जनगणना 2027 है, उसका द्वितीय चरण शुरू हुआ है, जिसमें जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो डोर टू डोर जाके हाउस की लिस्टिंग करेंगे। हाउस की लिस्टिंग यानी घर पर नंबर डालेंगे और उनको ब्लॉक के रूप में संगठित करेंगे, जिससे कि जब वो फिर से घर में जाएं तो वो प्रति घर जा पाए और कोई भी घर छूटने ना पाए। सभी से अनुरोध है कि इनके साथ सहयोग करें और जो इनके द्वारा दिए गए नंबर वगैरह हैं उसको मिटाएं ना, उसको मिटाना एक अपराध भी है।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका ने बीते 21 मई को विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लेने हेतु निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बेला भेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों एवं समयबद्ध प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से प्राप्त की।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 होने को हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवा रहे हैं अर्जुन सिंह और साथियों की गाई रागिनी।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अर्जुन सिंह और साथियों की गाई रागिनी। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली रागिनी।

और श्रोताओं, इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अर्जुन सिंह और साथियों की गाई रागिनी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, माफ कीजिए, सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन है इशिका कौशिक और दिव्यम कर्णवाल का।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बात आसपास की और मैं हूं आपकी दोस्त इशिका कौशिक। बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। श्रोताओं, क्या स्वाद के चक्कर में हम अपनी सेहत से समझौता कर रहे हैं? क्या हम जानते हुए भी बार बार उसी स्वाद की ओर खींचे चले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है? इसी का जवाब जानने के लिए आज का हमारा विषय है फास्ट फूड, स्वाद बनाम सेहत। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड हमारे खानपान का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स और फ्राइड फूड जैसी चीजें स्वाद में भले ही अच्छी लगती हों, लेकिन इनके सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। खासकर युवाओं और बच्चों में इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि स्वाद और सेहत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आइए, इसी पर जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर माधव सक्सेना, MBBS MD इन जनरल मेडिसिन, DM न्यूरोलॉजी, और डॉक्टर नताशा गर्ब्याल, MBBS MD इन जनरल मेडिसिन से हुई हमारी विशेष वार्ता।
1: मैम, फास्ट फूड को आप किस तरह से देखते हैं?
2: फास्ट फूड क्या है? जंक फूड है। जंक फूड, जंक नाम से ही पता चल रहा है, वो जंक है। जंक मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसको आप बस स्वाद के लिए ले रहे हैं। जो स्वाद के लिए है बस स्वास्थ्य नहीं है, मगर उस अगर आप उसे ज्यादा लेंगे तो वो स्वास्थ्य पर असर तो डालेगा ही। और आजकल क्योंकि समय की बहुत कमी है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, समय नहीं है, तो लोगों को लगता है कि ठीक है, हम जल्दी, ये टेस्टी भी है और हम इसे जल्दी भी बना सकते हैं और हम जल्दी खा सकते हैं, इसीलिए डेली जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल आजकल हो रहा है। जैसे आप जंक फूड में, जैसे लोग पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और भी बहुत सारी हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, जो भी हैं, सारी चीजें बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ही काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ही जंक फूड।
1: फास्ट फूड का हमारे इम्यून सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन्स पर क्या असर पड़ रहा है?
2: फास्ट फूड इसका हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स या आप बोल रहे हैं इम्यून सिस्टम पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा जंक फूड लेने से आपको बहुत सारी गंभीर बीमार हो सकती है जो आगे जाके भविष्य में हो सकती है, जैसे कि मोटापा हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती है। जैसे दिल की बीमारियों में दिल के दौरा पड़ने की संभावना है वो बढ़ जाती, क्योंकि आर्थरोस्क्लेरोसिस की बीमारी, जैसे दिल में जो धमनियां होती है वो सख्त हो जाती है, तो दिल के दौरा पड़ने की चीजें जो है वो बढ़ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, डायबिटीज आपको हो सकता है, शुगर जिसको बोलते हैं, मधुमेह, हिंदी में मधुमेह जिसको बोला जाता है, ये सारी चीजें हो गई आपको, ये सारी चीजें जो है, ये बीमारियां आपकी बहुत ज्यादा जंक फूड से हो सकती है। आप जो इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि आपके, मैंने बोला दिल, दिल में तो मैंने आपको बोला ही कि दिल के दौरा आपका, उसके संभावना बढ़ सकती है, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ सकता है, जिसमें आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम LDL बोलते हैं, वो बढ़ सकता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है HDL वो कम हो सकता है। दूसरा, आपकी जो धमनियां होती हैं वो सख्त हो सकती हैं, जिससे इन सब चीजों के रिस्क बढ़ सकते हैं। लिवर पे वसा बढ़ सकती है, जिसे हम फैटी लिवर बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें उससे लिवर पे हो सकती है। किडनी में ज्यादा नमक होता है इसमें, तो नमक से सोडियम की वजह से किडनियां भी धीरे धीरे उसमें भी इन्फेक्शन या उसमें दिक्कत जो हो सकती है किडनी की, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। बाकी मोटापा तो आपको होगा, तो वो एक हर बीमारी का जो है वो जड़ तो है, जो धीरे धीरे

0: ब्रेन को बढ़ाता है।
1: हम डॉक्टर माधव सक्सेना जी से जानना चाहेंगे, क्या फास्ट फूड से चिल्ड्रंस में और ब्रेन डेवलपमेंट के कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं?
2: जैसे फास्ट फूड का मैम ने बताया ही कि फास्ट फूड होता क्या है, तो जो फास्ट फूड होते हैं क्योंकि जबान पे बहुत मतलब स्वादिष्ट लगते हैं और इनमें ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं जिससे वो और एडिक्शन क्रिएट करते हैं, खासतौर से जो चीनी होती है और जो नमक होता है एंड कभी कभार जो अजीनामोटो होता है, ये सब जो है एक तरीके का एडिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बच्चे हैं उनका एक तो बिहेवियर बदल सकता है, वो चिड़चिड़े हो सकते हैं और चिड़चिड़ापन से वो माँ बाप की बात ना सुनना, जिद करना, ये सब तो होता ही है। वो ज्यादातर लोगों ने महसूस किया होगा कि जैसे बच्चों को बिस्किट दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं शाम के समय, फिर रात में बच्चा सोता नहीं है, तो एक ये नुकसान है। दूसरा ये है कि क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी फूड्स होते हैं ये फास्ट फूड, क्योंकि ये तेल में बनते हैं या फिर चीनी ज्यादा होती है इसमें, फैट ज्यादा होता है, तो बच्चों का पेट भर जाता है और जब पौष्टिक खाना खाने का समय आता है तो फिर वो खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनमें फिर मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। इससे बच्चों की ग्रोथ स्टंटिंग, दिमाग का पुअर डेवलपमेंट, क्योंकि जो दिमाग है उसको ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत होती है डेवलप करने के लिए, और ये जो ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल होता है ऐसा नहीं है कि डाइट से आता है, ये लिवर जो है ये अपने आप बनाता है। तो ये जो पौष्टिक खाना होता है जैसे चावल, दाल और हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये जो होते हैं ये पर्याप्त न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ पेट भरने का भी काम करते हैं। और फास्ट फूड में जैसे खासतौर से चाइनीज फूड के साथ देखा गया है या फिर नॉनवेज के साथ देखा गया है, जो क्या होता है कि फास्ट फूड घर पे तो कम ही बनता है जिस प्रकार का हमारा कल्चर है, तो बहुत लोग जो हैं वो ठेले से खाते हैं फास्ट फूड। तो ये जो चाइनीज फूड खासतौर में जिसमें कैबेज डलता हो या फिर नॉनवेज जहाँ पे होता है, तो जल्दबाजी के चक्कर में ठेले वाले या फिर रेस्टोरेंट्स वाले वो सही से पका नहीं पाते हैं, तो बहुत कीड़े होते हैं जो मांसपेशी में रहते हैं या फिर उनके अंडे जो होते हैं वो सब्जियों में घुस जाते हैं जब वो सब्जियां उग रही होती हैं। तो ये जो होता है ये जब आप मतलब अधूरे तरीके से ये पकाते हैं तो फिर ये जो कीड़े होते हैं ये पेट के रास्ते ये खून में घुस जाते हैं, खून के बाद ये फेफड़े में जा सकते हैं या फिर दिमाग में जा सकते हैं, जिसको हम न्यूरोसिस्टिसरकोसिस भी कहते हैं। तो उससे बहुत बच्चों को, जैसे हमारी ओपीडी में अगर हम मतलब एक दिन में करीब 200 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 30 लोग हमारे पास मिर्गी के दौरे के आते हैं, जिसमें से 8 या 10 लोग इसी बीमारी के आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो कीड़ा जो है वो घुस जाता है, पनपने लगता है, फिर जब शरीर उसको मारने की कोशिश करता है तो मिर्गी की बीमारी हो जाती है, जो कि एक लाइफ लॉन्ग डिजीज हो जाती है, क्योंकि जो दिमाग है वो फिर से नहीं बन पाता है और वो जो कीड़ा है वो दिमाग को थोड़ा नष्ट कर देता है उस हिस्से को।
1: फास्ट फूड के सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या हेल्दी फूड ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको हम अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं?
0: जो फास्ट फूड में आपके हेल्दी ऑप्शंस, जैसे आजकल तो बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको हर सोशल मीडिया की साइट्स में भी नजर आते हैं, बहुत सब लोग हेल्दी मील्स बोलते हैं, तो आप उसमें यही है कि आप ना ये जो आप मैदा के बजाय आप उसमें जो होल ग्रेन्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रागी, गेहूं, मतलब जो ये सारी चीज़ें, बाजरा, जौ, ये सारी चीज़ें, मिलेट्स, इनका इस्तेमाल करके चीज़ें बना सकते हैं। इनके लोग आजकल स्मूदीज बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, चीनी की जगह आप थोड़ा सा केला इस्तेमाल कर लीजिए, और मतलब ये सारी चीज़ें आप जो है आप चीनी ना इस्तेमाल करके आप वो छुआरे इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर जिसे आप बोलते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं मीठे पे, और आप टोफू इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप टोफू इस्तेमाल कर सकते हैं जो आजकल इंडिया में इजीली अवेलेबल भी है, जो आप ले सकते हैं। दूसरा, आप वही अंकुरित अनाज जो मैंने बोला वो आपको लेना है, ताजे फल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे हेल्दी ऑप्शंस आपके लिए हैं।
3: इसी क्रम में हम जानेंगे युवा साथी से।
4: आपका नाम?
5: इशिता।
4: आप घर का खाना ज़्यादा पसंद करती हैं या बाहर का?
5: मैं घर का खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि घर का खाना काफ़ी सिंपल होता है और मुझे स्पाइसेस वगैरह काफ़ी कम पसंद है खाने में।
4: फास्ट फूड तो आप खाती ही होंगी, फास्ट फूड में आप मतलब उसको डेली बेसिस पर खाती हैं या फिर कभी कभी?
5: फास्ट फूड में ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, फास्ट फूड में महीने में एक आध बार खा लेती हूँ, बाकी डेली बेसिस पर तो बिल्कुल भी नहीं।
4: जैसा आपने बताया आप तो फास्ट फूड कम खाती हैं, लेकिन आप जानती हैं आपके जो साथी हैं, जवान साथी, वो फास्ट फूड का काफ़ी सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो फास्ट फूड का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने बताया आप तो फास्ट फूड का कम सेवन करती हैं, लेकिन हमारे जो जवान साथी वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है?
5: मेरे ख्याल से सोशल मीडिया इस चीज़ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें पता ही है यूथ सबसे ज़्यादा इंस्पायर या फिर अट्रैक्ट होता है सोशल मीडिया से, तो लोग आजकल रील्स वगैरह देखते ही रहते हैं, उस पर खाने की चीज़ें आती हैं, उनका मन करता है बस शाम को जाओ आप कुछ ना कुछ खा कर आओ। सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है यूथ के ऊपर हर चीज़ में, तो मेरे ख्याल से तो सोशल मीडिया ही है।
3: तो श्रोताओं, बातचीत से यह सामने आता है कि फास्ट फूड न केवल हमारे शरीर को जरूरी पोषण से दूर करता है बल्कि मोटापा, पेट की समस्याएं और अन्य बीमारियों का भी कारण बन सकता है। यह तो साफ है कि संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। इसी सोच के साथ हमें अपनी दिनचर्या में स्वस्थ खान पान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम बात आसपास की के आज के इस अंक में इतना ही। मैं इशिका कौशिक आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नए अंक के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन था इशिका कौशिक और दिव्यम कर्णवाल का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: वक्त की गर्द से लम्हों को चुरा कर लाए हैं, वक्त की गर्द से लम्हों को चुरा कर लाए हैं, कुछ खोई कुछ पाई यादों का कारवां लाए हैं।
1: थाम कर बैठिए दिल ऐ सुनने वालों, थाम कर बैठिए दिल ऐ सुनने वालों, रेडियो की लहरों पर हम बीते कल का आईना लाए हैं।
0: आकाशवाणी नजीबाबाद सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ और
1: आपके दोस्त रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुहाना सफर के आज के इस अंक में। साथियों, वक्त कभी ठहरता नहीं है, वो तो अपनी रफ्तार में यूं ही गुजरता जाता है और पीछे छोड़ जाता है कुछ ऐसी तारीखें, कुछ ऐसी घटनाएं जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा रविकांत आपने। इस तरह आज हमारे सुहाने सफर का कारवां मुड़ रहा है इतिहास के बेहद उथल पुथल और उम्मीदों से भरे पन्नों की तरफ, यानी साल 2021 की यादों की गलियों में।
1: हाँ ज्योति, ये ऐसा साल था जिसने पूरी दुनिया को संकट से लड़ना भी सिखाया और जीत का परचम भी लहराया।
0: तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो,
1: सहारे का चक्कर छोड़ो, साथी तैर कर दरिया पार करो।
0: वाह भाई रविकांत, बात तो बिल्कुल सही है। साल 2021 कुछ ऐसा ही था जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी, वहीं दूसरी तरफ दूसरी कोरोना लहर का संकट गहरा रहा था।
1: तो ज्योति, वहीं दूसरी तरफ इस आपदा से उभरने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान भी इसी वर्ष यानी 2021 की ही देन था।
0: और साथियों, इस अभियान में प्राणियों को संकट से उभारने का काम किया आकाशवाणी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा। स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक रहने का संदेश जन जन तक पहुंचाया और इस संकट से बचने के उपाय भी बताएं, याद है ना रविकांत जी?
1: बिल्कुल सही कहा ज्योति। अब जानकारी के साथ साथ हमारे श्रोताओं का मनोरंजन भी तो करवाइए।
0: जी बिल्कुल, और मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। लीजिए फिर श्रोताओं के साथ हम भी सुन लेते हैं 2021 में आई ये फिल्म और हमारे इस प्रोग्राम का ये पहला गीत। और गीत हमने लिया है फिल्म सत्यमेव जयते 2 से और इसको आवाज दी है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने, गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है रोचक कोहली ने। लीजिए पेश है आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: और रविकांत जी बताइए, गीत कैसा लगा आपको?
1: भाई गीत तो बड़ा प्यारा था, और जैसा कि हम इस कार्यक्रम सुहाना सफर में बात कर रहे हैं वर्ष 2021 के आकाशवाणी के इस सुहाने सफर के बारे में,
0: और रविकांत जी इस सुहाने सफर में जहां हम देश विदेश की बातें कर रहे हैं, वहां गीत संगीत की बात अगर हम करें तो ये फिल्म सत्यमेव जयते 2 जो आई थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था और गाने तो इसके सुपर डुपर हिट रहे।
1: बिल्कुल,
0: हमें भी पसंद है और आपको भी पसंद है, और हम आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को भी पसंद आया होगा और होगा भी, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। और ज्योति बात करें कि जहां दुख सुख का ऐसा संगम रहा कि देश विदेश के हर नागरिक पर मानो आपदाओं का पहाड़ ही टूट रहा था इस वर्ष, लेकिन आपदाओं के साथ साथ ये वर्ष हौसलों की उड़ान को भी दर्शाता है।
0: बिल्कुल सही कहा रविकांत जी, क्योंकि कोरोना की लहर आ रही थी तो बिल्कुल आपदाओं का पहाड़ हम सभी पर टूट रहा था।
1: बिल्कुल,
0: और याद करो जब टोक्यो ओलंपिक 2021 को जहां हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में साथियों हमारे खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा के भाले ने आसमान को चीरते हुए देश को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया।
1: हाँ वही तो ज्योति, और तब तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुशी से झूम उठा था, और खेलों की जानकारी पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ समाचारों के माध्यम से हम तक पहुंचा रहा था आकाशवाणी, यानी हमारा सच्चा विश्वसनीय साथी।
0: और रविकांत, खेलों की ही क्यों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीति और सत्ता के गलियारे में भी बड़े बदलाव आए। अमेरिका में नए नेतृत्व के रूप में जो बाइडन ने कमाल संभाली,
1: तो वहीं श्रोताओं अफगानिस्तान के बदलते हालातों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।
0: जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो की COP26 समिट ने भविष्य बचाने का संकल्प लिया। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, और क्यों ना हम भी अपने श्रोताओं के साथ हम एक संकल्प को निभाएं।
1: संकल्प भाई ज्योति, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तुम कौन से संकल्प की बात कर रही हो?
0: आकाशवाणी के सुहाने सफर के में जानकारी तो हम देते ही हैं,
1: हाँ।
0: सूचना और विश्वसनीय तथ्यों के साथ साथ
1: बिल्कुल,
0: तो हमारे श्रोताओं का मनोरंजन करवाने का संकल्प भी तो लेना
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा तो आप समझ आया मनोरंजन का संकल्प,
0: हाँ।
1: तो भाई इस काम का तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा, लेकिन इस बार ये संकल्प मैं निभाऊंगा। देखो
0: बिल्कुल,
1: और आपको और अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे वर्ष 2021 में ही आई इस फिल्म यानी सनक का ये प्यारा सा गीत, जिसे आवाज दी है जुबिन नौटियाल ने, गीत लिखा है रश्मि विराख ने और संगीतकार हैं जीत गांगुली,
0: और ये गाना भी श्रोताओं 2021 की उस प्लेलिस्ट में है जो लोगों ने खूब पसंद किया।
1: बिल्कुल

0: भाई रविकांत, अब तो तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली।
1: हाँ भाई।
0: और इस गीत को सुनकर हमारे श्रोताओं को भी अच्छा खासा मनोरंजन हो ही गया होगा, है ना?
1: हाँ बिल्कुल ज्योति, यादों के इस सफर में हम कितनी दूर निकल आए। और देखो, इस सफर में आकाशवाणी ने देश के कोने कोने में रह रहे हर व्यक्ति के दिल में अपनी जगह सी बना ली।
0: हाँ रविकांत, बिल्कुल सही बात कही आपने। आकाशवाणी मानो जीने का सहारा सा बन गया है। अब श्रोता, साल 2021 के यादों के सफर में अब समय हो चला है कि आपको ऐसी खबर बताई जाए जिसने हर हिंदुस्तानी का सर फक्र से ऊंचा कर दिया था। एक ऐसी जीत जिसने पूरी दुनिया में भारत की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों। याद कीजिए दिसंबर 2021 की वो सर्द सुबह, जब सुदूर इसराइल के इलार शहर में एक ऐसी खबर आई कि पूरा देश खुशी से झूम उठा था। क्योंकि ज्योति, याद है ना वो खबर तुम्हें?
0: अरे हाँ, उसे कौन भूल सकता है। भारत की बेटी हरनाज सिंधु ने ब्रह्मांड की सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम कर भारत के लिए एक और बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक पल संजोया था।
1: 13 दिसंबर 2021 की ये जीत कोई आम जीत नहीं थी। आकाशवाणी ने जैसे ही ये खबर प्रसारित की तो भारत में जश्न का माहौल सा बन गया था। आकाशवाणी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में स्टेज में दुनिया भर के लगभग 79 से अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था।
0: और सबको पछाड़ते हुए रविकांत, महज 21 साल की हरनाज सिंधु ने अपनी सादगी और हाजिर जवाबी से निर्णायकों का दिल जीत लिया।
1: ज्योति, रूप और बुद्धि का जब संगम होता है ना, तो ऐसा ही नया चमत्कार होता है,
0: सही कहा आपने,
1: जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और तभी तो पूरी दुनिया में देश का परचम लहराता है।
0: भाई रविकांत, इस इतनी बड़ी खुशी के बाद पार्टी तो बनती है।
1: पार्टी? कैसी? हाँ। पार्टी भाई, अभी हम आकाशवाणी नजीबाबाद के स्टूडियो में हैं, यहाँ कहाँ है पार्टी?
0: पार्टी का मतलब मनोरंजन, तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो।
1: अच्छा, तो ये वाली पार्टी? हाँ, तो फिर अब तुम ही कोई गीत सुनवाओ।
0: हम तो अपने श्रोताओं के साथ गीतों के माध्यम से ही पार्टी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो फिर आप ही कोई गीत सुनवाओ।
0: अच्छा ठीक है, तो फिर लो सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को, और आप भी सुन लेना, ठीक है?
1: हाँ बिल्कुल, मैं भी सुनूंगा।
0: गीत जिसे हमने लिया है फिल्म राधे से, और फिल्म आई थी 2021 में, गीत गाया है साजिद खान ने, संगीत है साजिद वाजिद का,

0: श्रोताओं, मनोरंजन के बाद एक बार फिर जानकारी की ओर बढ़ते हैं। और आपको 4 जुलाई 2021 की वो तिथि याद ही होगी जब आकाशवाणी समाचार पत्रों और समाचारों के माध्यम से आपने इस खबर को सुना होगा कि 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री चुने गए थे और वो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने।
1: और ज्योति, आकाशवाणी ने न केवल इस खबर को हम तक पहुंचाया, बल्कि मुख्यमंत्री के कार्यभार और उनके संकल्प को भी समाचारों के द्वारा हम तक पहुंचाया।
0: और रविकांत, इस वर्ष की 6 जुलाई की तिथि भी काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भी की गई। और कार्यक्रम में थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक और दे दें।
1: हाँ, मेरा भी मन कर रहा था, मैं कहने वाला था आपसे एक गीत और हो जाए बस।
0: चलिए श्रोताओं, एक गीत आपको और सुनवा देते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म अतरंगी से।

0: और श्रोताओं, ये गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म अतरंगी से। सारा अली खान के ऊपर ये फिल्म का गीत फिल्माया गया था और इस गीत का जो स्टेप था चक्का चक, वो बहुत ही ज्यादा हिट सुपरहिट रहा था और उस पर खूब डांस हुआ था, लड़कियों को खूब पसंद आया था। सही कह रहे हैं रविकांत जी?
1: हाँ बिल्कुल। और गीत से अब बाहर चलते हैं ज्योति।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: और ज्योति, आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं ने जाना कि व्यापार में सुगमता के लिए नीतिगत ढांचा यानी बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक अलग प्रशासनिक कानून नीतिगत ढांचा कितना आवश्यक होता है।
0: और श्रोताओं, जमीनी स्तर तक पहुंच के बारे में इसको सुगम बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है और उद्देश्यों को सरल, सहज और आकर्षक ढंग से आकाशवाणी ने अपने अंदाज में श्रोताओं को परिचय दिया।
1: वाकई ज्योति, ये वर्ष 2021 ने अपने सुख दुख, हर्ष विषाद, कई आपदाएं, उनका निवारण, यूं कहें तो सब कुछ हमें दिखा दिया था इस वर्ष।
0: सही कहा रविकांत। वैसे तो परेशानियों से ही हौसलों की पहचान होती है। सुख दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें नकारा नहीं जा सकता। और हाँ, एक और चीज है जिसे तुम भी नकार नहीं सकते हो।
1: भाई वो क्या है बताओ जरा?
0: यादों का ये कारवां अब ठहरने को है,
1: बातों का ये सिलसिला अब सिमटने को है,
0: मगर ये दूरी कुछ समय की है दोस्तों,
1: क्योंकि अगला यादों का ये सुहाना सफर फिर शुरू होने को है।
0: रविकांत जी समझ गए ना?
1: हाँ, हाँ,
0: या फिर
1: हाँ समझ गया, क्योंकि चलते चलते अब समय है इस वर्ष आई फिल्म का गीत सुनवाने का। तो आइए सुनते हैं फिल्म तड़प का ये प्यारा सा गीत, शिल्पा राव, दर्शन रावल और शाश्वत सिंह चरण के स्वर में।
0: तो श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का अंतिम गीत, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगा।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सुहाना सफर का ये अंक अब यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी ज्योति गौड़
1: और मुझे यानी रविकांत वर्मा को
0: दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़
1: और रविकांत वर्मा का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहब्बत से। आवाजें हैं विनोद राठौर और सोनू निगम की।

ये गीत आपने सुना विनोद राठौर और सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म का नाम था मोहब्बत और इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने, गीत लिखा था समीर ने। सुनने की फरमाइश की थी हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिटुभैया साजदारानी और हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते थे टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार के सदस्य। और ये मैसेज हमारे पास आया था महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से, भेजने वाले थे रमेश नचानी, भारती नचानी, विनोद नचानी, मिथिल और प्रगति। इसी गीत को सुनना चाहते थे जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बड़ौना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदन, रोहित ऋतु और मुकेश जगपात। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी अब्दुल खालिद ने जलालाबाद से, और ये मैसेज हमें मिला था जहानाबाद नजीबाबाद जिला बिजनौर से, भेजने वाले थे मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, जैद, आरिश, जूबिया, हुरेन, अक्षा रानी, इंशा, रीबा, नाबिया और आयरा। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की थी मेन रोड तलहरा से प्रकाश।

0: और कार और नर्मदा इन्हीं के साथ में है सुझाता। इसी गीत को सुनना चाहते से सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गार्वी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी थी वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम लोहाड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश कौहर और सुनील पाठक।
1: और श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहा था जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। ग्राम जुझैला थाना सचिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया, शायना महमिद और मोहम्मद अफान भी इसी गीत को सुनना चाहते थे। जवाहरनगर उदयपुर से बब्बू भाई और भारती देवी भी इसी गीत को सुनना चाहते थे। और ये गीत सुनना चाहा था, ये हमें मैसेज किया है बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, श्रीमती हुंदीबाई बागरी ने।
0: और श्रोताओं, ये गीत के लिए हमें और एक और फरमाइश की थी
1: सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान और जय नारायण चौहान ने।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तौसीफ अख्तर की आवाज में। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, संगीत नदीम श्रवण का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने।
7: परिमहल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरपा खान, एस अमलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और मीर सराय बदायूं से जमीर खान। अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, प्रणाली सरवद सानवी और कल्पना देशमुख का। ये मैसेज हमारे पास दोबारा भेज दिया है। अगला मैसेज देखते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। इसी गीत को सुनना चाहा है मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम जैन। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जोहरी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवड़े।
6: और ये हमारे पास मैसेज आया है सहारनपुर से, भेजने वाले हैं सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू यादव और अरुणेश यादव। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम परसेड़ा पर सेंटा जिला फतेहपुर यूपी से रोहित यादव, बेटा यादव, पंकज, अंगद, आयुष, आर्यन, आयुष, आदर्श और हार्दिक यादव ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा।
7: ग्राम कैरो जिला तरन तारण पंजाब से लिखने वाले हैं ये गुरशरद, चल चतुत्रा, सुनीत्रा, सम्मी, रजनी और आकाशदीप, इसी गीत को सुनना चाहा है। हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, ये लिखने वाले हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। आकोट से विनय बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन और संजीव डाबेराव।
6: शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी भी यही गीत सुनना चाहती हैं और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है। पीपर लोड साड़ गांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आई है। वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष की। तो श्रोताओं, लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पे ये गीत।

0: और श्रोताओं लीजिए, अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वादा से। आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की, संगीत हिमेश रेशमिया का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी की मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी अलमीर, मोहम्मद जैद और जन्नत।
1: शाही मार्केट सिहोरा जिला बिजनौर से हमें मैसेज किया है आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, कादिर चौधरी और नाजमा बी ने। इसी गीत को सुनना चाहा है चौक बाजार से विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल और राजेंद्र कुमार ने।
0: और ये कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह।
1: फूलगांव निजामाबाद तेलंगाना से ही हमें मैसेज किया है एम ए वहीद रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद जाकिर और फाजिल ने।
0: और इसी गीत के लिए हमें ये फरमाइश की है श्री गणेश अविका आर्ट श्री रामपुर से, डी अशोक कुम्हार, आजीविका जीविका सोनू कुम्हार और अर्चना कुम्हार ले। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवनेश प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नाजमा बेगम नाज। और ये मैसेज हमें मिला है
1: नाच पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी ने।
0: और ये मैसेज हमें किया है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा अरोड़ा का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा।
1: ये फरमाइश हमारे पास भेजी है जलालाबाद बैस से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ ने।
1: इसी गीत को सुनना चाहे दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।
0: और ये मैसेज हमें मिला है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख का।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया साईराज और विशाल सपकाल ने।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, इन्हीं के साथ में है नगमा नाज मंसूरी।
1: ये मैसेज हमें किया है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल बोट और तन्वी बोट ने।
0: और श्रोताओं कार्यक्रम का ये अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है धनोरी तेली वाला से, भेजने वाले हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू।
1: इसी गीत को सुनना चाहे मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, रशीद अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी ने।
0: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा दिलखुश, संगीता रानी दिलखुश, पप्पू महक दिलखुश, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू दिलखुश खुश दिल, हम

0: दिल खुश बोल रहे थे, ये खुश दिल
1: खुश दिल
0: है,
1: है।
0: ये खुश दिल है। हसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति खुश दिल संजीव बंटी जिंदल और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से लिखने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।
0: और श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अंतिम मैसेज हमारे पास आया है झज्जर हरियाणा से। भेजने वाले हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। लीजिए, पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म वादा से।

रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा था समीर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की थी नदीम।

0: चार दो
1: ओ 8700142422 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142422 पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल का रिश्ता से। आवाजें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दिल का रिश्ता इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों को। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। गीत लिखा है फैज अनवर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू को। और श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। गीत लिखा है इंदीवर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है अन्नू मलिक ने।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म कसूर से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत लिखा है समीर ने और एक बार फिर से संगीत दिया है नदीम शर्मण ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कसूर का ये गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।

0: अलीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा,
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी,
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला

0: This was Polar Bear. And this was Skunk. And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी

0: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा

0: एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
2: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज की सभा के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आज रात्रि 10 बजे सुनिएगा राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

रात्रि 9:30 पर आप सुन सकते हैं विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता, इस विषय पर एक विशेष परिचर्चा जिसमें प्रतिभाग करेंगे श्री राजेश कुमार, श्री एजाज अहमद और श्रीमती प्रीति वर्मा। इस परिचर्चा के संचालनकर्ता होंगे श्री नरेंद्र पाल सिंह। श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश, इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज रात्रि 10:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर सुनिएगा सोनाली जटौला की गाई चंद गजलें।

आज संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे रेडियो प्रसारण के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल, जिसमें आज आप सुनेंगे उज्ज्वल चौधरी और मंतशा से शोभित शर्मा की बातचीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर सुनिएगा सोनाली जलौटा की गई चंद गजलें। कृषि जगत कार्यक्रम में आज संध्या 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे जल संरक्षण इस विषय पर चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का पहला भाग।

आज संध्या 5:15 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के मुख्य आकर्षण होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, दिल से दिल तक, रहस्य सीरीज, साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत।

रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज संध्या 5 बजे।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे भारत सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम महिला जगत का समय रहेगा आज दिन में 1:15, जिसमें आज आप सुनेंगे बच्चों की परवरिश और रचनात्मकता में माँ की भूमिका, इस विषय पर चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे एक परिचर्चा जिसका विषय रहेगा डिजिटल युग में बच्चों की छुट्टियां, खेल का मैदान या मोबाइल। प्रतिभागी कलाकार होंगे शालिनी चौधरी, अनीता रावत और शशिकला राजपूत। इस परिचर्चा का संचालन करेंगी सुनीता नेगी।

और श्रोताओं, कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का समय रहेगा आज दिन में 12:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हम अपने सभी सैनिक भाइयों का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिन्हें हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है।

अभी हमारे सैनिक भाई सुन रहे थे सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और जसविंदर नरूला के स्वर में फिल्म हिंदुस्तान की कसम का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की थी सुखविंदर सिंह ने। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आरजू से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

आरजू। इस फिल्म में अभी हमारे सैनिक भाई सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये प्यारा सा गीत। और सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए लिया है फिल्म बॉर्डर से। आवाज़ें हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी हमारे सैनिक भाई सुन रहे थे सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और साथियों के स्वर में फिल्म बॉर्डर का ये प्यारा सा गीत। और सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के अंत में आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और कुमार सानू के युगल स्वर में फिल्म दिल का क्या कसूर। इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत लिखा है मदन पाल ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी हमारे सैनिक भाई सुन रहे थे कुमार सानू और आशा भोसले के स्वर में फिल्म दिल का क्या कसूर का ये प्यारा सा गीत। और सैनिक भाइयों, इसी के साथ ही कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में आपका हार्दिक स्वागत है।

0: दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अब ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म मर्डर 2 से। आवाज़ें थी मोहम्मद इरफान, अरिजीत और सैम भट्ट की। गीत लिखा था सईद कादरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की थी मिथुन ने।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: श्रोताओ, संदेश के बाद कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म ओम शांति ओम से। आवाज हैं शान और उदित नारायण की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है विशाल शेखर ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म ओम शांति ओम से।

ओम शांति ओम। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शान और उदित नारायण को। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी और आज आपके साथ हूं मैं रविकांत वर्मा। जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ड्रीम गर्ल से। आवाजें हैं अल्तमस फरीदी और पलक मुच्छल की। गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने और इस गीत के लिए धुन तैयार किया है मीत ब्रदर्स ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म ड्रीम गर्ल से।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे अल्तमस फरीदी और पलक मुच्छल की आवाज़ में फिल्म ड्रीम गर्ल का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ताल से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

ताल से ताल मिला, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक का और उदित नारायण के युगल स्वर में। फिल्म का नाम था ताल। और श्रोताओ, अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म साजन से। आवाजें हैं कुमार सानू और एक बार फिर से अलका याग्निक की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से

0: विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया। गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: वज़ीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों को खत लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के री एग्जाम मरने वालों के लवाहिकीन के तई सब्र की दुआ की है। दरियासना गुज़िश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जाँ बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर अजला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी। अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी सहेली मीनाक्षी अग्रवाल। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से, जिसका विषय है बच्चों की परवरिश और रचनात्मकता में माँ की भूमिका। तो आइए बातचीत करते हैं। बहनों, माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि बच्चे की पहली शिक्षक, पहली मित्र और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। बच्चा बोलना, समझना, व्यवहार करना और दुनिया को देखना सबसे पहले अपनी माँ से ही सीखता है। माँ की छोटी छोटी बातें, उसका व्यवहार और उसके दिए हुए संस्कार बच्चों की सोच पर गहरा असर डालते हैं। आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की दुनिया में बीत रहा है, तब माँ की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहनों, एक माँ ही है जो बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान सकती है, उसे सही दिशा दे सकती है और उसके सपनों को उड़ान दे सकती है। माँ बच्चों को किताबों, कहानियों, खेल, संगीत और बातचीत से जोड़ सकती है। जब माँ बच्चों की बात ध्यान से सुनती है, उनके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करती है और उन्हें बिना डर अपनी बात रखने का मौका देती है, तब बच्चे आत्मविश्वासी और रचनात्मक बनते हैं। हर बच्चे में बहनों कोई ना कोई विशेष प्रतिभा होती है, जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा देने की। बच्चों पर केवल अच्छे अंक लाने और प्रतियोगिता का भार डालने की बजाय उन्हें सीखने और सोचने की आज़ादी देना भी बेहद ज़रूरी है। हमें बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहिए जहां वो खुलकर सीख सकें। कई बार बच्चे ऐसी बातें पूछ लेते हैं जिनका जवाब हमारे पास तुरंत नहीं होता, लेकिन उन्हें डांटने या चुप करने की बजाय अगर प्यार से समझाया जाए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बहनों, माँ का यही धैर्य और अपनापन बच्चों को खुलकर सोचने की ताकत देता है। हमारे समाज में पहले दादी नानी को कहानियाँ जो है वो बहुत उनका महत्व होता था। बच्चे कहानियाँ सुनते सुनते ही अच्छे बुरे की समझ सीखते थे। आज ज़रूरत है कि हम फिर से बच्चों को कहानियाँ, किताबों और अपनी संस्कृति से जोड़ें। और जब बात बहनों कहानियों और समाज की सोच की आती है, तो दास्तान गोई जैसी कला का नाम भी सामने आता है। इस कला को आगे बढ़ाने का काम किया है फौजिया दास्तानगो ने, जिन्होंने अपनी आवाज़ और अपने अंदाज से महिलाओं के अनुभवों, संघर्षों और समाज की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया है। तो अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट

आधी आबादी का। तो सुनते हैं आधी आबादी में, जिसमें आज की आधी आबादी की नायिका के सफर को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: बचपन में कहानियाँ अधिकतर सभी ने सुनी है, दादी नानी से और किताबों से पढ़ी भी होंगी, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि कहानी सुनाना भी एक कला हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक कला ही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने पुरानी कहानी सुनाने की कला को फिर से जिंदा किया और उसे एक नई पहचान दिलाई, और ये है फोजिया दास्तानगो, जो भारत की पहली महिला दास्तानगो मानी जाती है। दास्तानगोई क्या है बहनों, आइए समझते हैं। दास्तानगोई एक बहुत पुरानी कला है जिसमें कोई कलाकार बिना किसी बड़े सेट या म्यूजिक के सिर्फ अपनी आवाज, अंदाज और शब्दों के दम पर कहानी सुनाता है। इस कला की जड़ें हमारी पुरानी उर्दू हिंदी परंपरा में हैं। फोजिया दास्तानगो ने उस कला को चुना जो लंबे समय तक सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रही। दास्तानगोई की ये कला सिर्फ पुरुषों के लिए है, इस सोच को फोजिया ने बदला और साबित किया कि कहानी सुनाने की कला में महिलाओं की आवाज भी उतनी ही मजबूत है। अपने शुरुआती दिनों के बारे में फोजिया बताती हैं।
5: मेरा नाम है फोजिया दास्तानगो और मैं एशिया की सबसे पहली महिला दास्तानगो हूँ। मगर दास्तानगो तक पहुँचने से पहले मेरी एक और कहानी है। जब मैंने आँख खोली, अपने माँ बाप को बहुत स्ट्रगल करते हुए पाया। मेरी अम्मा ने मेरा एडमिशन कराया था एक स्कूल में, क्योंकि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूं। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ हो गया कि वो वहाँ की फ़ीस नहीं दे पाएंगी। उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और एक MCT स्कूल में एडमिशन कराया, और उन्होंने कहा कम से कम उर्दू पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो कल को अगर कहीं दूर शादी हो गई तो ख़त लिखेगी। ये सोच के उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की अपनी, और पढ़ते पढ़ते वहाँ से स्कूलिंग करी, 12th पास की। और मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगी कि जब 7th क्लास में जब मुझे लगा कि मुझे हेल्प चाहिए पढ़ाई के लिए, तो मैंने 7th क्लास से ट्यूशन्स करनी शुरू कर दी। पहली बच्ची थी महजबी जिसको मैंने पढ़ाना शुरू किया था 60 रुपये महीने पे। वहाँ से मेरी ट्यूशन्स की जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने ट्यूशन करते करते अपनी 10th की, 12th की, और 12th तक आते आते मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मुझे कम से कम टीचिंग तो नहीं करनी है। और उस जमाने में सब लोग कहते थे अच्छा ठीक है BA पास कोर्स कर लो, ये कर लो। फिर मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया। मैंने 3 साल तक, मैं रोज सुबह जामिया से निकलती, अपने घर से निकलती थी, जामिया पहुंचती थी, ब्लू लाइन बसेस चलती थी उस जमाने में, और शाम को घर पहुंचती थी। और मैं 2 रुपये समोसे के होते थे, मैं वो भी बचा लिया करती थी, कम से कम सेव हो जाएंगे पैसे, और फिर घर आके हम खाना खाते थे। मैंने अपना MA कंप्लीट किया और वहां से निकल के मैं बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में आई।
4: पढ़ाई पूरी करने के बाद और घर की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए फौजिया ने नौकरी शुरू की। कई साल तक नौकरी करते रहने के साथ ही फौजिया को लगता था कि कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ छूट रहा है। घर की आर्थिक स्थिति भी अब अच्छी थी, लेकिन उनको लगता था कि मैं इस नौकरी के लिए नहीं बनी, मुझे कुछ और करना है। तो तभी उनके जीवन में उनका परिचय हुआ दास्तानगोई से।
5: 2006 में मैं दयाल सिंह कॉलेज में गई, वहाँ पे महमूद फारूकी और दानिश हुसैन परफॉर्म कर रहे थे, और जब मैंने दास्तानगोई देखी मुझे लगा यही है वो चीज़ जो मुझे ज़िंदगी में करनी है। और 2005-06 में दास्तानगोई को कोई नहीं जानता था। शो खत्म हुआ, महमूद दानिश नीचे उतरे, मैं उनके पास पहुंची और मैंने सीधा कहा मुझे दास्तानगोई सीखनी है। वो हैरान हो गए, मतलब ये लड़की कहाँ से आई है और कह रही है मुझे दास्तानगोई सीखनी है, मतलब। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आके मिलिए।
4: शुरुआत आसान नहीं थी, एक अलग और कम जानी पहचानी कला को चुनना और उसमें अपनी जगह बनाना ये अपने आप में चुनौती थी।
5: इस बीच ये होता रहा था कि मेरी नौकरियों में जब भी प्रमोशन की बात आती थी, काम आप बहुत अच्छा करती हैं फौजे, लेकिन हम आपको प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपको अंग्रेजी बोलनी है। तो वो चीज़ ना कहीं

0: चुभने ही लगी थी मुझे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, और मुझे इतनी चंडी चढ़ गई इस बात के ऊपर कि मुझे अंग्रेजी सीखनी भी नहीं है। अंग्रेजी सीखी जा सकती है ना, ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे वो काम करना है जो मुझे आता है। मुझे क्या आता है, मुझे उर्दू आती है। दास्तान गोई किस में है, उर्दू में है। फिर वहां से मैंने दास्तान गोई सीखनी की और नौकरी नहीं छोड़ी। मैं सुबह से शाम तक नौकरी करती थी, रिहर्सल करने जाती थी, शाम को रात को 10-11 बजे घर पहुंचती थी। अब 11:30 बजे दानिश हुसैन मुझे जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पे छोड़ते थे। अब रात के 11:30-12 बजे लड़की अंदर कैसे जाए मोहल्ले में अपने, तो मैं क्या करती थी, गाड़ी में ही बुरखा ओढ़ती थी और बुरखा ओढ़ के मैं घर जाती थी ताकि किसी को पता ना चले कि भाई ये है। तो इस तरह से मैंने वो सब सीखा।
1: उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सीखा, समझा और लगातार मेहनत की। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी,
0: जिंदगी चलती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अचीव करना शुरू किया। अखबारों में मेरा, लोगों ने मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया, मेरे आर्टिकल्स आने शुरू हुए। अब जब लोग अखबार खोलते थे तो मेरा फोटो पाते थे उसमें, तब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ रिश्तेदारों वगैरह को कि क्या काम कर रही है। तो वहां से सिनेरियो चेंज होना शुरू हुआ। अब वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप लोग कहते फौजिया उसको तो हम जानते हैं, हमारी तो भांजी है, हमारी तो भतीजी है। तो ये सब बातें बताने का आपको तरीका ये है कि हमारा जो जुनून होता है ना, हमारी जो जिद होती है, ठीक है, और जिसको हमको ये बिलीव करना होता है ये हम करने वाले हैं, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको लगे रहना होता है। मैंने जो जर्नी 2006 में शुरू करी थी, कि मैं समझती हूँ 2016 में आते आते उसका नाम हुआ, 10 साल मैंने अपने उस पैशन को दिए। 10 साल का वेट था, 10 साल की स्ट्रगल थी, 10 साल के ह्यूमिलेशन भी था एक तरह से देखा जाए तो।
1: आज वो देश विदेश में अपनी दास्तान गोई के लिए जानी जाती हैं। सभी को संदेश देते हुए फौजिया कहती हैं,
0: अब बहुत बार टूटते हैं इस जर्नी में, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा अच्छा है सब कुछ, अब बहुत बार टूटते हैं, बहुत बार आप रोते हैं, बहुत बार आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हैं आप, लेकिन जब आप शो करते हैं ना, जब आप वो चीज़ अचीव करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं और लोग कहते हैं वाह क्या परफॉर्मेंस थी, कमाल कर दिया, वो है अचीवमेंट उस स्ट्रगल का, वो है अचीवमेंट। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं यहाँ पे आपको रेबल होना नहीं सिखा रही, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं सिखा रही आप क्रांतिकारियों के घर से निकल जाइए। मैं घर पे रही, मैंने पढ़ाई की पूरी, उसके बाद मैंने अपने पैशन को अपनाया। तो एक प्रोफेशन अपनाना भी ज़रूरी है पैशन के साथ साथ, आपको अपना एक स्किल देना ज़रूरी है जो आप कर सकें साथ साथ, और उसके राह पे चलना ज़रूरी है पूरी ईमानदारी के साथ, रियाज के साथ और जुनून के साथ। मैं हमेशा सिर्फ एक बात कहती हूँ, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा।
1: हर महिला के अंदर एक कहानी है, कुछ अनकही, कुछ अधूरी, लेकिन जब वो कहानी बाहर आती है तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक मिसाल बन जाती है। तो बहनों उठिए, अपनी कहानी कहिए, क्योंकि आपकी आवाज किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है। सेगमेंट आधी आबादी के बाद बहनों आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और बहनों गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और आजकल बच्चे खेल के मैदान में कम और मोबाइल की स्क्रीन पर ज्यादा नजर आते हैं। ऑनलाइन गेम और वीडियो बच्चों को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन लगातार मोबाइल में लगे रहने से उनकी सेहत और स्वभाव दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम बच्चों को खेल, किताबों और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें। मैदान में बच्चे सिर्फ खेलना ही नहीं सीखते, बल्कि मिलजुल कर रहना, अनुशासन और आत्मविश्वास भी सीखते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों की छुट्टियों में मोबाइल भी हो, लेकिन मैदान की खेल भी और अपनापन भी बना रहे। तो आज इन्हीं बातों पर हम लेकर आए हैं एक खास परिचर्चा, जिसका शीर्षक है डिजिटल युग में बच्चों की छुट्टियां, मोबाइल या मैदान। इसके प्रतिभागी हैं शालिनी चौहान, अनीता रावत, शशिकला राजपूत और इनसे बातचीत कर रही हैं सुनीता नेगी। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा।
2: श्रोता बहनों आज की परिचर्चा का हमारा विषय है डिजिटल युग में बच्चों की छुट्टियां, मोबाइल या मैदान। और इस परिचर्चा में भाग लेने वाली आज हमारी मेहमान, उनसे परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं अनीता रावत जी, शालिनी चौहान और शशिकला राजपूत जी। जैसा कि गर्मियों की छुट्टियों का समय अब नजदीक आ रहा है, लगभग 40-45 दिन की इन छुट्टियों का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर पुराने वक्त की छुट्टियों का समय देखें तो कुछ अलग था, और आज के डिजिटल दौर में, आधुनिक समय में छुट्टियों का कुछ अलग ही दौर है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे शशिकला राजपूत जी, सीनियर सिटीजन आप हैं, आपने अपना भी गर्मियों के छुट्टियों का वक्त देखा है, अपने बच्चों का भी वक्त देखा है,

0: और आज मेरे ख्याल से आपने पोते पोतियों का भी छुट्टियों का वक्त आप देख रही हैं।
1: बिल्कुल देख रही हूँ।
0: तो गर्मी की जो छुट्टियां हैं, आपको क्या लगता है कि आजकल बच्चे जो मोबाइल पर समय काटते हैं गर्मियों की छुट्टियों का, वो जो मैदान में खेलने की परंपरा थी, शरीर भी जिससे मजबूत होता था, शारीरिक श्रम होता था, वो दौर आज कहीं लुप्त होता जा रहा है, आप कैसे देखती हैं?
1: हमारे समय में तो मोबाइल होते ही नहीं थे, तो हम तो वही कि आपने देखा होगा लुका छुपी का खेल खेल लिया, एक नौका टोकी खेल खेलते थे कि गोली के साथ कंचे के साथ उसको खेलते थे, दो तीन सहेलियां इकट्ठी हुई वो खेल ली, या कुछ पेंटिंग बना लिया, कुछ कढ़ाई कर ली, इस तरह के काम हम घर में बैठ के कर लिया करते थे।
0: जी।
1: लेकिन अब मैं अपने बच्चों की छुट्टियों पर आती हूँ तो तब भी मोबाइल उतना नहीं था, तब भी मोबाइल का युग तो नहीं था कह सकते हम। वो बच्चे भी हमारे घर में या तो पढ़ाई करते थे, कुछ दूसरी कार्टून के पिक्चर्स देख ली, या उस तरह की किताबें पढ़ लिया, कुछ पेंटिंग कर ली। बेटी ने मेरी पेंटिंग सीखी, खाना बनाना सीखा छुट्टियों में।
0: जी।
1: और जो बच्चे थे, बेटे थे, साइकिलिंग करते थे शाम के समय में, कोई गिल्ली डंडा भी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, इस तरह के आउट गेम जो होते थे वो खेलते थे। लेकिन बात अगर अब मैं पोती पोतों के छुट्टियों की करूं,
0: जी
1: तो वाकई अब तो डिजिटल युग है, बिना फोन के तो बच्चे रहना नहीं चाहते हैं, और या तो उन्हें टीवी चाहिए या फिर उनको मोबाइल दे दिया जाए। और इसमें सुनीता जी, अगर मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी कुछ योगदान है
0: बिल्कुल
1: बच्चों की ये आदत डालने में,
0: जी
1: और वो भी माँ बाप भी जो है, पेरेंट्स भी जो है, वो भी गलत नहीं है। आजकल दोनों ही, माँ हो चाहे बाप हो, पिता हो, दोनों ही वर्किंग में है,
0: जी
1: तो घर के काम करने के लिए उन्हें समय चाहिए, और छोटे छोटे बच्चे होते तो वो समय उन्हें मिलता नहीं, बच्चे करने नहीं देते, तो अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, करने के लिए वो बच्चों को ये चीजें दे देते हैं कि तुम इसमें लगो और हम अपने काम कर लें।
0: जी, अक्सर हम देख रहे हैं कि अगर बच्चा छोटा भी है और रो रहा है तो माता पिता उसे बहलाने के लिए मोबाइल का फोन पकड़ा देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और धीरे धीरे यही उनकी आदत बनती जा रही
1: हाँ।
0: है। और आज देखिए मोबाइल गेमिंग बच्चे कर रहे हैं, स्क्रीन पर बहुत वक्त दे रहे हैं, और छुट्टियों का वक्त तो इस टाइम में भी हम देखते हैं कि बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं। शालिनी जी, आप बताइएगा कि डिजिटल युग में क्या स्क्रीन पर टाइम को स्पेंड करना सही है?
2: जैसे कि मैं मैडम बता रही थी कि मोबाइल का यूज, तो मोबाइल बच्चों का दुश्मन नहीं है, बिना लगाम का घोड़ा दुश्मन है। लगाम आप हैं, अपने बच्चों को कैसे सही दिशा दिखाएंगे यह सब आपके हाथ में है।
0: जी।
2: जैसे कि बच्चों को आजकल होलीडे होमवर्क स्कूलों में मिल रहा है, तो बच्चे तो डिजिटल होते जा रहे हैं क्योंकि आजकल मोबाइल देख रहे हैं, और उन्हें आसानी से अपना वर्क करने को मिल जाता है। तो जैसा कि कहा गया, बच्चों को फोन से दूर नहीं करना, फोन को सही यूज के पास लाना है। बच्चे मोबाइल चला चला के आजकल अपने जो तार्किक क्षमता है उस पे भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बच्चे। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक के थ्रू में ही बच्चे अपने क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियोग्राफी बना के अपना काम करते हैं बच्चे।
0: जी, अगर कहा जाए तो आज के युग में मोबाइल जहाँ आवश्यकता है और जरूरी भी है, लेकिन कितना उसका उपयोग किया जाए, किस हद तक उपयोग किया जाए, ये हम माता पिता को ध्यान रखना चाहिए बच्चों के हित के लिए। छुट्टियों की बात है तो ऐसा ना हो कि बच्चे घर पर ही हैं। पहले दौर हुआ करता था कि छुट्टियां आई तो हर कोई कहाँ जाना है कि नानी के घर, या कभी हो गया दो चार दिन के लिए तो माता पिता के साथ कहीं आउटिंग पे चले गए दो चार दिन, लेकिन ज्यादातर बच्चे अधिकतर नानी के घर पर ही छुट्टियां बिताते थे।
2: बच्चे क्या करते थे, जैसे मैम कागजों की नाव बनाकर छुट्टी का आनंद करते थे। आजकल के बच्चे क्या है, इन गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि वह अपना समय मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम और टीवी कार्टून समय पर बिताना ज्यादा पसंद कर, जब तो मैदानों पे तो वो जाना पसंद ही नहीं करते क्योंकि सारा समय तो उनका मोबाइल में ही लग रहा है, तो वो कैसे मैदान में जाएंगे, कैसे अपना समय व्यतीत करेंगे।
0: जी, तो अनीता जी, इन छुट्टियों का सदुपयोग कैसे किया जाए, मैदान की तरफ बच्चों को किस तरह से आकर्षित किया जाए कि वो शारीरिक खेलों को भी महत्व दे।
3: हाँ, उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैम कि किसी भी काम के लिए, बच्चों के लिए तो माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है ना।
0: जी।
3: तो माता पिता ही अपने बच्चों को गाइडेंस कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं कि बच्चों मोबाइल अगर आपको यूज करना भी है तो एक समय होता है मोबाइल यूज करने का, इतना समय में आपको करना है, इतनी पढ़ाई आपको करनी है। हाँ जी,
0: एक लिमिट में अगर हम बच्चों को दें एक समय, जैसे आपने कहा बांध दे कि इतनी देर आपको मोबाइल मिलेगा, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी देख लीजिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आपको होमवर्क मिलेगा, वो भी करना होता है, मोबाइल से तो आप बच्चे को दूर नहीं कर सकते हैं। शशिकला जी,
1: जी
0: आप बताइए हमारे श्रोताओं को किस तरह से बच्चों को हम इसके लिए प्रेरित करेंगे कि आजकल डिजिटल युग में एक कमरे में बंद ना हो करके वो खेल के मैदान तक पहुंचे।
1: सबसे पहले तो माता पिता को अपने को ही थोड़ा सा अनुशासित होना पड़ेगा कि वो ही कम से कम मोबाइल का यूज करें बच्चों के सामने। लेकिन अगर वो खुद ही देख रहे हैं, मम्मी खाना खा रही है, मम्मी खुद ही मोबाइल देखकर खा रही है, पापा भी टीवी देखकर खा रहे हैं, तो बच्चों को लगेगा ये जरूरी है शायद, तो हम भी क्यों ना देखें, हम भी खाना खाएंगे तो मोबाइल देखकर ही खाएंगे। अब आजकल जो वर्किंग में है उनको अगर सैटरडे संडे दो दिन की छुट्टियां मिली तो घर के बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं, वो करने होते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो देख लो, उन्होंने तो आजादी दे दी लेकिन बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बच्चे अगर बड़े हैं, वो समझते हैं अपना अच्छा बुरा, ये तो छोटे बच्चों की बात हुई, तो मोबाइल जरूरी भी है लेकिन एक अनुशासन में, अनुशासित रहें, बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाएं, अनुशासित रखें, तो मोबाइल से कोई ऐसा दुश्मन नहीं है कि बच्चों को काट ही लेगा, बुराई करेगा, उनके लिए बुरा नहीं करेगा। थोड़ा सा मनोरंजन करने दें जो दिमागी इसके लिए जरूरी है, लेकिन शारीरिक रूप से आउटिंग कराएं उनको, तो वो हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगी पेरेंट्स से कि वो खुद अपना समय दें बच्चों को अनुशासित करने में।
0: बिल्कुल। अगर माता पिता ये ठान लें कि बच्चों को हमें बाहर लेकर जाना है, हमें बच्चों को समय देना है, आप उन्हें पार्क में ले जाइए, खेल के मैदान में ले जाइए, सुबह की वॉक पर लेकर जाइए, शाम को लेकर जाइए, तो मुझे लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं फिर प्रेरित होंगे इस चीज के लिए कि अगर स्वयं माता पिता उनके साथ जा रहे हैं। तो शालिनी जी, आपका क्या कहना रहेगा कि स्क्रीन का अगर बच्चा देख रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें भी सीख सकता है?
2: स्क्रीन में तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम बच्चों को मोबाइल देते हैं तो पहली बात को अभिभावक को भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। अगर हम उस पर नजर रखेंगे, हमारा बच्चा हमारी पढ़ाई के लिए कुछ अच्छा सीख रहा है तो ठीक है। अगर लगता है बच्चा हमारा कुछ अलग माहौल में जा रहा है तो उसे आप क्या करें, उसका मोबाइल बंद करा के उसे प्राकृतिक माहौल में लेके जाइए। बच्चों को जितना आप घुमाएंगे तो उससे बच्चे का स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बच्चा भी क्या करता है, हमारी जो आपस की समस्या होती है वो एक दूसरे को देखता है और सुलझाने का भी सामना करता है।
0: जी,
2: उससे बच्चे की तार्किक क्षमता भी थोड़ी बढ़ती है।
0: जी जी।
2: बच्चा देखो एक दूसरे से मिलेगा, क्योंकि मोबाइल में बच्चे लगे रहते हैं तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की समस्या भी समझते हैं और उनका कौशल विकास भी बढ़ता है, क्योंकि मैदान का उपयोग करने में बच्चों की कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, अब प्राकृतिक माहौल में नई चुनौतियों को जोखिम लेने सीखते हैं और आत्मविश्वास भी उनका बढ़ता है। अगर बच्चे लगातार मोबाइल का उपयोग करते हैं तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
2: और साथ में नींद ना आना जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये उम्र होती है रचनात्मक और कलात्मक, इस उम्र में बहुत अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। पहले भी बच्चों के अंदर हॉबी होती थी, उस हॉबी को हम लोग या हमारे गार्जियंस आगे लेकर जाते थे, हमें सिखाते थे, प्रेरणा देते थे, लेकिन आज के समय में अगर हॉबी है बच्चों के अंदर, किसी को पेंटिंग की है, किसी कुछ रचनात्मक करने का है, कुछ क्राफ्ट वर्क है, इस तरह की चीजें अगर घर पे अपने सामने हम बच्चों को कराते हैं। देखिए मोबाइल पर तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर घर पर किया जाए इस चीज को बच्चे के साथ मिलकर, अनीता जी आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
3: प्रैक्टिकल अगर बच्चा सीखेगा ना, सबसे पहले वो अपने से बड़ों को देख के तो सीखेगा ना कि हाँ हमारे बड़े हम कैसे कर रहे हैं, है ना
0: जी। अब आप निर्भरता की हम बात करें, देखिए स्कूल वक्त टाइम में अगर बच्चा जा रहा है तो उसके पास समय नहीं है कि अपने छोटे कामों को वो कर सके, लेकिन छुट्टियां बहुत अच्छा अवसर होता है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, क्यों शशिकला जी?
1: ये अभी मैं बच्चों के पास गई थी तो मैंने देखा भी कि जैसे अपने बच्चों के क्रॉक्स जूते चप्पल होते हैं तो उनको अगर बता दिया जाता है कि एक स्थान पर रखते हैं, तो स्कूल से आया तो उसने बच्चे ने अपने शूज उतारे और उसमें रखे भी हैं
0: जी।
1: और जहां तक मैं अभी हम बात कर रहे थे मोबाइल से नुकसान वाली बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों की बात है, तो मैं एक परेशानी और बताना चाहूंगी कि बच्चों में अभी ज्यादा उम्र में बोलना सीख रहे हैं, जैसे 3 साल का बच्चा बोलने लगता है, 4 साल में बच्चा पूरी बातें बोलने लगता है, सेंटेंस पूरा बोलने लगता है, वो बोलेंगे कैसे, हम उनसे बात ही कम करते हैं, वो खाली टीवी में देखते रहते हैं, बस उनको देखना तो आता है, बोलना कम आता है, तो ये भी परेशानी एक बड़ी है ये बीमारी बच्चों में कि बोलना देर से सीखते हैं, 5-6 साल में जाके वो बोलते हैं। अब बच्चों को अगर हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि कोई पार्क ना हो, कोई कुछ ना हो, तो हम घर में भी लूडो खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी उन बच्चों को खिला सकते हैं, बॉल भी छोटा मोटा खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, पेंटिंग करना सिखा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम घर में बैठकर भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। लेकिन बात वही घूम फिर कर आती है कि माता पिता को समय देना पड़ेगा उन बच्चों
0: को। बिल्कुल, रचनात्मक अगर बच्चे को बनाना है तो माता पिता को तो उन्हें सिखाना ही पड़ेगा, इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: आप एक मोबाइल के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते
1: और उनको शारीरिक रूप से भी अगर हष्ट पुष्ट बनाना है तो बाहर भी लेकर समय समय पर जाना ही होगा, ताकि वो कुछ भी खेलें, बाहर जाकर दौड़ें, कुछ भी करें।
0: बच्चा अगर माता पिता के साथ बैठता है, परिवार वालों के साथ बैठता है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जुड़ाव भी एक महसूस होता है, संबंधों को समझ भी उसके भीतर आती है, और एक संस्कार जो हम कहते हैं कि परिवार को देखकर बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं, वो भी होते हैं। और अगर बच्चा मोबाइल पर ही सब चीज़ सीख रहा है, मोबाइल ही देख रहा है, छुट्टियां भी उसकी मोबाइल पर कट रही हैं, तो इन चीज़ों का अभाव आने वाले वक्त में उस बच्चे के भीतर जरूर दिखाई देता है। मोबाइल स्क्रीन पर जब बच्चा बहुत टाइम दे रहा है तो कहीं ना कहीं डिजिटल सुरक्षा की भी बात की जाती है, तो मोबाइल का यूज तो करें, स्क्रीन का यूज करें, सीखें उससे, क्योंकि इस दौर में जरूरी भी है, लेकिन साथ साथ शारीरिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी हैं। मैदान की ओर भी हमें दोबारा लौटना होगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी जैसी कितनी समस्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज, सर्वाइकल, इस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। अनीता जी आप क्या कहेंगे इस बारे में?

0: है कि मैदान का महत्व तो आज भी क्यों है?
1: मैदान का कहते हैं ना, खुला वातावरण में जब हम घूमते हैं तो हमारा मानसिक और स्वास्थ्य विकास भी अच्छे से होता है ना। अगर हम पेरेंट्स हैं तो वो पहले खुद अगर घर से बाहर निकलेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तभी तो माता पिता को देख के कहीं बच्चा सीखेगा कि हाँ भाई हमारे मम्मी पापा भी घूम रहे हैं, घर में भाई बहन भी बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो वो हमारे स्वास्थ्य पे भी, हमारे मानसिक स्थिति पे भी बहुत अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा उसका। तो बच्चों को सिखाना चाहिए मम्मी पापा को कि शाम के टाइम आप वॉक भी कर सकते हो, सुबह के टाइम भी चल सकते हो, और शाम में आप अपना बाहर जाके गेम भी खेल सकते हो, आउटडोर गेम, है ना।
0: जी, और एक परंपरा जो चल पड़ी है, आजकल माता पिता दोनों ही वर्किंग है, कहीं रिश्तेदारी में जाने का छुट्टियों में जो समय है वो कल्चर है, लगभग मुझे लगता है थोड़ा खत्म हो रहा है आजकल।
1: हाँ जी, हाँ
0: वो
1: जी, हाँ जी,
0: कल्चर खत्म हो रहा है, लेकिन अगर उस कल्चर को हम बरकरार रखते हैं तो बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। शशिकला जी, आप क्या कहेंगी इस बारे में?
2: देखिए, बच्चों की तो छुट्टियां हो जाती हैं गर्मियों में, लेकिन पेरेंट्स जो जॉब में हैं, वर्किंग हैं, उनकी तो छुट्टियां होती नहीं।
0: जी
2: तो बाहर जाने की जो आपने बात की कि वो बंद होती जा रही परंपराएं, तो वाकई में इसी वजह से हो रही हैं कि बच्चों की छुट्टियां हुई बंद और पेरेंट्स की तो भाई चले रहे, उन्हें तो ऑफिस जाना ही जाना है,
0: जी
2: उनके लिए तो कोई छुट्टी है नहीं। तो इसीलिए बच्चों को ज्यादा मोबाइल का या ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो समर वेकेशन जो चल रहे हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल में भी सिखाने के लिए बुलाते हैं, और इस तरह के जो पेरेंट्स हैं जो खुद
0: जी
2: समय नहीं दे पा रहे हैं, वो वहां पर अपने बच्चों के एडमिशन कराते हैं और वहां पर ऐसी जगह भेजते भी हैं।
0: बहुत सही आपने कहा कि इस तरह की क्लासेस अगर हम बच्चों को ज्वाइन कराते हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक गतिविधियां भी इन क्लासेस में
2: बिल्कुल
0: होंगी।
2: बिल्कुल,
0: नहीं भी अगर आप बच्चों को नहीं बाहर भेजना चाहते, जैसे धूप का माहौल है, तो आजकल इतनी मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, आप घर पे ही मोबाइल के थ्रू, कहते हैं ना मोबाइल का यूज करना है, तो बच्चों को इसमें कराइए ना। आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें इतनी सिखाई जा रही है आजकल,
1: जी
0: बच्चा उसके जरिए से कुछ भी कर सकता है, तो उससे
1: बिल्कुल
0: क्या होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट से बच्चों की ड्राइंग भी होगी और समय का भी अच्छा यूज हो पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो चलते चलते आप सभी से एक बार और मैं पूछना चाहूंगी, अनीता जी पहले आप बताएं कि आने वाली छुट्टियों का उपयोग कैसे करें माता पिता अपने बच्चों के साथ, जिससे शारीरिक रूप से भी वो फिट रहें, मानसिक रूप से भी फिट रहें, आजकल के इस डिजिटल दौर में वो पिछड़े भी ना।
1: इसके लिए सबसे पहले तो वर्किंग लोग हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को समय देना है ना।
0: जी
1: बच्चों को आप समय दोगे तो बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे, है ना। बच्चों को ये रहेगा कि हाँ भाई हमारे मम्मी पापा हमें समय दे रहे हैं, है ना।
0: जी देखिए, वर्किंग है माता पिता, तो देखिए अगर माता पिता भी से दोनों भी आप बारी बारी से 4 दिन की छुट्टी कोई ले ले, 4 दिन की कोई छुट्टी ले ले, आप 4-4 दिन के लिए भी बच्चों को आउटिंग के लिए ले जाइए, किसी ऐसी जगह घुमाने लेकर जाइए जहां जाकर वो कुछ सीखे, जिससे कि वो आपके स्क्रीन से भी थोड़ा दूर रहेगा, बाहर जाके उसे कुछ सीखने को भी मिलेगा और बच्चा भी खुश रहेगा कि मम्मी पापा ने हमारे लिए छुट्टी ली है। क्यों शालिनी जी?
3: बिल्कुल सही कह रही है मैम। जैसे कि आपसे कहा है कि आप बच्चों को ज्यादातर प्राकृतिक रूप से कहीं ऐसी जगह घुमाने लेके जा रहे हैं, तो पहले बच्चों को उसके बारे में बताइए, ये जगह ये है, यहाँ ये हुआ है, तो बच्चे भी क्या होगा, थोड़ा रुचि बढ़ती है, बच्चे भी हमसे 10 सवाल पूछते हैं।
0: जी, और शशिकला जी चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर?
2: मैं तो बस अपनी बहनों से यही कहूंगी कि बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से दूर तो करना असंभव है, जरूरी भी है थोड़ा, अगर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनको भी खेलने दीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं। एक निश्चित समय कर दीजिए कि आधा घंटा उनको देना है, 1 घंटा देना, आधा घंटा, लेकिन एक साथ में 1 घंटा नहीं भी देना है,
0: जी।
2: आधा घंटा सुबह में दे दें, आधा घंटा शाम में दे दें। आप वर्किंग में हैं तो छुट्टियां तो वैसे वर्किंग में मिलती भी हैं, तो आप पति पत्नी दोनों छुट्टियां लें और बच्चों को कहीं बाहर दिखाएं, लेके जाएं, जैसे कि अभी शालिनी जी ने कहा, घुमाएं फिराएं, उनको नेचर जो प्रकृति हमारी है उससे उनका परिचय कराएं। और डेली में तो है ही है, शाम को अगर थोड़ा समय भी आपको मिलता है, 1 घंटा भी मिलता है, तो बच्चों को अपने पार्क की अगर सुविधा आपके पास है तो वहां भी ले जाएं, वहां भी स्विमिंग मैंने देखा है बच्चे करते हैं, पार्किंग में झूले होते हैं, स्लाइडर होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, दौड़ते भी हैं। तो ये सब अगर माता पिता कराएंगे, जरूरी समझेंगे कि खाली मोबाइल ही जरूरी नहीं है,
0: जी
2: ये शारीरिक जो श्रम है ये भी बच्चे के लिए जरूरी है।
0: तो श्रोता मैनो, आने वाली इन छुट्टियों को आपके बच्चे सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं काटेंगे, बल्कि आप उन्हें प्राकृतिक नजारे दिखाने के लिए ले जाएंगे, मैदान की ओर खेलने के लिए प्रेरित आप करेंगे, स्वयं उनका सपोर्ट करेंगे, अपने साथ उनको लेकर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक और मानसिक रूप से आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ रहेगी। तो इसी के साथ आज की इस परिचर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अनीता रावत जी, शालिनी चौहान जी और शशिकला राजपूत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छे विचार अपने परिचर्चा में रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।
4: धन्यवाद। अभी हमने सुनी ये परिचर्चा जिसका शीर्षक था डिजिटल युग में बच्चों की छुट्टियां, मोबाइल या मैदान, और इसके प्रतिभागी थे शालिनी चौहान, अनीता रावत, शशिकला राजपूत और बातचीत कर रही थी सुनीता नेगी। तो बहनों आज के लिए बस इतना ही, अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भारत सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये पहला गढ़वाली लोकगीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भारत सिंह नेगी के गाए कुछ गढ़वाली लोकगीत। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गढ़वाली लोकगीत भारत सिंह नेगी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भारत सिंह नेगी की आवाज में ये गढ़वाली लोकगीत। और श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में।

0: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ആൻഡ് ആലപ്പുഴ ഇൻ കേരളം. ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൽ ബി ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർഡ് ഓവർ കേരളം വൺസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60% ഓഫ് ദ 14 വെതർ മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് അക്രോസ് കേരളം ആൻഡ് ലക്ഷദ്വീപ് റെക്കോർഡ് എ മിനിമം ഓഫ് 2.5 millimeters ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഫോർ 2 consecutive days ആഫ്റ്റർ മെയ് 10. വിൻഡ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇൻസാറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ വിൽ ഓൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ് ബിഫോർ കൺഫേമിംഗ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ മൺസൂൺ. വൈൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫ്രം തൃശൂർ നോർത്ത്വാർഡ്സ് ഹാവ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റെയിൻഫോൾ സിൻസ് ദിസ് മോർണിംഗ്, സെവറൽ സദേൺ റീജിയൻസ് continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: The sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा

0: लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओ, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है और इस खूबसूरत कार्यक्रम को लेकर आपके साथ उपस्थित हूं मैं, रविकांत वर्मा। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम यानी एक ही कलाकार में हम समय समय पर किसी महान व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनके जीवन, व्यक्तित्व, कैरियर पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान कलाकार हैं हिंदी फिल्मों के जाने माने प्रसिद्ध महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। श्रोताओं, पृथ्वीराज कपूर हिंदी सिनेमा और भारतीय रंगमंच के महान स्तंभों में से एक थे। वे कपूर खानदान के संस्थापक और भारतीय हिंदी फिल्मी जगत के अग्रणी कलाकारों में गिने जाते हैं। इनकी दमदार आवाज और उत्कृष्ट अभिनय के लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। श्रोताओं, पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को ब्रिटिश भारत के समुद्री फैसलाबाद, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इन्हीं से कपूर खानदान की शुरुआत सिनेमा जगत में होती है। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं। पृथ्वीराज कपूर ने 1952 में आई फिल्म आनंदमठ में मुख्य सन्यासी नेता सत्यानंद की दमदार भूमिका निभाई थी। इस फिल्म बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास पर ये फिल्म आधारित है। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये प्यारा सा गीत हेमंत कुमार के स्वर में।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की। श्रोताओं आपको बता दें कि पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता मूक फिल्मों से अपना कैरियर शुरू किया था। इन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जो कि 1931 में बनी थी, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सन 1928 में अपनी किस्मत आजमाने अभिनय की दुनिया मुंबई में आ गए थे। पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड के प्रसिद्ध कपूर खानदान के मुखिया कहे जाते हैं। इनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर भी भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मी सितारे बने। पृथ्वीराज कपूर ने सन 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की थी। इन्होंने देश भर में नाटकों का मंचन किया और रंगमंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, इन्हीं की फिल्म का गीत है। फिल्म का नाम है कल आज और कल। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा,
1: सुनो तो
0: मोना,
1: सुनो तो सुनो तो। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: श्रोताओ, फिल्म कल आज और कल जो कि 1971 में बनी हुई थी, उसमें पृथ्वीराज कपूर ने दीवान बहादुर कपूर की मुख्य भूमिका निभाई थी, जो परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग यानी दादाजी थे। आपको बता दें कि फिल्म कल आज और कल में कपूर खानदान की तीन पीढ़ियां एक साथ नजर आई थी मुख्य कलाकारों के रूप में, जो कि थे पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, बबीता और इनके डेविड अब्राहम जो कि मुंशी जी के रूप में निभाए थे। श्रोताओ, बात करें पृथ्वीराज कपूर की प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में, तो फिल्म सिकंदर जो कि 1941 में आई थी, वर्ष 1937 की फिल्म विद्यापति और 1960 में आई फिल्म मुगले आजम इनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं, जिनमें इन्होंने सम्राट अकबर की यादगार भूमिका निभाई थी। तो आइए सुनवाते हैं इनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म मुगले आजम का ये प्यारा सा गीत। लेकिन गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: लीजिए श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मुगले आजम का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मुगले आजम का ये प्यारा सा गीत। और आपको बता दें कि ये फिल्म आई थी 1960 में और आसिफ द्वारा निर्देशित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज कपूर का सम्राट अकबर का किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज भी अमर है। आलमारा 1931 में आई ये भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर ने एक यादगार भूमिका निभाई थी। 1941 में आई फिल्म सिकंदर, इस ऐतिहासिक फिल्म में उन्होंने महान सिकंदर का किरदार निभाया था। 1951 में आई फिल्म आवारा, राज कपूर के निर्देशन में बनी इस सदाबहार फिल्म में वे जज रघुनाथ के रूप में नजर आए। कल आज और कल ये फिल्म आई थी 1971 में, यह उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें कपूर खानदान की तीन पीढ़ियां पृथ्वीराज कपूर, उनके बेटे राज कपूर और पोते रणधीर कपूर एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। श्रोताओं, इनकी अन्य फिल्मों जैसे कल आज और कल, प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम, आवारा, सिकंदर, विद्यापति, आलमारा आदि फिल्में थीं जिनमें इनके अभिनय को पूरे देश ने सराहा और पसंद किया था। श्रोताओं, पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा जगत के पितामह भी कहे जाते हैं। और श्रोताओं, वो दिन भी आ गया जब इस महान फिल्म अभिनेता ने इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, और वो दिन था 29 मई 1972, जब इस महान अभिनेता ने अंतिम सांस ली। श्रोताओं, इस महान अभिनेता का शहंशाह किरदार भारतीय सिनेमा के जगत में आज भी अमर रहेगा और हमेशा अमर रहेगा। आइए सुनवाते हैं इनकी फिल्म आलमारा का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी के सुर में।

श्रोताओं, पृथ्वीराज कपूर को कला के क्षेत्र में भारतीय हिंदी फिल्मों की दुनिया में अपना अपूर्व योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में पद्म विभूषण और मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1971 से सम्मानित किया गया था। ये कुछ समय राज्यसभा के नामांकित सदस्य भी रह चुके थे। श्रोताओं, 29 मई यानी अब से दो दिन पश्चात इस महान अभिनेता की पुण्यतिथि है। हम पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से इन्हें शत शत नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं।

लता मंगेशकर और मलय मुखर्जी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म विद्यापति का ये प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही कलाकार अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज हमारे मेहमान कलाकार थे महान फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। और रिश्ता ये खास है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के पुराने श्रोता जितेंद्र सिंह कक्कड़ के रेडियो से जुड़े अनुभव।
1: बड़े बड़े रेडियो और तांबे की एरियल की तार जब घर की छत पर एक से दूसरे कोने पर बांध दी जाती थी, तब रेडियो को खोलने के बाद सुबह और शाम समाचार फिल्मों गीतों की सुरीली आवाज के साथ आकाशवाणी से एंकरिंग करते हुए जब एंकर कहता था कि ये आकाशवाणी नजीबाबाद है, तब गर्व महसूस होता था कि हम आज आकाशवाणी नजीबाबाद से होने वाले प्रसारण फिल्मों गीतों को सुनने जा रहे हैं। हिंदी फिल्मों के गीत और समाचार पत्रों के माध्यम से श्रोताओं द्वारा आने वाली फरमाइशों पर जब एंकर कहता था कि आज हम आपको यह गीत सुनाने वाले हैं, गीत के बोल हैं झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा दिल में प्यार है कि नहीं, गांव या शहर के नाम से फरमाइश करता का नाम जब आकाशवाणी से प्रसारित होता था तो एक अलग अनुभव महसूस करते थे। तब ये भी ज्ञान प्राप्त होता था कि कौन सा गाँव, कौन सा शहर, कौन से कस्बे से ये फरमाइश आई है, उनका नाम पता, श्रीमती या श्रीमान। सुनते थे तो एक अच्छा अनुभव महसूस होता था, खुशी महसूस होती थी कि रेडियो के माध्यम से हमें आज सारी जानकारी प्राप्त होती है। और यदि कहें तो ग्रामीण प्रवेश में किसानों से जुड़ी समस्याओं का निवारण, जैसे खेती बाड़ी के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीकों और मौसम की जानकारी, किसानों के लाभ में और कार्यशैली में बहुत ही बदलाव आया जब से आकाशवाणी से कृषि संबंधी कार्यों के प्रति जागरूकता पैदा की गई। आम आदमी को जागृत करने के लिए आपदा प्रबंधन के जरिए जनता को तुरंत समाचार माध्यम से लाभान्वित होना सुनिश्चित था। इसी प्रकार स्वास्थ्य संस्कार, स्वास्थ्य के प्रति जागृति, शिक्षा के प्रति जागृति, पर्यावरण और पौधों की संरक्षणता मुद्दों पर आम जन को जब आकाशवाणी के द्वारा बताया जाता था तो उससे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई, शिक्षा के प्रति बहुत ही जनता जागृत हुई, लोग जागृत हुए, आम जन जागृत हुआ और पर्यावरण के प्रति भी ऐसा ही भाव आम जन का रहा। मुझे एक बात तो बताते हुए एक बड़ी खुशी हो रही है, जब हमारे घर में लगभग 1965-66 के बीच हमारे घर रेडियो आया था और उसकी एरियल की तार लगा करके जब हमने रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और अड़ोस पड़ोस के

बच्चे हम भी बचपन में थे, आते थे और रेडियो पर सुनने वाले गाने और कार्यक्रमों का वो भी आनंद उठाते थे, तो उस बात की वजह से हमारी तबीयत बहुत खुश रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। हम एक श्रोता के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों की आवाज़ से भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। साहित्यकारों को भी काफ़ी लाभ मिला। आकाशवाणी के माध्यम से साहित्यकारों को अपने विचार गद्य या पद्य में रखने का मौका मिलता है। साहित्यकारों को इससे आर्थिक लाभ भी मिलता है और विशेष रूप से सामाजिक पहचान और समाज में रहते हुए गर्व महसूस होता है कि आकाशवाणी से साहित्यकारों, कवियों, गजलकारों के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। वहीं साहित्यकार बताते हुए गर्व महसूस करता है कि रेडियो स्टेशन से मेरा कार्यक्रम प्रसारित होगा। अंत में मैं यह कहते हुए कि मैं अपनी एक गीत सुनना चाहता हूँ आपके रेडियो के माध्यम से। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरा फेवरेट गीत है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम रिश्ता ये खास है अब यहीं संपन्न होता है। इसके अंतर्गत आज आपने सुने जितेंद्र सिंह कक्कड़ के रेडियो से जुड़े अनुभव और उनकी पसंद का ये गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। अब सुनिए जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आज रात 10 हम आपको सुनवाएंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। आज शाम 5:15 पर युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में आज क्रम होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, दिल से दिल तक और लव स्टोरी। शाम 6:05 पर किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज चर्चा का विषय होगा जल संरक्षण। साथ ही श्रोता सुनेंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आज सुनेंगे उज्जवल चौधरी और मंतशा से शोभित शर्मा की बातचीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर आप सुनेंगे सोनाली जलोठा की आवाज में गजलें। रात 9:30 पर कार्यक्रम परिचर्चा के अंतर्गत आज का विषय होगा विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता। इस परिचर्चा में प्रतिभागी होंगे राजेश कुमार, एजाज अहमद और प्रीति वर्मा। संचालन करेंगे नरेंद्र पाल सिंह। श्रोताओं, आज फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में। रात 8 गीत संध्या में। रात 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। और रात 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोताओं, अब सुनिए जानकारी कल के विशेष कार्यक्रमों के विषय में। कल यानी 27 मई 2026 की रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल, और कल रात कार्यक्रम कानून की बात आप सुनेंगे कल रात 7:32 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होंगे। प्रातः 6:45 पर कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रतिभा गौड़ का काव्य पाठ। सवेरे 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा मानसिक रोगों का इलाज संभव है। खेती की बातें कार्यक्रम में कल प्रातः 7:10 पर किसान श्रोता सुनेंगे जानकारी गर्मियों में मौन वंशों की देखभाल सूरज के साथ साथ। इस कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर चर्चा होगी समर वैकेशन में बच्चों को क्रिएटिव तरीके से रखें व्यस्त इस विषय पर, और साथ ही जानकारी दी जाएगी एसी कमरे से सीधे धूप में जाने वाले हो जाएं सावधान विषय पर। बात आसपास की इस कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर आप सुनेंगे जानकारी जिसमें वाचन स्वर एवं संकलन रहेगा अंकुर चौधरी का। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर आप सुनेंगे कल दिन में 10 बजे। इस कार्यक्रम में बातें होंगी वर्ष 2021 के बारे में। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम की फिजाओं में कुछ खास बात होती है, दोस्ती, मुस्कान और सपनों की बरसात होती है।
1: जो जुड़ जाए युवाड़ी के संग इस पल, उसकी हर शाम यादगार होती है।
0: हेलो हेलो, आदाब, नमस्कार, खुशामदीद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में, और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद तौहीद।
1: दोस्तों, और तौहीद के साथ मौजूद हूं मैं, आपके रेडियो पार्टनर मदिया रहमान। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और इस गर्मी में अपना ध्यान रख रहे होंगे।
0: दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे में होता है हमारा स्पेशल सेगमेंट दिल से दिल तक, जिसमें हम बात करते हैं एक थीम पर और सुनवाते हैं आपको उसी थीम पर खूबसूरत गीत,
1: जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब। तो आज हम बात करेंगे ख्वाबों की और आपको गीत भी सुनाएंगे ख्वाबों के ही।
0: लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं आपसे आज का भूजो तो जाने का सवाल, और हमारा आज का सवाल है,
1: भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है?
0: और इसका सही जवाब आपको देना होगा हमारे FB पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर। तो आप दीजिए हमारे सवाल का सही जवाब, तब तक बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और शुरू करते हैं सेगमेंट दिल से दिल तक। और दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक छोटा सा आसमान होता है
1: जहाँ कुछ ख्वाब परिंदों की तरह उड़ना चाहते हैं,
0: न डर होता है न रोकने वाली दीवारें,
1: बस हवाओं से दोस्ती और मंजिलों से मोहब्बत होती है।
0: कभी कभी जिंदगी हमें इतना बांध लेती है
1: कि हम उड़ना ही भूल जाते हैं।
0: लेकिन फिर एक पल आता है जब दिल धीरे से कहता है,
1: खुल के जीले, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आइए सुनते हैं ये पहला गीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
6: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
7: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
6: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
8: और डोज में क्या है?
7: डोज में है मजा।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
9: तो बच्चों, आज की पाठशाला में हम बहुत एक खास विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि वो सबसे पवित्र वस्तु घर में आखिर क्या होती है?
8: सर मैं बताऊं?
9: बताओ बताओ।
8: सर वो है मोबाइल।
9: चिंकी तुम पागल हो गया,

0: और वो कैसे?
1: सर, क्योंकि मोबाइल ना बाथरूम, हॉस्पिटल और शमशान से आने के बाद भी बिना धोए हुए घर, रसोई और मंदिर सब जगह जा सकता है।
2: जी हाँ, मजा आ गया। वेलकम बैक दोस्तों।
1: दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर।
2: जो हम सबकी लाइफ से जुड़ा है, और वो टॉपिक है कंफर्ट जोन में रहना सेफ होता है या डेंजरस।
1: वैसे सच कहूं तो ही तो कंफर्ट जोन सुनते ही मेरे दिल में आता है बस रजाई, लेकिन सर्दियों में।
2: और मुझे मेरा फोन और बेड। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान सिर्फ कंफर्ट में ही रह जाता है।
1: बिल्कुल, कंफर्ट जोन शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल कंफर्टिंग, बढ़िया, लेकिन धीरे धीरे वही आदमी को रोकने भी लगता है।
2: जैसे कोई इंसान सिंगिंग का शौक रखता हो, लेकिन डर की वजह से कभी स्टेज पर नहीं आए।
1: या फिर कोई स्टूडेंट जो नए शहर और नई अपॉर्चुनिटीज इस वजह से खो देता है क्योंकि उसे अपना कंफर्टिंग शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना हो।
2: और फनी बात पता है मदिया,
1: क्या?
2: हम अक्सर सेफ रहने के चक्कर में अपनी ग्रोथ को ही रिस्क पर डाल देते हैं।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि कंफर्ट जोन डेंजरस तब बन जाता है जब आदमी की वो आदत बन जाए।
2: लेकिन एक बात और भी है मदिया, हर वक्त स्ट्रगल करना भी जरूरी नहीं होता।
1: बिल्कुल, कभी कभी कंफर्ट जोन मेंटल पीस भी देता है, और हर इंसान को थोड़ा सुकून, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है यार।
2: बिल्कुल सही कहा। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि कंफर्ट जोन गलत है या सही, असली सवाल ये है कि हम उस कंफर्ट जोन के कंट्रोल में हैं या वो हमारे।
1: बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अगर कंफर्ट जोन आपको रिचार्ज कर रहा है, आपको कभी कभी सुकून दे रहा है, तो वो हेल्दी है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो आपको नए एक्सपीरियंसेस से रोक रहा है, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप एकदम पीछे ले लें।
2: बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी को सबसे खूबसूरत चीज हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। नए लोग, नए सपने, और कभी कभी न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ।
1: तो दोस्तों, आज बस इतना सोचिए कि क्या आप सेफ रह रहे हैं या फिर आप डरे हुए हैं।
2: और इसी ख्याल के साथ कहते हैं कुछ खास है आज को यहीं समाप्त, और बढ़ते हैं आगे अपने सेगमेंट दिल से दिल तक के अगले गीत की ओर। और दोस्तों, दिल के अंदर कुछ ख्वाहिशें हमेशा अधूरी सी रहती हैं।
1: ना वो पूरी तरह लफ्जों में उतरती है, ना ही वो कभी पूरी तरह मर पाती हैं।
2: कुछ ख्वाहिशें सिर्फ एक मुस्कुराहट मांगती हैं, और कुछ पूरी जिंदगी।
1: कभी नाम, कभी मोहब्बत, तो कभी बस किसी का साथ।
2: और अजीब बात यह है, इंसान जीता भी उन्हीं अधूरी ख्वाहिशों के सहारे है।
1: तो चलिए दोस्तों, दिल की उन्हीं खामोश ख्वाहिशों को महसूस कराते हैं आपको इस गीत के साथ।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोट-पोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
4: तो बच्चों, आज की पाठशाला में हम बहुत एक खास विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि वो सबसे पवित्र वस्तु घर में आखिर क्या होती है?
2: सर मैं बताऊं?
4: बताओ बताओ।
2: सर वो है मोबाइल।
4: चिंकी तुम पागल हो गया, और वो कैसे?
2: सर क्योंकि मोबाइल ना बाथरूम, हॉस्पिटल और शमशान से आने के बाद भी बिना धोए हुए घर, रसोई और मंदिर सब जगह जा सकता है।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
4: दोस्तों बैठते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं रहस्य सीरीज सीजन 2 का एपिसोड 1, खामोश घाटी।
5: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है खामोश घाटी। इंसान को हमेशा लगता है कि उसने प्रकृति को जीत लिया है। इंसानों ने पहाड़ों का सीना चीर करके सड़कें बना दी, नदियों के ऊपर से गुजरने के लिए ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर लिए, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो इंसानों को भी ये याद दिलाती हैं कि इस धरती पर असली हुकूमत किसकी है। ये कहानी है उस खामोशी की जो मौत से भी ज्यादा डरावनी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रहस्य सीरीज के हर एपिसोड में आप पूरी तरह इस कहानी से ही जुड़े रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, और ये है रहस्य सीरीज की पहली कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 1।

0: 5 अक्टूबर साल 1987, वो कोल्ड वॉर का इरा था। यूएस और सोवियत यूनियन अपनी पीक पर थे, दोनों में वेपन इंक्रीज करने के लिए एक रेस लगी हुई थी।
1: उसी दौरान यूएस के कोलोराडो स्टेट में 5 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड माउंटेन क्लाइंबर्स कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। 5 अक्टूबर के दिन सुबह 8 बजे के करीब वो डेनवर सिटी से बीवर क्रीक के लिए टैक्सीज बुक करते हैं और 11:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जिस लोकेशन पर वो खड़े थे उसका नाम था बीवर क्रीक और वहां से उनका ट्रैक शुरू होना था साइलेंट वैली के लिए। ये ट्रैक 6 घंटे का था। अब साइलेंट वैली की खास बात यह थी कि वहां कोई ज्यादा नहीं था, क्योंकि एक तो ये रास्ता बहुत ही भारी था, इसमें कई पहाड़ पर सीधी चढ़ाई थी। दूसरी बात जो कि इस साइलेंट वैली को और खास बनाती है वो ये है कि इस प्लेस को लेकर उस समय काफी रूमर्स थे कि वो वैली बहुत खतरनाक है, जो वहां जिंदा गया कभी बचकर वापस नहीं आया। लेकिन इस बात से उस टीम के लीडर एडम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एडम एक ऐसा इंसान था जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों को फतह कर रखा था। उनकी टीम का एक ही गोल था, एडवेंचर और रूमर्स को गलत साबित करना। एडम की टीम के पास जीपीएस ट्रैकर था, कंपास था और भी मॉडर्न डिवाइसेस थे और महीनों तक वहां पर सरवाइव करने के लिए राशन था। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड और एडम की टीम वेल प्रिपेयर्ड थी। समय दिन के 1:30 बजे, लोकेशन बीवर क्रीक। एडम की टीम वहीं रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और थोड़ी देर में वो लंच के बाद ट्रैक शुरू करने के लिए तैयार थे। सफर शुरू होता है और एडम की टीम अपने लगेज गियर्स को कैरी करती है और एक बेहद ही खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है। अब इस सफर में आगे चलकर क्या होता है, क्या एडम और उनकी टीम सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर या कह सकते हैं मंजिल पर पहुंच पाएगी, क्या होगा उनके साथ, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम जुबानी को। हम आपसे मिलेंगे कल यानी रहस्य सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रहस्य सीरीज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1, जो कि है खामोश घाटी। और अब आप सुनने जा रहे हैं लव स्टोरी परिणीता का एपिसोड नंबर 2। तो आइए सुनते हैं हमारी ये लव स्टोरी।
1: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी शैली, और आज है परिणीता कहानी का एपिसोड 2। पिछले भाग में आपने सुना कैसे ललिता और शेखर बचपन से साथ बड़े हुए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, लेकिन शेखर अपने ही दिल को समझ नहीं पा रहा था। और जब उसने ललिता को किसी और के साथ हंसते हुए देखा, तो पहली बार उसे खोने का डर महसूस हुआ। अब ललिता पहले से ज्यादा समझदार और शांत हो चुकी थी। गुरुचरण बाबू की आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, कर्ज बढ़ रहा था और समाज के लोग भी अब ताने देने लगे थे। लेकिन इन सब के बीच भी ललिता ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा मुस्कुराकर हर परेशानी छुपा लिया करती थी। उधर शेखर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी, बड़ा घर, आराम, दौलत, लेकिन फिर भी उसके दिल को सुकून सिर्फ ललिता के साथ ही मिलता था। वो हर छोटी बात में ललिता को ढूंढता। अगर एक दिन वो सामने ना दिखे तो पूरा दिन बेचैनी में गुजरता, लेकिन शायद वो अभी भी इस एहसास को प्यार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच उनकी जिंदगी में आए किरीन बाबू, एक शांत, समझदार और बहुत अच्छे इंसान, जो गुरुचरण बाबू की आर्थिक मदद करने लगे। ग्रीन बाबू का व्यवहार बहुत अच्छा था, वो ललिता और उसके परिवार की इज्जत करते थे। धीरे धीरे घर में उनका आना जाना बढ़ने लगा, लेकिन शेखर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी वो ग्रीन बाबू को ललिता से बात करते देखता, उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगती। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, कभी बिना वजह ललिता को डांट देता तो कभी उससे बात करना बंद कर देता। ललिता समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर शेखर को हुआ क्या है। एक शाम घर की छत पर हल्की हवा चल रही थी, ललिता चुपचाप खड़ी आसमान देख रही थी। तभी शेखर वहां आया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही, फिर अचानक मजाक मजाक में शेखर ने फूलों की एक माला उठाई और ललिता के गले में डाल दी और मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम कहीं नहीं जा सकती। शायद शेखर के लिए ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन ललिता के लिए नहीं। उस पल उसका दिल धड़क उठा। भारतीय परंपरा में माला पहनाना विवाह का प्रतीक माना जाता है, और ललिता ने उसी पल मन ही मन खुद को शेखर की पत्नी मान लिया। उस रात ललिता देर तक सो नहीं पाई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक डर भी था। क्या शेखर सच में उससे प्यार करता था, या ये सब सिर्फ एक खेल था? दूसरी तरफ शेखर खुद भी बेचैन था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो ललिता को लेकर इतना पोजेसिव क्यों हो रहा है। उसके दिल में प्यार था, लेकिन जुबान अब भी खामोश थी। क्या शेखर समझ पाएगा कि उसने अनजाने में ललिता को कितना बड़ा सपना दे दिया है? क्या ये रिश्ता प्यार में बदलेगा या गलतफहमियां दोनों को दूर कर देंगी? जानने के लिए सुनिए परिणीता का भाग 3।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लव स्टोरी परिणीता का एपिसोड 2। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। मध्या, कुछ लोग जिंदगी में हकीकत बनकर नहीं आते, वो एक ख्वाब की तरह आते हैं, खूबसूरत, हल्का सा धुंधला, लेकिन दिल के बहुत करीब।
0: बिल्कुल तौहीद, जैसे उनकी बातें गीत बन जाती हैं, उनकी मोहब्बत आदत और उनका होना एक सुकून सा लगता है।
2: लेकिन फिर डर लगता है कहीं आँख खुल गई तो एक ख्वाब टूट ना जाए।
0: बिल्कुल, तो इसी हसीन एहसास के साथ सुनिए अब हमारा ये अगला गीत।

0: तेरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखरे पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
3: हाँ, हो जाए, हो जाए, हो जाए।
1: जी, मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
4: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे।
3: हैं।

दोस्तों, ख्वाब देखना भी एक अजीब आदत है। आंखें बंद होती हैं लेकिन दिल एक नई दुनिया बसा लेता है। कभी उन ख्वाबों में मोहब्बत होती है, कभी धोखा, कभी किसी की मुस्कुराहट रात भर साथ रहती है, और कभी एक याद नींद चुरा लेती है। मगर सच तो यह है कि इंसान हकीकत से पहले ख्वाब ही जीता है, और आज का ये गाना भी कुछ ऐसा ही हसीन ख्वाब की कहानी है। तो आइए सुनते हैं।

तुम्हारी आज के कार्यक्रम में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है और ये खूबसूरत शाम ऐसे ही ढलती जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दोस्तों को हमारे सेगमेंट दिल से दिल तक के ये खूबसूरत गाने पसंद आ रहे होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है मदिया कि जो अगला गाना हम प्ले करने वाले हैं ये भी हमारे सभी दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे सवाल का सही जवाब जानने का। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था बुझो तो जाने के अंतर्गत एक सवाल। हमारा सवाल था, भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? और इसका सही जवाब है फ्लाइंग सिख। और इसका सही जवाब देने वाले हैं,
1: तो हमारे सही जवाब देने वालों के नाम हैं प्रवीण चौहान, अनिल विनोचा, मोहम्मद जावेद, विनय मोहन, सज्जन जांगरा, नीतीश कुमार देवांगन, मुकेश कश्यप, धीरज भाई रबारी, मोहम्मद सईद अब्बासी, मोहम्मद जायद अली, जगदीश धाकर, जाकिर मंसूरी, अरविंद कुमार, राधेश्याम पांडे, शाहजी भोड़के, राम कुमार रेवार, सुरेश खुराना, शमसुल कमर राही, राजकुमार दूधी, विजय सुरलकर, हीरामणि वर्मा, नंद कुमार ठाकुर और बबलेश पंवार।
0: तो दोस्तों ये तो थे हमारे वो सभी साथी जिन्होंने दिया हमारे सवाल का सही जवाब। और आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर मैसेज कर कर। और आप हमें लेटर भी लिख सकते हैं। लेटर भेजने के लिए नोट करें हमारा पता, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467-63। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करना ना भूलें, जो कि है आकाशवाणी नजीबाबाद। तो इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति अपने दोस्त मोहम्मद तौहीद और मदिहा रहमान को। नमस्कार। और दोस्तों चलते चलते हम आपको छोड़ चलते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरूआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा

0: प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू की
0: राम राम।
1: तो भाई गंगाराम।
0: हाँ भैया झुमरू।
1: अरे कैसे हाल चाल है भाई, सब राज्य खुशी?
0: भाई देखो वैसे तो ठीक है,
1: हाँ,
0: पर गर्मी ने भैया चाले पा रखे हैं।
1: अब भाई देखो गर्मी तो बहुत हो रही है।
0: हाँ।
1: और भाई कल से जो हो नौतपे शुरू हो गए हैं भैया। और भैया नौतपा मतलब पता ही है।
0: हाँ।
1: कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं भैया पृथ्वी पर।
0: भाई बिल्कुल, वैसे तो एक बात है भैया,
1: हाँ,
0: हम किसान भाइयों को गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, यानी कि मौसम की मार से लड़ने की आदत सी पड़ी रहे।
1: देखो भैया मौसम तो कोई सा भी हो,
0: हाँ
1: भैया खेती बाड़ी काम तो करना ही पड़ा। हाँ
0: बिल्कुल।
1: अब देखो भैया गर्मी का मौसम आज
0: ठीक,
1: कितनी भीषण गर्मी हो रही है। और आज हम अपने बहन भाइयों के लिए भैया एक सजीव फोन इन कार्यक्रम लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल। और भाई देखो यो इस साल का पहला सजीव कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल भाई देखो यो है हेलो बासमती, और जो हमारे किसान भाई भैया बासमती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भैया हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित हैं, वे जानकारी ले सकते हैं। भैया आप जल्दी से नंबर बता दो।
0: भैया देखो बासमती धान से संबंधित कोई भी अगर आपकी समस्या है तो उस पर फोन करने का नंबर मैं बताओ दे रहा हूँ।
1: हाँ नंबर बताओ।
0: 9457-07-82-88। और भैया एक नंबर और है, पहले नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगाओ 0-13-41। और भैया फोन नंबर है 230-105।
1: बिल्कुल।
0: तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप सीधे फोन करके, जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भैया आप अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं।
1: तो भाई किसान भाई जो फोन करना शुरू करेंगे। और भैया अब आओ शुरू करते हैं भैया आज की जो हमारी
0: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: अरे मास्टर जी।
0: हाँ भैया।
2: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
0: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
2: बिल्कुल। और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
2: हाँ, देश किसान, किसान का मान, बासमती धान।
3: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: किसान

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
1: और भैया मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम। तो भैया देखो, जैसे हमने पहले बताया था कि आपकी अगर कोई बासमती धान से संबंधित समस्या है तो भैया हमें सीधे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर का हो तो मैं एक बार बता दूं।
0: भैया नंबर आप जल्दी से बता दो बहन भाई।
1: तो भैया हमारा फोन नंबर है 94-57-07-82-88 और भैया एक लैंडलाइन नंबर भी है। पहले नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगाओ, वो है

0: 41 और फोन नंबर है 230-105।
1: और मैं देखो आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जो कि वैज्ञानिक है बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। और भाई डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आ गए हैं, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: ठीक है डॉक्टर साहब,
2: किसान भाइयों को नमस्कार।
1: तो देखिए डॉक्टर साहब, हमारी ये पाठशाला शुरू हो चुकी है और जब तक हमारे बहन भाई के फोन आने शुरू होते हैं, तो देखिए बासमती का समय शुरू हो चुका है और हमारे किसान भाई नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार जो हमारी अच्छी प्रजातियां हैं जिन्हें हमारे किसान भाई लगा सकते हैं उनके नाम हो जाए डॉक्टर साहब।
0: लेकिन इससे पहले एक फोन आ रहा है, वो सुन लेते हैं हमारे कौन भाई हैं।
1: हेलो
0: हेलो बासमती,
1: हेलो
0: हेलो, शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब आपसे हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जिनका इस समय हम चयन कर सकते हैं।
2: देखिए इस समय जो किसान भाइयों के लिए बासमती की जो प्रजाति हैं, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1885, ये बासमती की जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है वो हैं। दूसरा है पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 1882, पूसा बासमती 1886।
0: तो डॉक्टर साहब इस बीच एक फोन आ रहा है, देखते हैं कौन भैया है।
1: हेलो
0: हेलो
3: हेलो
0: जी, हेलो बासमती,
1: हेलो बासमती,
3: हेलो बासमती, मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि 51 बासमती के लिए पौध कब तैयार करें।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, आप सुनिए बात कीजिए।
2: पौध का डालने का समय आप अब तैयारी कर लें, 25 मई से और 5 जून तक आप इसको डाल देंगे तो इस अच्छा रहेगा आपके लिए।
3: अच्छा जी।
2: और बीज के 1 किलो बीज के लिए 25 स्क्वायर मीटर एरिया का चुनाव करें, बीज कम एरिया में ना डालें जिससे आपकी पौध कमजोर बने, ये विशेष ध्यान देना है आपको।
3: ठीक है
0: बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जमुर भैया कि कितनी एरिया में कितना बीज लिया जाए।
1: जी बिल्कुल, देखिए तो उसी के हिसाब से हमें अपनी नर्सरी तैयार करनी है, पौधशाला डालनी है। और जो किसान भाई हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और बासमती धान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ, तो भाई हमारे फोन नंबर है 013-41-230-105 और मोबाइल नंबर है 9457-07-88-88।
0: बिल्कुल, तो इनमें से भैया किसी एक नंबर पर फोन करके आप सीधे बात कर सकते हैं। आज भैया आपसे ये अनुरोध है कि केवल बासमती धान से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछें
1: जी।
0: और भाई बासमती धान से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के बीच में है डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी। तो भाई देखो इससे पहले के कोई फोन आवे तो कुछ हम भी पूछ लें।
1: बिल्कुल भैया आप पूछिए गंगाराम।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि उचित समय हमारे किसान भाइयों का क्या रहेगा नर्सरी के लिए।
2: देखिए जो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है जैसे पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1
1: जी,
2: पूसा बासमती 1885, उनका समय 25 मई से।
0: एक मिनट, एक फोन आ रहा है, पहले देख लेते हैं कौन भैया है।
1: हेलो
3: हेलो बासमती,
1: हाँ जी हेलो बासमती,
0: हेलो बासमती,
3: हेलो कुमार,
0: थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है।
3: हेलो कुमार गंगाराम और सुरेंद्र सिंह झुमरू को मेरी राम राम।
1: राम राम जी, राम राम, बताइए क्या समस्या है आपकी।
3: समस्या ये है जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं।
1: हाँ जी बिल्कुल।
3: हाँ जी, मैं ग्राम गादोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
1: जी मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो बासमती कार्यक्रम में
3: जी। और मेरी नमस्कार डॉक्टर साहब को भी।
2: नमस्कार सर।
3: और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए हमारे क्षेत्र में कौन सा जो है उत्तराखंड में पड़ता है, हमारा जिला हरिद्वार में
2: जी,
3: तो कौन सी वैरायटी लगाए हम बासमती की जो अच्छी हो, तो ऐसी कोई वैरायटी बताएं हमें। हम जो है ज्यादा तुड़ल बासमती लगाते हैं।
2: हाँ देखिए तुड़ल बासमती में आपके क्षेत्र के लिए पूसा बासमती 1 जिसको तुड़ल बोलते हैं, और दूसरी इसमें एक पूसा बासमती 1637 भी है जिसमें नेक ब्लास्ट नहीं आता है, गर्दन तोड़।
3: अच्छा जी।
2: और जहाँ जिन खेतों में पानी की समस्या, जैसे पानी ऊंचे पर है, पानी का थोड़ा सा कम रुकता है जिन खेतों में, उनमें 18 पूसा बासमती 18 वैसी नई वैरायटी आ गई, उसका भी आप लगा कर देख सकते हैं।
3: अच्छा जी।
0: तो मदन गिरी जी को शायद ही समस्या का निदान मिल गया होगा। 1682 बताया डॉक्टर साहब ने।

0: और हरिद्वार क्षेत्र में हमारे किसान भाई इसको लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और तुरल बासमती वैसे झुमरू भैया हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं,
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि उसका जो चावल है वो बड़ा स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया रहता है।
0: और
1: इसमें एक फोन और आ रहा भैया,
0: जी देखते हैं कौन हमारे भाई हैं। हेलो बासमती।
2: हाँ जी, राम राम जी।
0: राम राम जी, अपना नाम बता
1: राम।
0: दीजिए।
2: हाँ जी, मैं ग्राम पोस्ट राहुल नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह बोल रहा था जी।
0: जी आचार्य जी, बताइए क्या समस्या है आपकी बासमती के बारे में।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है साहब।
3: नमस्कार साहब।
2: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता कि हमने लगभग 1 एकड़ में लगा मतलब धान
3: जी,
2: लगभग 5 बीघे में धान की खेती करनी थी।
3: हाँ जी,
2: तो उसके लिए कितनी वो बीज डाल दे और वो सब तैयारी करने की वो क्या क्या विधियां, वैसे तो जो करते हैं वो विधि तो हम लोग जानेंगे जैसे करते हैं गाँव में।
3: हाँ जी,
2: क्या कोई और नई विधि से कर सकते हैं जो अच्छी नस्ल तैयार हो जाए।
3: देखिए, आप यदि अच्छी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 1 किलो बीज 1 बीघे के हिसाब से आप 1 एकड़ के लिए अधिकतम 6 किलो बीज की आवश्यकता रहेगी आपको
2: जी।
3: और 1 किलो बीज के लिए आपको 25 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए
2: जी,
3: 150 वर्ग मीटर एरिया आपको चाहिए अपने 6 किलो बीज के लिए
2: जी।
3: और इसमें आप ऐसा करें कि 1.5 मीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबी क्यारी बनाएंगे तो उसमें आपका एक तो गर्मी का वो समय मौसम में पानी भरकर नहीं रहेगा, जिससे नर्सरी खराब नहीं होगी आपकी
2: जी।
3: इस तरह से आप करेंगे तैयार तो आपकी कम समय में अच्छी नर्सरी तैयार हो जाएगी। और आपका कोई सवाल हो तो आप बताएं, इसमें कोई समस्या आपके लिए।
2: बस ये है कि अब लगाएंगे तो जुलाई के शुरू में।
3: कौन सी वैरायटी लगाएंगे आप?
2: 11-21 लगा दें
3: तो 11-21 लगा सकते हैं आप, जून के लास्ट वीक से लेकर के जुलाई के सेकंड वीक तक
2: जी। जी,
3: तो पौध उसकी डाल दें फर्स्ट जून के फर्स्ट वीक में आप, पहले सप्ताह में
2: जी।
3: ठीक है सर
2: जी, ठीक है, नमस्ते।
0: तो बिल्कुल इस तरीके से हमारे किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हमें रोपाई करनी है तो उसी हिसाब से हमें अपनी नर्सरी डालनी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर हम बेमौसम यानी कि बेसमय के आधार पर नर्सरी लगा लेते हैं और फिर हमारी पौध ज़्यादा उम्र की हो जाती है तो उसका भी असर पड़ता है उत्पादन पर।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब देखिए, एक तो ये है कि कुछ विशेष वैरायटी होंगी जिनकी पौध अब तैयार हमें नर्सरी तैयार करनी है और कुछ ऐसी होंगी जिनकी अभी हमें कुछ समय लगेगा, जैसे भी आपने बताई कि जो है 15 जुलाई तक हम कर सकते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जिनको इस समय हम लगा सकते हैं और वे कौन सी किस्में हैं जिनको बाद में लगाया जा सकता है।
3: इस समय सबसे पहले किसान भाई यदि तुड़ल में पूसा बासमती 6 जिसको 1401 बोलते हैं, सबसे पहले उसकी लगाएं, उसके बाद पूसा बासमती 1, फिर पूसा बासमती 11-21, 17-18 और 18-85 की नर्सरी डालें
1: जी।
3: इसी रेशो से उन्हें जून के फर्स्ट वीक तक ये वैरायटियों की डाल देंगे। फर्स्ट 10 जून तक ये डाल सकते हैं इन प्रजातियों की
1: जी।
3: इसके बाद में जून के सेकंड सप्ताह के बाद 15 जून के बाद में जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी हैं, जैसे पूसा बासमती 15-09, पूसा बासमती 16-92, 18-47 इन प्रजातियों की यदि नर्सरी डालेंगे तो इनमें बीमारियों से भी उन्हें बकानी जैसी जो बीमारी है उसका भी बचाव होगा और चावल की जो क्वालिटी आएगी धान की जो हमारी वो अच्छी आएगी, उत्पादन भी अच्छा होगा उनका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बात का ध्यान रखना है। और गंगाराम भैया, हमारे किसान भाई लगातार हमें फोन कर सके तो एक बार आप नंबर फिर बता दो भैया।
1: बिल्कुल, देखिए भैया, आज हमारा कार्यक्रम है हेलो बासमती
0: जी,
1: यानी कि बासमती धान से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप सीधे फोन कर सकते हैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। आज बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी मौजूद हैं और आप जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है वहाँ पे, तो भैया फ़ोन नंबर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो आप। हमारा फ़ोन नंबर है 9457-07-8288। और भैया एक लैंडलाइन नंबर भी है, नजीबाबाद का पहला एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 01341। और भैया फ़ोन नंबर है 230-105।
0: तो भाई आप जल्दी कीजिए और जानकारी आप ले सकते हैं। और गंगाराम भाई, देखो आपको याद होगा पहले भैया जो हमारा लाल धान होता था जिसकी बालियां बाहर नहीं निकलती थी उसकी हम सीधी बुआई करते थे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: है ना भैया, तो इसी तरीके से जो बासमती धान है हमारा इसके भी हम सीधी बुआई करते हैं, कुछ हमारे ऐसी प्रजातियां हैं, तो इस बारे में भी बातचीत करना बहुत जरूरी रहेगा।
1: बिल्कुल, देखो जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी क्या कोई तरकीब है या कौन सी ऐसी प्रजाति है इसको हम सीधे भी बो सकते
0: सीधे बो सकते हैं?
3: देखिए, वैसे हम बोने को बासमती की सारी प्रजातियों को सीधे बिजाई कर सकते हैं
0: जी।
1: जी।

0: समस्या एक आती थी किसान भाइयों को कि उसमें खरपतवार नियंत्रण करने में परेशानी आ रही थी।
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए दो प्रजातियां पूसा ने नोटिफाइड हुई हैं, पूसा की, पूसा बासमती जो शॉर्ट ड्यूरेशन में 1500 के समय में जो पकने वाली है, पूसा बासमती 1985 है
1: जी।
0: और 1121 के वर्जन में है पूसा बासमती 1979
1: जी।
0: ये दो प्रजाति हैं इनमें।
1: एक फोन आ गया और बाद में बात करते हैं। हेलो हेलो,
2: लगता भैया संपर्क नहीं हो पा रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: जी डॉक्टर साहब।
0: तो ये दो प्रजाति हैं, इनका यदि हम सीधी बिजाई कर देते हैं तो इनमें एक इमेजत हाइपर दवाई का स्प्रे करने से खरपतवार हमारे खत्म हो जाते हैं जब 2-3 पत्तियों के आते हैं और धान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
1: जी बिल्कुल।
0: वैसे काफी फार्मर्स सीधी बिजाई हमारी पूसा बासमती 1 का, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 1509, एक तो उत्पादन भी अच्छा आ रहा है और बकानी जैसी जो बीमारी है जिससे हमारे किसान बहुत परेशान हैं, इसमें काफी दवाइयों का खर्चा हो रहा है और फिर भी वो बीमारी रुक नहीं पा रही है। जिन किसानों ने सीधी बिजाई करके इन प्रजातियों को बोया है उनमें ये समस्या कम आई है और लगभग हमारी 35-40% पानी की बचत भी हो रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो और भी प्रजातियों को कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें बुवाई के बाद में प्री इमरजेंस में पेंडा मेथिलिन का एक स्प्रे कर देते हैं तो खरपतवार इनमें भी कम उगते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए एक बात और हम इसमें करना चाह रहे थे। वैसे देखिए हमारे जो किसान भाई हैं
2: जी,
1: उन्होंने बीज का इंतजाम कर लिया होगा। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे रह भी सकते हैं अभी
0: जी,
1: जिन्हें बीज की आवश्यकता है, तो क्या अभी भी कुछ संभावना है आपके बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान या अन्य जगहों पर जहाँ से, या कोई विश्वसनीय ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ से बीज का वो चयन कर सकते हैं,
2: अच्छा बीज ला सकते हैं जहाँ से?
1: जी
0: देखिए, हमारे इस संस्थान पर जो इस समय बीज बचा हुआ है
1: जी,
0: वो पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 6 जो 1401 है उसका बीज अब किसान भाइयों को मिल सकता है
1: जी।
0: और प्रजातियों का बीज हमारे यहाँ पर खत्म हो गया है क्योंकि हमारे पंजाब हरियाणा के किसान पहले दिन ही आकर के ले जाते हैं और हम भी यही कोशिश करते हैं किसान भाइयों से कि वो विश्वसनीय जगह जिन कंपनियों के सर्टिफाइड सीड्स या फाउंडेशन सीड हों और जो अधिकतर कोई कंपनियां डीएनए करा के, क्योंकि बासमती में प्रजाति के मिक्सिंग में किसानों को ज़्यादा परेशानी आती है, तो जिनका डीएनए भी हो विश्वसनीय जगह से आप खरीद सकते हैं और पूसा से भी खरीद सकते हैं IERI से यदि वहाँ पर उनके संपर्क में हैं। बाकी कोई समस्या आती है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई जो है बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ यानी कि BEDF से उत्तम बीज ला सकते हैं और जो दो डॉक्टर साहब ने प्रजातियाँ बताई हैं इसका बीज अभी भी वहाँ पर उपलब्ध है, मौजूद है, तो ये बीज हम ले सकते हैं अगर इसको हम लेना की सोच रहे हैं। और इसके अलावा डॉक्टर साहब देखिए, अभी हम सीधी बुवाई की बात कर रहे थे और आपने उसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी दी है, तो जो हमारे किसान भाई सीधी बुवाई करना चाह रहे हैं सोच रहे हैं तो वो कब तक इसकी बुवाई कर सकते हैं, क्या समय है इसका सही डॉक्टर साहब?
0: जैसे पूसा बासमती 1985 है उसकी बुजाई 20 जून तक कर सकते हैं। दूसरा जो पूसा बासमती 1979 है उसकी बुजाई 15 जून तक करें क्योंकि बारिश होने पर यदि वो जब तक जर्मिनेशन नहीं होके आता है और निकल नहीं पाती है तो फिर उसमें समस्याएं आती हैं। तो इन प्रजातियों की जो हमारी अधिक समय लेने वाली प्रजाति है जैसे पूसा बासमती 1979 उसकी बिजाई 15 जून तक करें
2: जी।
0: और आपकी पूसा बासमती 1985 है इसकी 20 जून तक।
2: अच्छा, तो 15 जून और 20 जून तक हमारे किसान भाई जो सीधी बुवाई करना चाह रहे हैं वो सीधी बुवाई कर सकते हैं और सीधी बुवाई का हम फायदा उठा सकते हैं, कम पानी में हम बासमती धान उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन इसे ले सकते हैं। तो मैं देखो गंगाराम लगातार भाइयों के फोन आ रहे हैं और बातचीत हो रही है, लेकिन अभी कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: ठीक है भैया।
2: किसान भाई इस समय सुन रहे हैं
1: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ
2: द्वारा प्रायोजित बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
3: अरे मास्टर जी।
4: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
4: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय

0: सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
1: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
1: हाँ, देश किसान, किसान का मान बासमती धान।
2: किसान भाई, करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी। किसान।

0: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमधान रेडियो कृषि पाठशाला में एक बार फिर से। और आज का जो हमारा अंक है वो है सजीव कार्यक्रम हेलो बासमती का।
2: बिल्कुल, तो भाई देखिए, आज आपकी बासमती धान से संबंधित समस्याओं का निदान करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं भैया बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी। तो भाई आपकी कोई अगर बासमती धान से संबंधित समस्या हो तो भैया आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। कहो तो भैया फ़ोन नंबर एक बार बता दूँ।
1: भाई नंबर आप एक बार फिर से बता दीजिए।
2: भैया हमारा फ़ोन नंबर है 9457072888 और भैया एक लैंडलाइन नंबर भी है 01341 हमारा स्टडी कोड है और 230105 फ़ोन नंबर है। इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप फ़ोन करके सीधे भी हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर नेत्रपाल जी आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं।
1: और देखिए अब से लेकर और लगभग 6:42 तक आप फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और हम अपने सुनने वालों को ये भी बता देते हैं कि जो हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है हेलो बासमती, ये आप अब से लेकर यानी कि भैया इस माह से लेकर और अक्टूबर तक ये हर माह के अंतिम मंगलवार को आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो हर माह के अंतिम मंगलवार को आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं और जो हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान बासमती धान के फसल में करवा सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर साहब, अब हम इस समय एक प्रश्न आपसे ये और करना चाह रहे हैं कि जो हम जब अपनी पौधशाला की तैयारी करते हैं तो उस समय क्या क्या खास बातें हैं जिनका ध्यान रखें।
1: बिल्कुल,
3: सबसे पहले हमें पौध जो तैयार करनी है
2: जी,
3: बीज को अच्छे से उपचारित करना है।
2: ठीक जी,
3: बीज को उपचारित करने का सबसे आसान तरीका है कि हमें 10 किलो बीज के लिए 10 लीटर पानी में 160 ग्राम सभी किसानों के घर में सादा नमक मिल जाता है, उससे उसको करेंगे, उससे हल्के दाने निकाल लेंगे
2: जी।
3: और फिर उसको उपचारित करने के लिए यदि ट्राइकोडर्मा से जैविक में खेती करने वाले, फिर उसको दो बार साफ पानी से धुलने के बाद में जो हमारे पास में फंजीसाइड के रूप में या तो कार्बन डाइजिम या फिर जैविक में हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं।
2: अच्छा।
3: 2 ग्राम/kg के हिसाब से हम कार्बन डाइजिम का प्रयोग करते हैं प्रति किलो बीज के हिसाब से, 5 ग्राम हम ट्राइकोडर्मा का।
1: डॉक्टर साहब हमारे भाई लाइन पर देखते हैं कौन है।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हेलो।
0: लगता है कि बातचीत नहीं हो पा रही है जी। डॉक्टर साहब, आप जो बीज शोधन है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे।
1: जी तो हम 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से उस बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोते हैं, फिर 24 घंटे के लिए उसको दाब लगाते हैं जिससे हल्का अंकुरण आ जाए। हम
0: जी
1: किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस समय गर्मी के समय में शाम के समय ही पौध को भिगोएं और शाम के समय ही दाब लगाने के बाद 24 घंटे के जो अंतराल में वो जो नर्सरी एरिया है उसमें
0: अच्छा
1: शाम के समय ही डालें
0: जी
1: पानी गर्म में। कोई भी किसान भाई नर्सरी का बीज नर्सरी में बीज नहीं डाले क्योंकि हल्का अंकुरण होता है, इतना तेज धूप के कारण अंकुरण मर जाता है।
0: जी अच्छा।
1: और
0: कुल मिला के
1: क्यारी, छोटी क्यारी बनाकर डालें जिससे पानी उसमें जल्दी से लगा देंगे। हल्का पानी लगाएंगे तो पानी गर्म नहीं होगा, सुबह शाम दोनों समय पानी लगा करके नमी बनाए रखना जरूरी है।
0: अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कब तक का समय और आगे ठीक रहेगा, जैसे इस समय थोड़ा सा हम अगर आगे
1: देखिए,
0: करना चाहें तो।
1: प्रजातियों के हिसाब से हमें समय का भी ध्यान रखना है।
0: जी
1: जो ज़्यादा समय लेने वाली प्रजातियां, जैसे अभी हमने पहले आपको अवगत कराया, जैसे पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 1886, 1121, इनको हमें अभी 10 जून तक डालना जरूरी है।
0: जी
1: 10 से ज़्यादा हम और थोड़ा खींचेंगे तो 15 जून तक डाल सकते हैं,
0: अच्छा
1: नहीं तो उस समय हमारी अगली फसल का प्लानिंग बेकार हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल
1: और कम समय वाली प्रजाति हैं उनको हम 15 जून से 30 जून तक भी डाल सकते हैं, 15 09 को हम 30 जून तक भी डाल देते हैं।
0: अच्छा। तो कुल मिलाकर भी बहुत ज़्यादा जल्दी करने की हमारे किसान भाई को आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ,
0: बिल्कुल आराम
1: और
0: से हमारे किसान भाई पौधा डाल सकते हैं। और ये हेलो बासमती कार्यक्रम हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम, किसान भाई इसमें फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी, जो कि वैज्ञानिक हैं
1: आ
0: बासमती
1: रहा है
0: निर्यात
1: फोन,
0: विकास प्रतिष्ठान मोदीपुर मेरठ में।
1: इस
0: और
1: बीच एक फोन आ रहा है, पहले उसको सुन लेते हैं।
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: बासमती,
0: बासमती,
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: शायद
0: शायद
1: फोन लाइन
0: फोन
1: में।
0: लाइन में। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ बता रहे थे।
1: जैसे नर्सरी एरिया में ना अभी किसान हल्का पानी निकाल करके उसकी जो खेत में गर्मी है उसको कम कर सकते हैं, हल्के खरपतवारों को निकाल करके उसकी जुताई करके तैयार कर सकते हैं। ये किसानों के लिए इस समय जरूरी है नर्सरी एरिया में।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और हम पूछना चाह रहे हैं कि जिस जमीन में हमें रोपाई करनी है
1: जी,
0: उस जमीन में इसमें क्या किया जा सकता है।
1: उस इस समय जो 15 09 बोने वाले किसान हैं
0: जी
1: वो ढैंचा हरी खाद ले सकते हैं,
0: अच्छा
1: उससे उनकी 40% पानी की बचत होगी। और हमारी जो नाइट्रोजन, अभी जो फर्टिलाइजर्स का अभी देश में समस्या बनने वाली है,
0: जी
1: तो किसान भाइयों को भी से भी हमारा अनुरोध है कि वो हरी खाद का प्रयोग जरूर करें जिससे हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया हमें बाजार से कम खरीदना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो भैया गंगाराम, हरी खाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और भैया हरी खाद के रूप में देखो इस समय हमारे किसान भाइयों ना भैया सनई और ढैंचा लगा रखा है, और जैसे भैया वो पलटाई करने के लायक होगा तो किसान भाई हमारे उसके पलटाई करेंगे। और आप जरा ये बताओ कि जब हम उसकी पलटाई करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है भैया हमें।
1: बिल्कुल, देखो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इससे बताऊँ, इस आ चुके हमारे पास विशेषज्ञ हैं, तो डॉक्टर साहब क्या क्या लाभ उससे होने की संभावना रहती है जब हम हरी खाद को जो है पलटते थे।
0: हरी खाद को पलटने के लिए सबसे पहले किसान भाई अधिकतर हम देखते हैं कि वो सूखे में जुताई कर देते हैं। सबसे पहले उन्हें सूखे में जुताई नहीं करना है। अच्छा अच्छा
1: यदि धान की फसल उन्हें लेनी है
0: जी
1: तो सीधा उसमें पानी भर करके और पलटिंग करना है
0: अच्छा
1: जिससे हमारा उसके अंदर जो नोड्स होते हैं वो सूखने के बाद जो हम नाइट्रोजन फिक्स होता है वो हमारा वाष्पीकरण नहीं हो पाए।
0: अच्छा
1: हमें नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, हमारा कार्बन परसेंटेज बढ़ता है, और दूसरा हमारा पानी की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इस समय
0: जी
1: उसकी बचत होती है।
0: बिल्कुल। तो ये कई सारे फायदे हो सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर साहब, एक बात आप कह रहे थे कि अब यूरिया की या जो रासायनिक खाद है उनकी परेशानी आने की परेशानी आने
1: संभावना
0: की
1: है।
0: संभावना
1: बिल्कुल,
0: है। जी,
1: तो हमारे किसान भाइयों को मानसिक रूप से तैयार तो होना ही पड़ेगा। हमारे किसान भाई पहले से करते आ रहे थे लेकिन बीच में
0: जी
1: किसी कारणवश डाइवर्ट हो गए हैं।
0: जी
1: हमारी ऐसी जो फसलें हैं उनका यदि वो करते हैं तो हम उसमें अपना एक सहयोग दे सकते हैं किसान भाई कि आवश्यकता तो रहेगी लेकिन हमें दूसरे संसाधनों से उसको हम ले सकते हैं, जैसे हरी खाद है, कूड़ी की खाद है, गोबर की खाद, उसको प्रयोग करने से प्राकृतिक खेती के माध्यम से तो हम किसान लोग सब किसान भाई इसका प्रयोग जरूरी है।
2: जो मिलाकर उसके जो दूसरे तरीके हैं उनको खोजने की जरूरत है और उनका उपयोग करने की जरूरत है
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे जो हमारे किसान भाई ने हरी खाद लगा रखी है, सने ढैचा हमारे खेत में खड़ा है और उसकी पलटाई हम करते हैं, तो जिस स्थिति में हमने मान लो उसकी पलटाई करी है तो क्या उसके बाद भी हमें जो हमारे NPK है या DAP है उसको डालने की आवश्यकता रहेगी हमारी बासमती में?
1: बासमती की कुछ वैरायटीज में बहुत कम रहती है, जैसे पूसा बासमती 11 21 है 17 18
0: जी,
1: इसमें तो यूरिया और DAP की हम लोग अपने फार्म पे भी करते हैं बहुत, ना कि बराबर, किसी कारण से अगर लगता है कि हल्का कभी देने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती है।
0: अच्छा।
1: जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, पूसा बासमती 6 है, पूसा बासमती 1 है या 15-0, इनमें थोड़ा सा हमें देना पड़ता है।
2: अच्छा, तो कुल मिला के अगर हमारे किसान भाई जो है ढैचा सनई का इस्तेमाल करें, वो गोबर की सड़ी खाद का इस्तेमाल करें, तो हम जो एक बड़ी समस्या बनने जा रही है खाद रासायनिक खाद की, उससे निदान पा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए ये बात कही गई है कि आपदा को अवसर में बदलना,
2: बिल्कुल,
0: और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। तो भैया देखिए, हमें चाहे मजबूरी में ही हो, अगर हम भाई जैसे मान लो हमें रासायनिक खाद नहीं मिलेगा,
2: हाँ,
0: तो अगर हम जैसे कि जो हमारी हरी खाद है उसको अपना में, गोबर की खाद है उसको अपना में, और साथ ही फसल चक्र अपना में,
2: बिल्कुल,
0: तो भैया हम जो है निश्चित रूप से जो हम इस पर आधारित हैं रासायनिक खाद हो वो, तो इनसे हम ऊपर उठ सकते हैं भैया।
2: बिल्कुल ठीक है, तो एक बार मैं और अपने किसान भाइयों को बता दूं, भैया इस समय चल रहा है कार्यक्रम हेलो बासमती, और भैया बासमती धान से संबंधित आपकी कोई अगर समस्या है तो भैया आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुर मेरठ में, और भैया आज आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए निजी विवाद स्टूडियो में आए हुए हैं। तो भैया आपको हम फ़ोन नंबर बता देते हैं, इनमें से किसी एक नंबर पर फ़ोन करके आप प्रश्न कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारे हैं 94-57-07-82-88, और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है 03-41, भैया कोड लगाओ पहले, फिर 230-105 फ़ोन नंबर लगा दो।
0: तो भाई देखो ये हमारे फ़ोन नंबर हैं और अभी भी हमारे कार्यक्रम में 5 मिनट शेष हैं, तो हमारे किसान भाई फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन करना है। और देखिए हम डॉक्टर साहब से जानकारी चाहते हैं क्योंकि हमारे किसान भाई प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, हो सकता है कि भैया वो खेत पर बिजी हों, इस समय काम का समय चल रहा है,
2: सुबह शाम आजकल काम हो रहा है,
0: ये समस्या हो सकती है, तो कोई बात नहीं, उनकी तरफ से हम ही प्रश्न पूछ लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अपनी पौध तैयार करते हैं तो कितने दिनों की पौध हमारी है जिसकी हमें रोपाई करनी चाहिए डॉक्टर साहब?
1: जी ये बहुत आवश्यक है किसान भाइयों के लिए, जो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है जैसे पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 11-21-18-85, हम इसकी पौध 21-25 दिन की लगा सकते हैं
0: जी।
1: जो हमारी कम समय में पकने वाली प्रजाति है जैसे पूसा बासमती 15-09, पूसा बासमती 16-92, इन प्रजातियों की नर्सरी हम किसान भाइयों से कहते हैं कि 18 से 22 दिन तक की नर्सरी लगाएं
2: जी।
1: यदि ऐसा करते हैं तो इनमें बकानी की भी समस्याएं कम आती है, फुटाव अच्छा होता है, पैदावार अच्छी निकलती है
2: जी। तो कुल मिलाकर यह है कि हमें यह भी देख लेना चाहिए कि पौध कितने दिनों की हो, उसी हिसाब से हम जो है अपने, देखिए इस बीच में एक फोन नंबर फोन आ रहा है।
0: हेलो, हाँ जी,
3: हेलो
0: बासमती,
3: हेलो बासमती,
0: हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए डॉक्टर साहब से एक और प्रश्न हम किसान भाइयों की तरफ से पूछ लेते हैं,
1: एरर है इसमें
0: जी। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमें 21 से 25 दिन की हमारी जो पौध है उसकी रोपाई करनी चाहिए, अगर किसी कारण से हमारी पौध ज्यादा उम्र की हो जाती है, मान लीजिए 1 माह की हो जाती है, कुछ थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में किसान भाई क्या करें डॉक्टर साहब?
1: ऐसी अवस्था में किसान भाइयों के लिए प्लानिंग में थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमारी कमी है
2: जी,
1: क्योंकि उसके नुकसान होते हैं किसानों के लिए
2: जी।
1: फिर भी क्या करना है, जैसे 1 महीने की कौन सी प्रजाति की पौध होती है उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन ज्यादा देना है, और जब रोपाई के 15 दिन हो जाएं तो पाटा प्रैक्टिस का जरूर प्रयोग करें।
2: अच्छा।
1: जिससे उनका फुटाव हो जाए।
0: अच्छा।
1: और लगाने का तरीका जो हम रोपाई के लिए

0: थे कि 1 से 1.5 इंच गहरी जड़ की ही रोपाई करेंगे तभी समय से उनमें फुटाव हो पाएगा।
1: अच्छा,
0: क्योंकि एक तो समय हमने उनका नर्सरी में ले लिया और दूसरा यदि हमने उनको गहरे में और गाड़ दिया तो फिर हमें नुकसान होना निश्चित है।
1: जी जी बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे तो उनकी जो बासमती की फसल है वो अच्छी होगी।
2: बिल्कुल, देखिए बासमती हमें लगानी है और बासमती का जो भाई देखिए निर्यात है वो अगर हम जो हमारी बाकी के हमारे कृषि उत्पाद हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है बासमती निर्यात की जाती है और विदेशी मुद्रा बासमती के माध्यम से हमारे देश में आती है, ये हमारे लिए गौरव की बात है भैया।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब चलते चलते एक प्रश्न और हम करना चाह रहे हैं कि निर्यात की दृष्टि से
0: जी
1: हम पौधशाला से ही किन किन खास बातों का ध्यान रखें।
0: पौधशाला से हमें एक तो प्रजाति
1: जी
0: हमारे देश में से कौन सी प्रजाति का निर्यात में ज्यादा मांग है
1: जी
2: जी
0: उन वैरायटीज का हमें उत्पादन करना है।
1: समय
0: का ध्यान रखना है कि हमें गर्मी में जैसे हम देख रहे हैं साठा में धान लगा दिया उससे हमारी क्वालिटी प्रभावित हो रही है
1: जी, जी।
0: बासमती की वैरायटियों को ना लगाएं किसान भाइयों से
1: ठीक।
0: उन दवाइयों का प्रयोग ना करें जिन दवाइयों का हमारी बासमती के चावल में निर्यात में प्रतिबंधित है।
1: अच्छा।
0: ये शुरू से हमें ध्यान देना है कि हमें दवाइयों पर विशेष ध्यान देना है कि ऐसा ना करें कि हमने शुरू से ही वो दवाइयां लगा दी जिसका इफेक्ट हमारे लास्ट तक चलता रहे।
1: अच्छा, तो अभी डॉक्टर साहब आपने एक बार बताई थी कि हम किस्मों का भी ध्यान रखें, कौन कौन से किस्में हैं जिनको हम चुने
0: जी,
1: तो किन किन किस्मों के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को सलाह देनी चाहेंगे?
0: देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारी जो एक्सपोर्ट में पूसा बासमती 1121 का सेगमेंट है
1: जी,
0: उसी में पूसा बासमती 1885 आती है, उसमें दो बीमारियाँ नहीं हैं
1: जी।
0: पूसा बासमती जो 1885-1121 का एक सुधार के रूप में आया जिसमें BLB
1: अच्छा
0: बैक्टीरियल ब्लाइट, दूसरा ब्लास्ट जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या गर्दन तोड़ के पकते समय
1: जी।
0: हमारे किसानों का धान से गर्दन तोड़ बीमारी के कारण काफी नुकसान होता था, तो ये दो बीमारियां उसमें नहीं आ रही हैं
1: ठीक
2: जी। बिल्कुल,
0: इनका प्रयोग करें। पूसा बासमती 6 है जिसे 1401 बोलते हैं, इसका हमारा यूरोप की कंट्रियों में बहुत ज्यादा मार्केट है
1: जी।
0: इसका चावल खाने में अच्छा है, इन प्रजातियों का चयन करें और प्रजातियां हमारी इन्हीं के साथ में मिलकर के जाती हैं
2: जी। बिल्कुल, तो इस तरीके से हमारे किसान भाई इन प्रजातियों को लगा सकते हैं और बासमती धान से हम बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे हमें जानकारी दी है और जिन किसान भाइयों के देखिए फोन आए हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। भैया
1: बिल्कुल,
2: तो भैया आप चलने से पहले आप जल्दी से ये बता दीजिए कि हमारा ये अगले माह जो हेलो बासमती कार्यक्रम है भैया ये किस दिन होगा? भैया
1: देखिए आपको हम ये बता दें कि माह के आखिरी मंगलवार को भैया ये कार्यक्रम हर महीने हुआ करेगा अक्टूबर माह तक। तो भैया अगले माह यानी कि 30 जून 2026 को हमारा अब जो आने वाला हेलो बासमती कार्यक्रम वो होगा। तो 30 जून 2026 को शाम 6:05 से लेकर 6:45 तक आप भैया अपने समस्याओं का निदान कर सकते हैं और उसके लिए भैया फ़ोन नंबर हम बता देते हैं
2: जी।
1: फ़ोन नंबर है हमारे 9457072888 और भैया लैंडलाइन नंबर है 01341 और फ़ोन नंबर है 230105।
2: तो भाई देखो यूँ था हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती और आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी जो कि वैज्ञानिक है बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुर मेरठ में। तो डॉक्टर साहब आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: तो किसान भाइयों बासमती धान के बारे में तकनीकी जानकारी लेने के लिए और अच्छी बासमती उगाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को सुनते रहो
3: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
4: अरे मास्टर जी।
5: हाँ भैया।
4: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
5: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
4: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
5: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
4: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
6: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
7: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती,
8: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
9: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
9: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती। और गंगाराम भैया
1: जी, भैया
0: भाई चलने से पहले जरा सा मौसम के बारे में बता दे।
1: बिल्कुल जल्दी बता दो भैया, टाइम कम है।
0: भैया मौसम की चिट्ठी के हिसाब से भैया 28 से 31 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी गरज के साथ हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट के आसार है।
1: बिल्कुल, तो भैया ऐसे मौसम को देखते हुए अपनी खेती किसानी का ध्यान रखें। और भैया अब समय हमें ज़्यादा बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम
0: और अपने भैया सुवेंद्र सिंह झूमरू को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
1: किसान भाइयों
0: राम राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता। 90 साल बेमिसाल, इस विषय पर उज्ज्वल चौधरी और मंतशा से बातचीत कर रहे हैं शोभित शर्मा।
1: 90 साल बेमिसाल। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के 90 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। 8 जून 2026 को हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं, और सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि है हम सभी के लिए वो ये है कि इस महान इंस्टीट्यूशन ने, इस महान संस्थान ने 90 वर्षों तक इस देश को, हम सभी को अपनी सेवाएं दी हैं। और ये जो विशेष कार्यक्रम है, एक नई श्रृंखला हम आज से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है 90 साल बेमिसाल। आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने बहुत खास गेस्ट को, बहुत खास मेहमानों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। वो खास इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं उज्ज्वल चौधरी और मंतशा शमसी, ये दोनों ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं आने वाली पीढ़ी को। चूंकि आकाशवाणी बेसिकली रहा है ऑडियो मीडियम, लेकिन ये जो दो शख्सियत आज हमारे साथ हैं, ये दोनों अगर हम मॉडर्न पैलेंस में कहें, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कहें, तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और आकाशवाणी भी आज सोशल मीडिया से अछूता नहीं है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उज्ज्वल चौधरी और मंतशा शमसी आपका हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच।
1: आकाशवाणी और सोशल मीडिया, अगर हम आज से 5-10 साल पहले की बात करते तो विजुअल मीडिया और आकाशवाणी दोनों ही ये कहा जा सकता है कि अलग अलग ध्रुव होते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन चूंकि आज समय बदला है, आप लोगों के साथ हमारा एक तरीके से एसोसिएशन बड़ा है, हम सबसे पहले उज्ज्वल आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया और आकाशवाणी ये दोनों किस तरीके से आज के समय में एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं।
3: देखो क्या बोले, पहले ज्यादातर रेडियो सुनते थे पुराने लोग, जैसे कि मान के चलो मेरे बाबा जी थे, जंगल जाते थे पहले तो कंधे पे रेडियो रखी और चल, मतलब सुनते हुए चलते गए, तो पहले ये रहता था। और मतलब सबके पास आजकल स्मार्टफोन हो चुके हैं, और आजकल इंस्टाग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लोग वीडियो बनाते हैं, तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान रखते हैं लोग।
1: तो आपका कहने का मतलब ये है कि चूंकि लोगों के हाथ में स्मार्टफोन होने से जो विजुअल डेटा कंजम्पशन है, जो विजुअल मीडिया कंजम्पशन है, वो बहुत बड़ा है, तो आकाशवाणी को कहीं ना कहीं से ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, तभी हमने आपके जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको अपने साथ लाना सोचा है। मंतशा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी आकाशवाणी को लेकर, चूंकि हम 90 वर्ष आकाशवाणी के सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आकाशवाणी नजीबाबाद भी बहुत जल्दी 50 वर्ष अपने पूरे करेगा कुछ सालों में। 1978 में आकाशवाणी नजीबाबाद अस्तित्व में आया, तो आकाशवाणी, चूंकि आप खुद नजीबाबाद से ताल्लुक रखती हैं, तो आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़ी कोई आपकी याद हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें इस कार्यक्रम में?
2: जी बिल्कुल, पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन आप लोगों को बोलना चाहूंगी जी। और जब वही मैं बोलना चाहती हूँ कि रेडियो जो सबसे पहले मैंने देखा था अपने दादा के पास देखा था, तो वही सुनते रहते थे, और उसके बाद फिर फोन, एक फोन था मेरे पास जिसमें सिम नहीं था, बट उसमें एयरफोन लगाकर मैं उसको रेडियो सुना करती थी, क्योंकि एयरफोन के बिना वो चला नहीं करता था। बट अब चूंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और आकाशवाणी ने भी अपना खुद का एक एप्लीकेशन बना लिया है जिससे आप स्मार्टफोन में भी रेडियो सुन सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक आकाशवाणी ने एक हम लोगों के लिए, जैसे आज की पीढ़ियां हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है कि हम साथ ही साथ आकाशवाणी को भी सुन सकते हैं, और जिसमें सारी ही चीजें

0: क्या कोई कोई ऐसा, जैसे आपने बताया कि आपके दादाजी रेडियो सेट रखा करते थे, कोई ऐसी कोई इंसिडेंट है ऐसा, कभी आपने कोई चीज सुनी हो वो आपके जहन में आज तक गूंजती हो? आपने बताया कि मोबाइल फोन के जरिए भी आप हेडफोन लगाकर सुनती थी आकाशवाणी नजीबाबाद को, तो कोई ऐसी याद है पुरानी जो आपको याद आती हो और आपको अब लगता हो और हंसी आ जाती हो कि अरे वाह ऐसा भी हुआ था कभी?
1: बिल्कुल, सबसे पहली बात पुराने गाने जो कि आकाशवाणी के थ्रू सुनने के लिए मिलते थे घर पर, क्योंकि फोन उस टाइम पर नहीं था, सॉन्ग सुनने होते थे, टीवी नहीं था किसी घर में, या फिर एक टीवी रहता था जिसमें सारे ही मोहल्ले के बच्चे और सारी लेडीज एक ही घर जाकर देखा करती थी। बाकी म्यूजिक का बहुत शौक था, सब सुना करते थे, उसी से अपना दिन निकाल लिया करते थे। और काफी चीजें जानकारी लाइक स्कूल के बारे में या फिर किसी और एजुकेशन के बारे में, या फिर कोई लाइक कोई स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं और तो बहुत कुछ जानकारी उसमें मिला करती थी। कोई ऐसी याद नहीं, बट सॉन्ग्स ज्यादा मैंने उसमें सुने हैं।
0: उज्जवल, आपने बताया कि आपके दादाजी सुना करते थे आकाशवाणी। अब चूंकि हम 90 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब दादाजी की बात होती है तो हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन आज जो आकाशवाणी है अपने विभिन्न एप्लीकेशंस के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। आप इस जो जो जिस पेस के साथ आकाशवाणी आज आगे बढ़ रहा है, आप क्या देखते हैं कि क्या फ्यूचर है आकाशवाणी का, स्पेशली अगर हम आकाशवाणी की स्ट्रेंथ्स की बात करें जिसमें क्रेडिबिलिटी होती है कि विश्वसनीयता, अभी मंत्र शाह ने भी कहा कि हम विश्वास करते हैं सहजता के साथ, तो अगर आकाशवाणी को आगे बढ़ना है तो किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ये हमारे श्रोताओं
2: देखो,
0: के साथ?
2: सोशल मीडिया में एक तो जैसे कि इंस्टाग्राम हो चुका, फेसबुक और यूट्यूब पे ज्यादातर जो यूथ है आजकल का, तो यूथ फेसबुक पर मतलब यहाँ पर एक्टिव है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले रेडियो वगैरह चलती थी वो आज के जमाने में आपको पता है कि बहुत कम हो चुकी है। तो आप जैसे कि अभी मंत्र सर ने बताया कि एक एप्लीकेशन चल रही है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, तो वो ये कि घर बैठे मतलब कि इजिली आराम से फोन से सुन सकते हो आप।
0: जी, तो न्यूज ऑन एयर ऐप जो है उसी एक दिशा में एक कदम है हमारा कि हम जो यूथ को फील कर सकें, यूथ के साथ हम मिलकर चल सकें।
1: बिल्कुल।
0: मंत्रिशा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप खुद इस फील्ड में हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, जिन लोगों से आप जुड़ती हैं, तो किस तरीके से आकाशवाणी को सुनने का या आकाशवाणी को एक तरीके से स्केच करने का कि किस तरीके से लोग आकाशवाणी को सुन सकते हैं या क्या वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप वो संदेश देना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, देखिए मैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्रमोशनल वीडियोस बनाती हूँ, बट वो डेली नहीं होता है। आकाशवाणी से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको डेली अपडेट मिलने वाली है, डेली स्पोर्ट्स के बारे में मिलने वाली है, जो हम नहीं दे सकते। यूजुअली हम रोज तो नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन, बट आकाशवाणी से अगर आप जुड़ते हैं तो जैसे हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, मैं अपने फॉलोअर्स से यही बोलना चाहूंगी, जैसे हम लोग आप तक ये अपडेट पहुंचाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, बट आकाशवाणी से आप वो चीजें भी सुन सकते हैं जो शायद हम आपको नहीं बता पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया जो कुछ भी हो रहा है, स्पोर्ट्स को लेकर हो रहा है, मूवीज को लेकर हो रहा है, सॉन्ग्स को लेकर हो रहा है, या किसी की याद में कोई सॉन्ग है या कुछ भी है, सब कुछ अपडेट आपको आकाशवाणी में ही मिलेगा। तो मैं फॉलोअर्स से ये कहना चाहूंगी कि हमारे साथ साथ आकाशवाणी को भी आप सुनिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा अपडेट आपको आकाशवाणी देगा।
0: जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। उज्जवल, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आपके भी ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, जब आप स्क्रीन पर आते हैं, जब आप
2: जी
0: मोबाइल पर रील्स के थ्रू आते हैं, तो लोग दिल थाम के सांसे थाम के आपको देखते हैं कि अब उज्जवल कुछ करने वाले हैं, तो आकाशवाणी के लिए अगर हम आपसे कहें कि कोई कोई चीज आपके दिमाग में, कोई कहना चाहिए कोई फैक्ट आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई कोई भी चीज आपके दिमाग में इस वक्त आ रही हो आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में, तो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें, वो क्या हो?
2: जैसे कि मान के चलो खबरें वगैरह जैसे फेक आती है यूट्यूब वगैरह इंस्टा पे, तो आप क्या बोले रेडियो के माध्यम से आप सच्चाई की खबरें सुन सकते हैं, और पूरे भारत के अंदर जो भी सच्चाई होती है, तो भाई पूरे जैसे कि पूरे भारत जो सच्चाई की खबरें आती है पूरे भारत के अंदर, तो आप आकाशवाणी के केंद्र से आप सुन भी सकते हैं।
0: बिल्कुल उज्जवल, जहां तक सच्चाई की और विश्वसनीयता की बात है तो आकाशवाणी इस मामले में नंबर एक है। हम ये बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी प्रसारण होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं, जहाँ पर हर खबर या हर प्रोग्राम को प्रॉपरली स्क्रीन किया जाता है, स्क्रिप्ट देखी जाती है, उसके बाद में हमारे श्रोताओं तक वो सूचना जाती है। अब मंतशा और उज्ज्वल, हम आपसे एक और बात ये जानना चाहेंगे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं, कि कोई एक चीज अगर आपको कहा जाए कि ना कि आकाशवाणी में परिवर्तित कर दी जाए या आकाशवाणी को दे दी जाए, या आपके पास वो एक शक्ति हो, एक पावर हो कि मैं आकाशवाणी को ये दे सकूं, तो आप वो क्या चीज देना चाहेंगी मंतशा?
1: देखिए जैसे हमारी लाइन है, आपको पता है, सोशल मीडिया,
0: जी,
1: तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करना चाहूंगी और अपनी तरफ से पूरा 100% देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के थ्रू आकाशवाणी को पूरे

0: गाजियाबाद और उसके बाहर जितना भी एरिया है पूरे इंडिया तक फैलाया जाए, दोबारा वही चीज जिंदा की जाए जो कभी थी आकाशवाणी को लेकर।
1: बहुत सुंदर उज्जवल। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि उज्जवल चौधरी जो हैं वो कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और साथ में जैसा कि हमने बताया मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो उज्जवल जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे, चूंकि अपने जो फॉलोअर्स हैं जो आपके आपको देखते हैं उनके साथ तो आप तमाम बातें करते हैं, लेकिन आज हमारे लिसनर्स के साथ आपको रूबरू होने का मौका मिला है, तो क्या चीज़ आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे?
2: पहले देखो, जब स्पोर्ट खेलता था तो मीडिया वगैरह कुछ नहीं थी
1: जी,
2: तो सबसे पहले से अपनी क्या बोले रेडियो के माध्यम से लोग सुनते थे स्पोर्ट वगैरह को। तो आज भी ऐसा है कि आज भी सच्ची बातें होती है रेडियो पे, और जो इस समय खिलाड़ी अपने गांव में खेल रहे हैं और बाहर भी खेल रहे हैं, तो उन्हें जैसे कि आज के टाइम में इंसान वो आज के टाइम में ऐसा खिलाड़ी बाहर खेल रहे हैं स्टेडियम वगैरह में खेल रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है आकाशवाणी के थ्रू।
1: जी उज्जवल, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसने न जाने कितने खिलाड़ियों के भविष्य को संवारा है और न जाने कितने खिलाड़ियों को उन्होंने मंच दिया है, पहचान दी है, और उसके साथ में कई कलाकारों को भी मौका दिया है। हम आप दोनों से आखिर में पहले तो आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, क्योंकि आपका फील्ड जो है बहुत वाइब्रेंट है, बहुत डायनेमिक है, और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उनको आपके साथ की जो हमारी ये मुलाकात है पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता 90 साल बेमिसाल। इस विषय पर उज्जवल चौधरी और मंतशा से बातचीत कर रहे थे शोभित शर्मा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:56 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, छाया गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और इस गीत को संगीत दिया है नौशाद ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: छाया गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20 साल बाद फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीत को संगीत भी दिया है हेमंत कुमार ने ही, और इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।
2: जरा नजरों से कह दो जी

श्रोताओं, भी आपने सुना 20 साल बाद फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में ये प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम है प्यार का सागर। गीत के बोल लिखे हैं प्रेम धवन ने और संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, गुमराह फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी और उसके बाद कल के शेष विशेष कार्यक्रमों के विषय में भी जानकारी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण। कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ये रिले किया जाएगा और सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर आप सुन सकते हैं सोनाली जलोटा की आवाज में गजलें। रात 9:30 पर कार्यक्रम परिचर्चा के अंतर्गत आज का विषय होगा विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता। इस परिचर्चा में प्रतिभागी होंगे राजेश कुमार, एजाज अहमद और प्रीति वर्मा। परिचर्चा का संचालन करेंगे नरेंद्र पाल सिंह। श्रोताओं, संगीत यानी फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे आज रात 8 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में। 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत और रात 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। तो ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। और अब आपको बता दें कल के विशेष कार्यक्रमों के संबंध में। कल यानी 27 मई 2026 की रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल और कल शाम 7:32 पर कार्यक्रम कानून की बात। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल सवेरे 6:45 पर प्रतिभा गौड़ का काव्य पाठ आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत और सवेरे 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत कल जानकारी का विषय होगा मानसिक रोगों का इलाज संभव है। सूरज के साथ साथ इस कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर चर्चा के विषय होंगे समर वैकेशन में बच्चों को क्रिएटिव तरीके से रखें व्यस्त और एसी कमरे से सीधे धूप में जाने वाले हो जाएं सावधान। बात आसपास की इस कार्यक्रम में कल दिन में 9:50 पर वाचन स्वर और संकलन रहेगा अंकुर चौधरी का। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 10 बजे सुहाना सफर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में कल बातें होंगी 2021 के विषय में। कल दिन में 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कल दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे शिशिर कानाधर चौधरी द्वारा वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी, विलंबित व द्रुत गत 3 ताल और आपके साथ तबले पर संगत देंगे संतराम। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है,

0: बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
4: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3

0: साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
2: हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनवरत विद्युत की सप्लाई हो। और
0: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है

0: दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: आप सुन रहे हैं,
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:31 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं सोनाली जलोटा की आवाज में चंद गजलें। और इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं उनकी इस खूबसूरत गजल के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं सोनाली जलोटा की आवाज में गजलें।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनाली जलोटा की आवाज में चंद गजलें। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं उन्हीं की आवाज में एक और खूबसूरत गजल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सोनाली जलोटा की आवाज में गजलें, और इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, गीत संध्या कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। और इस कार्यक्रम में

हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खूबसूरत नगमे जो आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, आपकी यादों को आपकी ज़िंदगी के साथ जोड़े रखते हैं। जब आप कभी ऐसे खूबसूरत गीतों को सुनते हैं तो आपको ज़िंदगी के वो लम्हे यकीनन याद आते होंगे, और ये नगमा है मोहब्बत की सच्चाई को बयां करता हुआ। हीरो फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, और इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: गीत संध्या कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं सौगंध फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, इस दुनिया में जब भी किसी को मोहब्बत होती है तो फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बस हम ही हैं, और हम मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान लिखेंगे कि हमसे पुराने जितने भी किस्से हैं वो सब लोगों को छोटे लगने लगेंगे। ऐसा ही ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सौगंध फिल्म का आप भी सुनिए।

सौगंध फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। और श्रोताओं, कार्यक्रम गीत संध्या में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बेताब फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन साहब ने। श्रोताओं, ये गीत जिंदगी के उन लम्हों की याद दिलाता है जो बचपन में हमारे साथ गुजरे हैं, बचपन की वो शरारतें और ख़ास तौर से बचपन की वो मोहब्बत बहुत याद आती है। ऐसा ही है ये प्यार भरा गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, बेताब फिल्म का गीत अभी आपने सुना शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। और आइए, गीत संध्या कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म से अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को। और श्रोताओं, आइए गीत संध्या कार्यक्रम का आखिरी नगमा आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रोग से। सुधा मल्होत्रा और अनवर की आवाज़ में है ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और धुन से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्रेम रोग फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात के 8:30 बजे हैं और अब वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा

जा रहे हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं के कुछ गीत। और श्रोताओं, ये फिल्म अपनी पटकथा यानी अपनी कहानी के लिए बहुत प्रसिद्ध फिल्म हुई। ये एक प्रेम कथा थी और सन 1977 में पाकिस्तानी एक फिल्म आईना, उसका ये रीमेक भी बताया गया। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरी और डैनी डेंसगोपा ने। और भी इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ जरा हम सुन लेते हैं इसी फिल्म का ये प्यारा सा नगमा।

0: प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम बात कर रहे हैं एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज वर्ष 1973 में आई फिल्म आग गले लग जा से प्रेरित ये फिल्म प्यार झुकता नहीं। श्रोताओं, ये फिल्म आई 1985 में और इस फिल्म में वैसे तो सारे गीत ऐसे थे जो सीधे दिल पर दस्तक देते थे और इस फिल्म के गीतों के लिए 33वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए कई गीत नॉमिनेट भी हुए, यानी नामांकन उनका किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी के रूप में मनोनीत हुई, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मनोनीत हुए और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, इस गीत के लिए शब्बीर कुमार साहब को भी नॉमिनेट किया गया था। और इस फिल्म के गीत गाए लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। कविता कृष्णमूर्ति जी ने भी एक गीत में आवाज़ अपनी दी थी और ये फिल्म अपनी प्रेम कहानी के साथ साथ अपने गीतों के लिए भी लोगों की पसंदीदा फिल्म बनी। आइए इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

0: इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।

में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुलकाहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में

0: योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ, फौज, इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नजदीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के उदराय

0: है कि देश में सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। 140 करोड़ आबादी वाले देश के 12 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं, 30 से 35 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से हैं जिनके पास बेहतर जिंदगी व्यतीत करने का साधन उपलब्ध है, 60 करोड़ या इससे ऊपर ऐसे लोग हैं जो बदहाली और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने को अभिशप्त हैं। आज समाज एवं सभी सामाजिक कार्यकर्ता इस विषय पर एक मत हैं कि अर्थव्यवस्था का ध्येय सामाजिक न्याय के साथ विकास का होना चाहिए। विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब किसी देश में विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों के भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है, जन सामान्य को अशिक्षा, बीमारी और छोटी आयु में मृत्यु के साथ साथ गरीबी से छुटकारा मिलता है, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ना होकर उद्योगीकरण होता है जिससे उत्पादन के स्वरूप में तथा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कारकों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है तथा आर्थिक एवं अन्य किस्म के निर्णयों में लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब यह कहा जा सकता है कि देश में आर्थिक विकास हुआ है। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर राजेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि कौन कौन सी बातें हम सम्मिलित करते हैं आर्थिक विकास में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: आर्थिक विकास में हमारी जो देश की जो रीढ़ है वो मुख्यतः निर्भर करती है और जो विकास के मानक हैं, मानदंड हैं, उन्हीं सभी से मिलकर हमारे जो देश की एक आर्थिक स्थिति आगे बढ़ती है। तो उसी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए पुराने जो प्रतिमान हैं जो कि मुख्यतः आर्थिक वृद्धि और औद्योगिकरण पर केंद्रित थे, वो अब उनको बदल कर उनमें इम्प्रूवमेंट करके अब जैसे सतत समावेशी और बहुआयामी विकास की जरूरत महसूस हुई है और उसी से ही इन मॉडल्स की आवश्यकता होने पर ही हम अपने देश को अग्रसर उन्नति पथ पर ले जा सकते हैं।
0: मैं एजाज अहमद साहब से आग्रह करूंगा कि वो ये बताएं कि आर्थिक विकास किसे मानेंगे।
2: देखिए, जहां तक देश के आर्थिक विकास से संबंधित बात है तो विभिन्न रूपों में हमें ये देखना होगा कि हमारा जो देश है वो किस तरह से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, किस तरह से हम आगे जा रहे हैं ताकि हमारे देश की जो रीढ़ है आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो रही है। अर्थव्यवस्था के जहाँ तक मॉडल की बात है उसमें उत्पादकता, मूल्य, दक्षता, समानता, विकास जैसी नई अवधारणाएं हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान देना होगा कि अगर हम इन मूल्यों को, इन उद्देश्यों को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। जहाँ तक नए प्रतिमान की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो शिक्षा, ज्ञान, अर्थव्यवस्था और खुलापन, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश से लेकर विदेशों तक एक हमारे देश को विकास की ओर अग्रसर करते हैं। विकास के प्रतिमानों पर अगर हम बहुत गंभीरता से जोर दें तो वो ये भी है कि हमारी जो सोचने की शक्ति है, हम एक विकास की ओर अग्रसर होते हैं तो हम एक टारगेट निश्चित कर लेते हैं कि हमें किस तरह से अपने देश को किस स्थान पर ले जाना है और इसमें सोचने और काम करने की जो हमारी क्षमताएं हैं वो बहुत कुछ निर्भर करती हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर आप हमें हवाला देना चाहूँ तो HDI ने 3 प्रमुख आयाम दिए हैं विकास के। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी हुआ स्वास्थ्य, ज्ञान और सभ्यता का विकास। यही मुद्दे जो हैं विश्व को आर्थिक विकास की ओर ले जाने में अग्रसर होते हैं। इसमें हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हमें सकारात्मक रूप से किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है ताकि हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो सके।
0: हम जो विकास की बात कर रहे हैं इसमें केवल मौद्रिक जो आय है उसमें होने वाली वृद्धि ही शामिल नहीं होती, बल्कि जैसे एजाज भाई ने कहा कि वास्तविक आदतें, शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य, अधिक आराम के साथ साथ एक पूर्ण एवं सुखी जीवन का निर्माण करने वाले समस्त सामाजिक एवं आर्थिक सुधार भी शामिल रहते हैं। आर्थिक विकास में हम जो ध्यान देते हैं, क्या गरीबी के स्तर में कमी हो रही है, क्या बेरोजगारी का स्तर कम हो रहा है, क्या अर्थव्यवस्था में असमानताएं कम हो रही हैं? यदि इनका उत्तर हाँ में आता है तो हम समझते हैं कि विकास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जनसंख्या का प्रभाव जो है वो टेम्परेरीली प्रोडक्शन पर या प्रति व्यक्ति आय पर पड़ जाता है, तो उसमें आर्थिक विकास को हम शामिल नहीं मानते। तो मैं आप मैडम प्रीति वर्मा से आग्रह करूंगा कि आर्थिक विकास में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी, उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें।
3: देखिए, विकास की जब हम बात करते हैं तो अधिकतर राष्ट्रों में विकास को जो माना जाता है वो आर्थिक विकास ही माना जाता है कि जी जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास हो रहा है, अदरवाइज नहीं माना जाता है। लेकिन सिर्फ आर्थिक विकास को ही विकास के प्रतिमानों में नहीं रखा जा सकता। मैं एक महिला शिक्षिका होने के नाते महिलाओं के बारे में बताना चाहूंगी कि महिलाएं भी विकास की एक प्रमुख धुरी रही हैं, और शुरुआत में परिवार की धुरी होती हैं महिलाएं, ये तो सब लोग मानते आए हैं, और सदियों से ही जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान भी दिया जाता है हमारे भारतीय समाज में, क्योंकि वही जो है बच्चों के पालन पोषण के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इन सब के लिए जिम्मेदार माना जाता है। संस्कृति की वाहक होती हैं महिलाएं, संस्कृति का न केवल वो पोषण करती हैं, संरक्षक होती हैं, बल्कि उसको हस्तांतरण का भी महत्वपूर्ण कार्य करती आई हैं। तो इसलिए बहुत समय तक महिलाओं का योगदान इसी तरह से माना जाता था कि प्रजनन कार्यों में बच्चों की देखभाल करने के लिए और घर के कामकाज करने तक ही सीमित माना जाता था। लेकिन उनका जो है विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो राष्ट्र का निर्माण भी करती हैं, और राष्ट्र का निर्माण होगा तभी आप विकास की बात कर पाएंगे, तो राष्ट्र के निर्माण और विकास में दोनों में महिलाओं की भूमिका है। लेकिन उनका ये जो योगदान है उसको बहुत समय तक कोई एक्नॉलेज ही नहीं किया गया। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 1970 के दशक तक तो ये लगभग लिंग निरपेक्ष ही रहा, पुरुषों को ही माना जाता था कि विकास में उन्हीं का योगदान है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान जब नारीवादी आंदोलनों ने इस धारणा पर सवाल उठाया कि महिलाओं का योगदान सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्रजनन कार्यों तक और बच्चों की देखभाल करने तक सीमित नहीं है, तब विभिन्न अध्ययन शुरू हुए और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में रिपोर्ट्स प्रस्तुत हुई, तब जाकर तो हमें एक्नॉलेज किया गया महिलाओं के विकास को, कि महिलाओं के योगदान को एक्नॉलेज किया गया राष्ट्र के विकास में। 1975 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व सम्मेलन हुआ और तब जाकर यह चेतना आई। विकास के प्रतिमानों में महिलाओं की आवश्यकताएं क्या हैं, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। एक पुरुष अगर शिक्षित होता है, सुसंस्कृत होता है, तो उसका अर्थ है कि केवल वो उसी के लिए उपयोगी है। लेकिन अगर एक स्त्री शिक्षित होती है, समझिए कि आप पूरा परिवार सुदृढ़ बनाने का एक सुदृढ़ आधार मिल जाता है।
0: आर्थिक विकास में जो हम मेन बातें जो शामिल करते हैं वो है आर्थिक विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। आर्थिक विकास को हम ये नहीं कह सकते कि भाई 3 महीने में हमारा आर्थिक विकास हो गया, 6 महीने में हो गया, साल भर में हो गया, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति आय व्यक्ति आय में जो है वो वृद्धि होती है, और जो आर्थिक विकास है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही, लेकिन दीर्घकालीन प्रक्रिया भी है। अगर मान लिया इस साल बारिश अच्छी हो गई, उत्पादन बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, तो क्या वो आर्थिक विकास हो गया? अगले साल सूखा पड़ गया है, तो वो आर्थिक विकास टेम्परेरीली नहीं माना जाता। जितने हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे नदी है, चाहे पहाड़ है, चाहे वन है, चाहे जो भी है, उनका जो उपयोग है हम किस तरीके से कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आर्थिक विकास जो है वो डिपेंड करेगा। जीवन स्तर और सामान्य कल्याण में सुधार होना चाहिए, तभी हम आर्थिक विकास कहेंगे, और पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। तो मैं डॉक्टर राजेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले कि कौन कौन सी बातें जो है निर्धारित करेंगी हमारे आर्थिक विकास को।
1: देखिएगा सर, आर्थिक विकास को निर्धारित करने के लिए हमारे पास में जो मानक हैं उसमें से एक जो है शिक्षा है, हमारी आय है, हमारा रोजगार है, ये सब ही हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसको निर्धारित करते हैं। कि अगर हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो हम उसको मान रहे हैं कि वो देश हमारा आर्थिक रूप से संपन्न है। अगर हमारा देश में रोजगार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो हम मान रहे हैं कि भाई हमारे देश में एक आर्थिक रूप से विकास हो रहा है। तो इसके लिए हमें ऐसे कारक भी पैदा करने होंगे, ऐसी सुविधाएं भी पैदा करनी होंगी जिससे कि हमारा देश

0: ये सारे ही आयाम को पूरा कर सके। इनमें सर बहुत सारे कारक हैं जैसे कि हमें उन पर सोचना पड़ेगा, जिसमें तकनीकी शिक्षा है सर, डिजिटल साक्षरता है, सामाजिक समावेश और समानता है, शिक्षा एवं कौशल है, और पर्यावरण संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा का समायोजन है सर। तो अगर इन सभी को हम कारकों को देखेंगे, इन पर ध्यान करेंगे, इन पर विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से विकसित तो होगा।
1: जी जी, जैसे प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन या लेबर है, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कैसी है
2: जी,
1: तभी जो है हम विकास कर सकते हैं। अगर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो नेचुरल आर्थिक विकास होगा। अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, जनसंख्या में बच्चे ज्यादा हैं या बूढ़े लोग ज्यादा हैं,
0: तो
1: क्योंकि कई कंट्री के सामने ये प्रॉब्लम अब आ रही है,
2: बिल्कुल
1: जापान वगैरह के सामने या चाइना के सामने, कि वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन कम है, जबकि हमारे देश में जो है वर्किंग पॉपुलेशन अभी बहुत है। अगले आने वाले कुछ समय तक के लिए कोई समस्या हमारे सामने नहीं है कि वर्किंग पॉपुलेशन ना हो। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन है, चाहे भौतिक पूंजी निर्माण हो चाहे मानव पूंजी निर्माण हो, बाजार का आकार, आपका बाजार छोटा है बड़ा है, किस तरीके का बाजार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किस तरीके का बाजार है, वो निर्भर करता है। विदेशी पूंजी, फॉरनर जो है यहाँ पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उस पर जो है डिपेंड करता है। ये इकोनॉमिक फैक्टर थे। कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं, अनार्थिक घटक हैं, जैसे सामाजिक घटक, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, ज्वाइंट फैमिली है, उत्तराधिकार है, भूमि संपत्ति के प्रति मोह है, नवीनता का विरोध है, सामाजिक अपव्यय है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो विकास में
0: पीछे धकेलती हैं।
1: ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं। इसके बाद धार्मिक घटक भी हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आज सबसे बड़ा उदाहरण कुंभ है,
0: कुंभ है हमारा,
1: तो कुंभ में क्या है, जितने लोग वहां गए होंगे तो कुछ ना कुछ खर्चा सब लोग करके आते हैं, रेवेन्यू वहां गवर्नमेंट की बहुत हुई, बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो वो क्या है, वो हमारी प्रगति में जो है निश्चित रूप से सहायक होगा। राजनीतिक कंडीशन है, राजनीतिक कंडीशन में क्या है आर्थिक विकास में, कि जो गवर्नमेंट है, अगर हमारे देश में स्थायी सरकार है तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर सरकार बार बार बदलती है, बार बार चुनाव होता है, बार बार उस पर खर्चा हम करते हैं, तो वो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारा पड़ोसी देश बढ़िया है, हमें उससे सहायता मिलती है या हम उसे सहायता देते हैं, तो आर्थिक विकास होगा। और अगर लड़ाई का माहौल है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं एजाज भाई से बात करूंगा कि आर्थिक विकास में थोड़ा सा मतलब इस पे प्रकाश डालें कि हमारे यहाँ बाधाएं क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आर्थिक विकास को रेस्ट्रिक्ट करती हूँ, बाधा डालती हूँ।
2: वर्ष 1991 में भारत की जो आर्थिक प्रगति तेजी से बढ़ी है, उसका एक खास बात यह थी कि उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गई, और उन नीतियों से जो हम आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़ा, तो उससे बहुत कुछ हम लोगों में ये सोच विकसित हुई कि हमें इस देश को अन्य देशों की भांति आगे ले जाना है। आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमारा देश 5वें स्थान तक पहुंच गया, और अगर हम वर्ष 2014 की बात करें तो उस वक्त हमारा देश 10वें स्थान पर था। तो निश्चित रूप से हमने जो अपने आर्थिक सुधार के एक लक्ष्य तय किए हैं, उसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और हमें इसमें सफलता भी मिली है। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने विजन 2020 की जब कल्पना की थी तो उसमें भी आर्थिक विकास और देश की उन्नति की बात कही थी। तो निश्चित रूप से जो अब हमारी मौजूदा सरकार है, उसने जो हमें एक नारा दिया है किसानों की आय दोगुनी करने का और चीज़ों को, उसमें हमने बहुत कुछ प्रगति की है। अब सवाल आता है कि हम नैतिक मूल्य हमारे जो हैं वो कहाँ तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी सोच देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में होना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो हमें हमारे देश को एक नया आयाम दिया है विकास की दृष्टि से, उसे हम भुला नहीं सकते। आपको तो ध्यान ही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी, उन्होंने जिस सोच को हमें विकसित किया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि विकास के प्रतिमानों को नई सोच देने के लिए हमें आगे ले जाने

0: के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। और एक मुद्दा जो आपने भी जिक्र किया था कि जनसंख्या हमारे विकास में अक्सर बाधक रही है। अब आपको बताएं, एक छोटा सा देश है कतर
1: जी।
0: मात्र 17 से 20 लाख की आबादी वाला देश, जो हमारा सबसे अमीर देश है। उसका कारण भी यही है कि वहां पे विकास के नए प्रतिमान लागू हैं, जनसंख्या कंट्रोल है, विकास की नई सोच है। तो हमें कुछ ना कुछ अपने पड़ोसी देशों से और स्वयं में विकास की दृष्टि से कि हम कहाँ पर नकारात्मक हैं, कहाँ पर सकारात्मक हैं, इसका चिंतन और मनन करना होगा। तो निश्चित रूप से हम आगे विकास के नए प्रतिमान हासिल कर सकते हैं।
1: सर, इसी में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारा देश में जो एक मतलब जिसकी अनदेखी करी जा रही है, वो जैसे डिजिटल विभाजन
0: जी,
1: ये सर एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें तकनीकी लाभ हम सभी को पहुंचा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं, शहरी में पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप हम देख रहे होंगे कि जैसे कि इंटरनेट ही है हमारा, तो इंटरनेट का जो एक तरीके से गांव के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे प्रभावी रूप से नहीं है। मतलब हमने जैसे गांव में अपने हम उनको हाईटेक तो कर रहे हैं, क्लासरूम को मान लिया हमने ग्रामीण स्कूलों को हाईटेक तो कर दिया, लेकिन पता लगा वहां पे लाइट की सुविधा नहीं है। वहां पे सर अब हमने, आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हमने स्मार्ट बोर्ड लगा दिए, सब कुछ हमने संसाधन तो दे दिए, पर पता लगा अगर उसको चलाने के लिए अगर हमारी फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अगर हम वहां पे विद्युत की सप्लाई नहीं दे पा रहे, तो सर वो तो अधूरा रह जाएगा विकास का, वो
0: लक्ष्य को पूरा करने में
1: नहीं हम वो कर पाएंगे। साथ ही सर मैं एक जलवायु परिवर्तन पर भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा सर, कि जैसे कि हमारा जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिससे कि सारी पूरा जो हमारा वातावरण है वो डिसबैलेंस हो गया, उसमें जो अनियमित वर्षा हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं।
2: हाँ, यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो जो एक अर्थशास्त्र में दिया जाता है कि निर्धनता का दुष्चक्र
0: जी,
2: वो क्या होता है कि एक साइकिल है और उस साइकिल से हमें लोगों को निकालना होगा। उसमें होता क्या है कि यदि हमारी किसी किन्हीं लोगों की लो इनकम है तो वो बचत कम कर पाते हैं, जब इनकम कम होगी तो बचत भी बचत कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो कैपिटल डेफिशिएंसी आएगी, पूंजी कम रहेगी, फिर लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरीके से डिमांड कम करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर आपकी इनकम कम है तो डिमांड कम करेंगे, क्योंकि इस बार का जो बजट अभी आया है वो इसी आधार पे, सर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, माननीय मंत्री जी ने, कि हम 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम कर रहे हैं, तो लोगों के पास जो पैसा बचेगा वो पैसा बाजार में आएगा, और बाजार में आएगा तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो देश का विकास होगा,
1: आर्थिक उन्नति होगी। सर, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी एक सोच डेवलप करने की, विश्वास समाज में क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो नागरिक है वो यहीं का यहीं पर इन्वेस्ट कर सके। ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी।
2: मैं प्रीति वर्मा जी मैडम से कहूँगा कि जो हमारे मेजर्स हैं डेवलपमेंट के, 4-5 मेजर्स पे मेन फोकस है, जैसे पहला हेल्थ पे है, एजुकेशन पर है, खाद्य पर है, रोजगार पर है, एग्रीकल्चर पर है, जल आपूर्ति है, स्वच्छता है और आवास है। तो इन चीज़ों पर हमें अगर ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा।
3: जी सर।
2: तो आप जो है जैसे एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि किस तरीके से आप विकास में शामिल एजुकेशन को कर पाएंगे।
3: जी सर, अभी मैं सबकी बड़े ध्यानपूर्वक बातें सुन रही थी। अभी आर्थिक विकास पर अधिकतर बातचीत हो रही थी और टेक्नोलॉजी पर भी बात हुई है
2: जी।
3: तो मैं अभी एक विकास के नए प्रतिमान के विषय में सोच रही थी, तो इस बारे में कि हमें एक जो टेक्नोलॉजी जो आई है, और अभी बात कर रहे थे जैसे सर की गांव में भी पहुंच हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन अगर विद्युत नहीं होगा तो संसाधनों का हम प्रयोग कैसे कर पाएंगे।
2: एजुकेशन में लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए
0: जी,
2: जो हम दे रहे हैं उससे मतलब लोगों का विकास जो है वो हो,
3: लर्निंग आउटकम्स
2: के लर्निंग आउटकम ना हो।
3: लर्निंग आउटकम्स पर तो विशेष रूप से इस वक्त ध्यान दिया जा रहा है,
2: आप देख रही होंगी, आप
3: निपुण भारत इस वक्त जो है वो मुख्य रूप से योजना चलाई जा रही है भारत सरकार की।
2: तो इसमें एजुकेशन है, स्किल है, स्किल डेवलपमेंट जो है,
0: कौशल विकास
2: तो अगर है तो फिर एजुकेशन के फील्ड में काम होगा
0: जी,
2: अगर नहीं है तो फिर नहीं।

0: मैं इधर भाई से
1: जी
0: कहूंगा कि एग्रीकल्चर के जो फील्ड में है, एग्रीकल्चर का क्योंकि बहुत बड़ा योगदान एक राष्ट्र की आय में
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो आर्थिक विकास में कैसे मतलब एग्रीकल्चर हेल्पफुल हो सकती है?
1: सिंह साहब, देखिए जहाँ तक हमारे देश की बात है, कृषि प्रधान देश है और
0: जी
1: निश्चित रूप से हमारा जो अन्नदाता है वो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है।
0: जी
1: गेहूं, चावल, दालें, मसाले, ये जितने भी हमारे उत्पाद हैं
0: जी
1: ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में होते हैं और इसका एक तरह से आयात निर्यात की दृष्टि से हम अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ इसका सहयोग पा रहे हैं। जहाँ तक कृषि की तकनीक की बात है कि नई तकनीक विकसित हुई है, कृषि के नई पहल हुई है, नई पहल के अंतर्गत आपने देखा होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है और
0: जी
1: इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी, नैनो विज्ञान,
0: जी
1: भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, बिग डाटा और ड्रोन्स, ये ऐसे एक कृषि के क्षेत्र में नए हमें वो
0: हाँ
1: मिले हैं
0: जी
1: जिनसे हमारी कृषि ने बहुत बड़ी उन्नति की है।
0: उन्नति की,
1: अब
0: विकास
1: जहाँ तक
0: में बहुत
1: ड्रोन्स के
0: सहायक
1: ले
0: होंगे।
1: लीजिए आप,
0: जी
1: ड्रोन्स के माध्यम से हमें फसलों पर पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। एक
0: जी
1: किसान अपने घर में बैठ के
0: हाँ
1: वो फसल की सुरक्षा की दृष्टि से
0: हाँ
1: देख
0: नए
1: सकता है,
0: सीड हैं, नए
1: नए
0: सिंचाई
1: सीड
0: के
1: है,
0: साधन
1: विकास
0: हैं,
1: देख
0: सब
1: सकता है,
0: चीज विकास में।
1: सारे जितनी भी मुद्दे हैं वो इसमें जुड़े हैं।
0: जी
1: ऐसी जैव प्रौद्योगिकी ने
0: जी
1: हमारे जो रासायनिक उर्वरक थे उससे
0: जी
1: जो हानि हो रही थी उससे
0: जी
1: बहुत कुछ हमें सोचने और उसकी मिली है, ताकि
0: जी
1: किसान का जो एक अर्थव्यवस्था में योगदान है, मान लीजिए वो फसल उगाता है
0: जी
1: और रासायनिक उर्वरक उससे नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको एक जो नुकसान हो रहा था वो
0: जी
1: काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। तो
0: जी
1: निश्चित रूप से जो कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, इसमें अभी काम करने की और
0: हाँ
1: ज़रूरत है
0: ज़्यादा
1: ताकि हम कृषि के क्षेत्र में विकास कर सकें
0: जी
1: और दो गुनी आय वाला जो हमारा स्वप्न है वो जल्द से जल्द साकार हो सके, क्योंकि हम अन्नदाता
0: जी
1: कृषक के जो स्वप्न है उनको भी साकार करना चाहते हैं।
0: जी जी जी विकास के जो नए प्रतिमानों की जो आवश्यकता हमें महसूस हो रही है, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि समाज के जो विकासशील प्रगति और पारंपरिक मानदंडों की जो सीमाएं हैं, उनकी वजह से हमें विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता हुई है। जो
1: जी
0: पुराने जो प्रतिमान थे उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी
1: कमी
0: रही,
1: रही, काफी
0: तभी
1: नहीं
0: तो
1: रहे,
0: हमें ये
1: बिल्कुल
0: जरूरत
1: बिल्कुल
0: पड़ी, जिसके लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता अब हमें है। पर्यावरणीय स्थिरता, मैं समझता हूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है
1: जी
0: हमें
1: बहुत जरूर
0: उसको सुधारना होगा।
1: जी
0: सामाजिक समानता, सामाजिक समानता जो है आर्थिक विकास का सबसे बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं, उनके लिए उन्हें ऊपर उठाना, उनकी आय में वृद्धि करना, ये बहुत जरूरी चीज है। तकनीकी उन्नति, आर्थिक विकास से परे कल्याण जैसे कारक इसमें हमें इंक्लूड करने चाहिए, जिसमें जीवन की गुणवत्ता, जो मेन मैं समझता हूं कि जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की पहुंच, सामुदायिक लचीलापन जैसे एस्पेक्ट जो हैं वो शामिल किए जाने चाहिए। जो नए विकास के मानदंडों के जो कारण हैं वो क्या हैं कि अब हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पारंपरिक मानकों के सकल घरेलू उत्पाद को शामिल करते हैं, जबकि मानव पूंजी जैसी महत्वपूर्ण बातों को शामिल नहीं करता। तो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो बदलने से हमें जो विकास के नए प्रतिमान हैं
1: जी
0: उनको अपनाने की जरूरत अब है।
1: जी
0: अब मैं लास्ट में सभी से एक एक कमेंट लेना चाहूंगा कि आप जो है कंक्लूडेड, पहले डॉक्टर राजेश जी बताएं कि भाई आप जो विकास के प्रतिमान हैं उनमें, जैसे आपने तकनीकी की बात की और की, तो किस तरीके से आप इसको समझते हैं?
2: सर, मैं तकनीकी के बारे में एक सेंटेंस बताना चाहूँगा सर,
0: जी
2: कि आज का जो हमारा दौर है ना सर, ये तकनीकी विकास को किसी के द्वारा हम
0: जी
2: किसी भी राष्ट्र को उन्नति पथ पर ले जा सकते हैं। तो इसमें सर हमारा देश भी आजकल उन्नति के पथ पर जा रहा है, जिसमें डिजिटल तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, IoT,
0: जी
2: इन्हीं की कल्पना से हम स्मार्ट सिटीज के बारे में सोच सकते हैं,
0: जी
2: इनके बारे में बातें कर सकते हैं। और जहाँ तक सर कंक्लूडिंग रिमार्क की बात है तो मैं कहना चाहूँगा सर, नवीन विकास प्रतिमान एक संतुलित, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इनका प्रभावी क्रियान्वयन ही भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और सतत भविष्य सुनिश्चित करेगा।
0: भाई एजाज अहमद जी, आप अपना कमेंट बताएं
1: जहाँ
0: किस
1: तक
0: तरह।
1: विकास के प्रतिमान की बात है,
0: जी
1: हर बिंदु

0: पर हम लोगों ने चर्चा की
1: जी।
0: मैं कह सकता हूं कि एक सुशासन की बहुत जरूरत है। सुशासन के साथ समावेशी ढांचा, ग्रामीण उत्थान, शहरी विकास और संदर्भित मापदंडों में जन आकांक्षाएं जो हैं उसको जब तक हम पूरा नहीं कर सकते तब तक हम नए प्रतिमान हासिल नहीं कर सकते।
1: प्रीति मैडम क्या देना
2: चाहेंगे? लेकिन सभी प्रतिमानों का या जो भी बात हुई उसका अल्टीमेट लक्ष्य है कि हम जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकें। अतः मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक ही लाइन में मुझे अपनी बात को कंक्लूड करना हो कि हमें जीवन में खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रयोग करना और टेक्नोलॉजी का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीखना ही पड़ेगा।
1: जी जी, देखिए जो हमारा टॉपिक था आज का विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता के लिए, हम ये कहेंगे कि जो हमारे नीति निर्माता हैं, क्योंकि विकास की जो बातें हैं वो सरकार के नीति निर्माताओं के इनके हाथ में है, बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से चलती हैं
0: जी।
1: तो वो जो हैं जिन क्षेत्रों में आवश्यकता है उन क्षेत्रों की पहचान करें और उन क्षेत्रों को ही आगे बढ़ाएं
0: जी।
1: चाहे वो एजुकेशन का हो, जैसे भारत सरकार ने नई NEP जो लागू की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो भी विकास के क्षेत्र में एक कदम है। इसी तरीके से जो हमारा लक्ष्य है ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वो बजट के माध्यम से हो, चाहे वो नीति के माध्यम से हो, जिससे देश का जो है विकास हो सके
0: जी।
1: और इसके प्रति जो सरकार इस तरह के प्रोग्राम बनाती है तो बेहतर निगरानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं क्या हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, या जो उनमें कमी रह गई है उन कमी को हम आगे दूर करेंगे या नहीं करेंगे
0: जी।
1: उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, सीखने को मिलेगा और नई प्रौद्योगिकी और जो दृष्टिकोण है उनके विकास को प्रोत्साहन देना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम जो देश का विकास की बात कर रहे हैं वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है भाई विदेश से पूंजी ले आए, विदेश की टेक्नोलॉजी ले आए, विदेश से हम सारी चीजें इम्पोर्ट कर लें। दूसरा ये है कि हम अपने जो साधन हैं यहाँ रिसोर्सेज डेवलप करें, यहाँ साधन डेवलप करें, टेक्नोलॉजी डेवलप करें। पहले बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती थी, अब हवाई जहाज और मिसाइल और सारी चीज़ें अपने देश में बनने लगी। तो ये जो हैं विकास के लिए मेरी राय में बहुत सार्थक कदम होगा। अंत में मेरे जो परिचर्चा में साथी थे डॉक्टर राजेश कुमार जी, भाई एजाज अहमद, श्रीमती प्रीति वर्मा, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए हैं।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा जिसका विषय था विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता। प्रतिभागी राजेश कुमार, एजाज अहमद और प्रीति वर्मा, संचालन कर रहे थे नरेंद्र पाल सिंह। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी लखनऊ से खेल दर्पण।
4: ये आकाशवाणी लखनऊ है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
5: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
6: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
7: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिमनास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
8: धन्यवाद
7: आशीष जी। एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता हैं वो अपने बच्चों से ये बात

0: कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना, या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
1: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है,
0: जी,
1: अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की,
0: जी,
1: तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है।
0: जी,
1: तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा,
1: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है,
0: हाँ,
1: तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है, वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए, कई ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना, जहां पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है
0: जी,
1: कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
0: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है, या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
1: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
0: अच्छा,
1: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है, वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में,
0: जी,
1: और मेरे फादर को नहीं पता था। मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
0: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती
1: जी
0: जरूरी होती हैं। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला,
1: जी
0: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मूवमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
1: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कंपटीशन था।
0: अच्छा,
1: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
0: जी
1: उस टाइम पे जूनियर की थी।
0: अच्छा,
1: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
0: अच्छा,
1: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी,
0: जी,
1: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज, जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था,
0: हाँ,
1: 2006 में ये हुआ, और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
0: अच्छा,
1: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था,
0: जी,
1: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था, इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिम्नास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है, और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी, और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
0: अच्छा,
1: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंजाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीजों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता है।
0: बिल्कुल।
1: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार, कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है।
0: निश्चित रूप से बड़ी बात होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में एक भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
1: देखिए, अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे।
0: अच्छा,
1: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज

0: जो समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे, उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे
1: अच्छा
0: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए, आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता,
1: अच्छा
0: आपको वहां पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता।
1: जी
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे लिए उस समय वो जरूरी था। वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसा मैंने बोला, उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे। तो वहां पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया। बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस था, क्योंकि
1: जी
0: जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं, तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो
1: बिल्कुल
0: चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?
0: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में, जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं,
1: जी
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा,
1: जी
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे। और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे। बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज आने लगे,
1: क्या बात है।
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लग रहा लोग आए हैं। बट लिटरली जब मैंने इंटर किया, मुझे इतना क्राउड देखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था।
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है। तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स, जो आपकी एजुकेशन थी, वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिम्नास्टिक्स में जैसे मैंने बताया, मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था।
1: अच्छा
0: तो क्या होता है नर्सरी प्रेप, ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी।
1: अच्छा
0: जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला, ट्यूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में,
1: अच्छा
0: उसको खेलने के बाद क्या होता है, अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है। और जिम्नास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है,
1: अच्छा
0: शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था।
1: अच्छा
0: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद, मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस टाइम
1: अच्छा
0: पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहां तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ,
0: था,
1: उतनी पॉपुलरिटी
0: हाँ
1: नहीं थी इंडिया
0: पॉपुलैरिटी नहीं
1: में।
0: थी। लेकिन जब मैं खेल के आया, वहां से मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
1: कुल मिला के तालमेल बन गया
0: तालमेल बन
1: बन
0: गया।
1: गया। आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
0: जो यंग बच्चे हैं,
1: जी
0: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
1: जी
0: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
1: अच्छा
0: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है,
1: जी, मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं,
0: हाँ
1: तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये भी मैं
0: देखिए,
1: पूछना चाह रहा
0: मैं
1: था।
0: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
1: अच्छा।
0: देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है, जिमनास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
1: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है।
0: जरूर।
1: चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: देखिए जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना
1: जी,
0: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है
1: जी,
0: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था
1: जी,
0: और वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके ढाल दिया तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा
1: निश्चित रूप से। आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो एक खेल है उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
4: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
3: जी।
4: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ, प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, यहीं प्रयागराज में।
3: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
4: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूं जैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूं वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए
3: जी। हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है क्या है?
4: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो थे
3: जी।
4: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए
3: जी।
4: और मेरे गुरु भी जिनका आप नाम ले रहे मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बड़े हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
3: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
4: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है
3: जी।
4: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होते हैं, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉटपुट। तो थ्रो में एक कैटेगरी

0: ती हैमर थ्रो, ये यूरोप से आया था। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय, कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको
1: जी
0: ज्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे, जब आप तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन,
1: जी
0: तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
1: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है, वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
0: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एडवांस है। गांव के बच्चों को उसको खेलने में मज़ा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए, नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
1: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
0: तकनीक का तो इसमें, इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज़ करते हैं, तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट, उसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
1: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं, वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। क्या कारण है इस?
0: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है, तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है।
1: जी
0: भारत में आप गर्मी का, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को। लेकिन आप हैमर का, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं
1: जी
0: जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था,
1: जी जी जी
0: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो वैसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
1: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है,
0: जी
1: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चुनौतियां तो बहुत हैं।
1: जी
0: पहली चीज तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज करने जा रहा है, तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए।
1: जी चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
0: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े
1: जी
0: हैमर थ्रो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका,
1: जी
0: यूरोपियन थ्रो थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब,
1: जी
0: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनकी ट्रेनिंग भी। कोच थर्ड था और उनके ट्रेनिंग फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको हम मोबाइल पे और वीडियोस देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस, जो हमको सरकार ने वो मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया, वो
1: जी
0: जिंदगी में सबसे यादगार पल है हमारा।
1: और कोई अनुभव?
0: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं,
1: जी
0: अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं।
1: जी जी
0: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पे हम अपना बेस्ट करके गए। कई खिलाड़ियों ने मतलब कि

0: उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहाँ बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहाँ हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो
1: जी
0: दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं। खिलाड़ी की ज़िंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है।
1: जी चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं। तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीजों की भूमिका होती है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
0: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है,
1: जी
0: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
1: जी
0: आज असफल हुए हैं, कल न कल सफल होंगे ही। हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
1: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
0: एक हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा।
1: जी
0: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है नहीं, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था,
1: जी
0: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
1: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
0: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
1: जी
0: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को,
1: जी
0: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है,
1: जी
0: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो
1: जी
0: आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी।
1: जी भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है।
1: जी
0: अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा।
1: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, दर्पण।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय।

0: जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
3: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब,
2: एक ऐसा कार्यक्रम
3: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
2: विकास की बातें, संगीत की मिठास
3: और एक नए भारत की आवाज।
2: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
3: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
5: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
4: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
6: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें जल्दी से मैसेज कीजिएगा। हमारा नंबर है 9457078288। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 9457078288। इस नंबर पर आप जल्दी से मैसेज कीजिएगा, लिखना अपना नाम और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं और उस गीत के फिल्म का नाम भी यदि आपको याद है तो। बहरहाल जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़ने शुरू हो गए हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये लता मंगेशकर की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने भी लता मंगेशकर की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश की है। और ये मैसेज हमारे पास आ गया है, सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं परी महल कासगंज से। लिखने वाले हैं आरफा खान, आबाद खान, नबील खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से, आफरीन खान और जमीर खान। और ये मैसेज हमारे पास आ गया है जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से। देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन जी, सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत सुना दीजिए, कोशिश करते हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से ये मैसेज हमारे पास आया है। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार का। और ये मैसेज हमारे पास लिखकर भेजा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना और निवान शर्मा के द्वारा ये मैसेज आया है। ये मैसेज आ गया है हमारे पास नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर और विशाल नवाकर। मलकपुर से है नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मोरहेकर। सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत सुनने की ही फरमाइश लिखकर भेज रही हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और आपका पूरा परिवार। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से ये मैसेज हमारे पास आया है। और एक और मैसेज हमारे पास आ गया है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी के द्वारा ये मैसेज हमारे पास आया है। और ये मैसेज लिखकर हमें भेज रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, एकता कॉलोनी रोहतक से। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोताओं, सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश हमें और भी कई श्रोताओं ने भेजी थी। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल खान अब्बासी और अनम अब्बासी ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश। राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिक वर्मा, दीपाली, सचिन, युवान और आर के राजा ने भी हमें भेजी थी लाल कुर्ती रुड़की कैंट से।
1: व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम और नाम है आपकी फरमाइश। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर हम आपको गीत सुनाएंगे। जल्दी से आप हमें मैसेज कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप जल्दी से हमें कीजिएगा मैसेज, हम शामिल करेंगे और सुनाएंगे आपकी पसंद का गीत। और देखिए, ये मैसेज हमारे पास जसपुर उत्तराखंड से पहुंच गया है। लिखने वाले हैं रियासत हुसैन, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। ये उदित नारायण की आवाज़ का कोई गीत सुनने की फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका और बलवीर सिंह भी हमें मैसेज भेजकर सुनना चाह रहे हैं कोई गीत। और ये मैसेज नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम ने भी हमें मैसेज किया है, राजा फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और तानवी बोट, ये मैसेज हमारे पास आया है। पहाड़ गंज मुल्तानी ढांडा से लिखने वाले हैं मोहन, अनिल, उषा, मोहन, टिल्लू नायक और आप ही के साथ हैं कैथल हरियाणा से मधु नायक। और ये मैसेज हमारे पास अब लिख कर भेज रहे हैं कस्बा बराड़ा, ज़िला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका और मन्नत, आपके साथ हैं गुरुकृत और गुरु शब्द। तो जल्दी से हम आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे, राजा फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। प्रमोद कुमार डूडी, प्रमोद कुमार के साथ हैं राजकुमार और आपका पूरा परिवार, गाँव फ्रांसी, ज़िला हिसार से। तो ये मैसेज भाई रफत साहब, सईद मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद और फिरोज़ा मुस्कान, मोहल्ला बारादरी, महमूद खान रामपुर से भी हमारे पास मैसेज लिखकर भेज रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम ममना, ज़िला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तो लीजिए, आप सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं राजा फिल्म का ये प्यारा सा गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

राजा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। और अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे, पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से हमारे श्रोता हैं जो पसंद अपनी लिख कर भेज रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। श्रोताओं, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288। इस नंबर पर जल्दी से हमें लिख कर भेजिएगा मैसेज और अपनी पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे। देखिए, मैसेज आ गया है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा।

और आपका पूरा परिवार हमें मैसेज लिखकर भेज रहा है, और ये मैसेज हमारे पास अब लिखकर भेज रहे हैं पलेट नगर पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू। और एक और मैसेज हमारे पास ये भेज रहे हैं, गीता मेरा नाम फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। ये गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन कौर और आपका पूरा परिवार। और ये मैसेज हमारे पास लिख कर भेज रहे हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, वारसी क्लब सिंधौ।

जी हाँ, अभी भी हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288, और ये मैसेज हमारे पास अब लिख कर भेज रहे हैं कर्तव्य फिल्म का गीत सुनने के लिए। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन और आपका पूरा परिवार। और ये मैसेज हमारे पास आया है विलेज एंड पोस्ट राहुल नंगली से, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान और भूमिका चौहान के द्वारा। साधना सरगम की आवाज़ का कोई गीत सुनने की फरमाइश इन्होंने भी लिखकर भेजी है। पोस्ट जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिना दिशानी और निमित आहूजा जी ने भी हमें मैसेज किया है। और ये मैसेज हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ का आया है। मैसेज है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और बलवीर सिंह, आप ने भी हमें मैसेज किया है उत्तर प्रदेश से ही। और ये मैसेज सायना, महविश, राशिद, परवीन जहां, निशात, आयसा और अदीना नूर का हमारे पास आया है, ग्राम जुझला, थाना शिवाला, शिवाला कला, जिला बिजनौर से। राशिद अंसारी जी, परवीन जहां, निशात, आयसा, सायना, महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर जी ने फरमाइश की है कर्तव्य फिल्म का गीत सुनने की। और ये मैसेज आया है हमारे पास राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और नौरीन अंसारी, आपके साथ हैं आसना अंसारी जी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से ये मैसेज हमारे पास लिख कर भेज रहे हैं। और ये एक और मैसेज हमारे पास आ गया है राजकोट गुजरात से, लिखने वाले हैं रश्मि, झरना और भरत कुमार। ये मैसेज जल्दी से एक और मैसेज शामिल कर ले रहे हैं, दारा पंडित, संजय शर्मा, चौटाला हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ है प्रियंका शर्मा और आपका पूरा परिवार। तो लीजिए, आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं कर्तव्य फिल्म का ये गीत साधना सरगम और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा

0: जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: The government of India is preparing to roll out anti-drone system for drones and similar aerial threat within the next 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-drone.

0: It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction.
1: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी।